प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे। सुमेरा नमस्कार आपको।
1: नमस्कार और आदाब। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया है। कल दोपहर बाद इथियोपियन एयरलाइंस की पहली उड़ान सरश्रेय सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पटरी पर उतरी। इसके जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और पर्यटन कारोबार तथा व्यापारिक आदान प्रदान के सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। मॉरिशस में गए जून महीने में उपभोग दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंक तक पहुंचा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हाल

रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। स्कूल वान के अच्छे संचालन और कार्यकुशलता के लिए ड्राइवर के साथ साथ एक हेल्पर का होना ज़रूरी है। मकसद वैन से उतरने और चढ़ने में बच्चों की हिफाजत करना। इसके अलावा अगर बच्चों को सड़क पार करना पड़े तो हेल्पर को उनकी मदद करनी चाहिए। नेशनल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हेल्पर को इस काम के लिए एक ऑथराइजेशन कार्ड भी देती है। विदेश में बैंकॉक के एक पब में एक भयानक आग भड़क उठी है और कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है और 63 लोग घायल बताए जाते हैं। एक जांच शुरू की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल, आम हालत। उत्तर पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम अच्छा रहेगा। पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लेटो में बाद में कुछ बारिश होगी और बादल घेराएंगे। दोपहर बाद पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो के हिस्से पर बादल घेराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। आज रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो में बादल घेरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके तेज झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुंदर खराब रहेगा, 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। इसी वजह से इन लगूनों में न जाने की दरखास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त 6:05। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, शुभ दिन आप सभी को।

0: MBC रेडियो आपके साथ, रेडियो आपके साथ, आपके साथ।
1: प्रणाम, सुप्रभात श्रोतागण, घर ही मिलाते चलिए। इस समय सुबह की 6:04 हो चुके हैं और श्रोताओं कहा जाता है कि हर सुबह एक नया जन्म है, हर दिन जीवन को बदलने का एक अवसर है। क्रोध को छोड़िए, करुणा को अपनाइए, यही सच्चा संदेश है। आइए इसी विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं जागृति से।
2: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
3: ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, जागृति कार्यक्रम के सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता पुष्पलता कलुआ का सादर अभिवादन है। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय एक वैदिक मंत्र पर आधारित है। मंत्र इस प्रकार है, ओम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा।

पठित मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। मंत्र का देवता परमात्मा और ऋषि प्रजापति। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर की उत्तम शिक्षा में की हुई मर्यादा में सूर्य आदि लोक नियम के साथ वर्तमान हैं, जिस सूर्य के बिना जल की वर्षा और अवस्था का नाश नहीं होता, वह सवित्री मंडल जिसने बनाया है, उसी की उपासना सब मिलकर करें। वेद मानव सभ्यता के सर्वप्राचीन ज्ञान ग्रंथ हैं। वे केवल किसी विशेष समुदाय अथवा राष्ट्र की धरोहर नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानवता के लिए ईश्वर प्रदत्त ज्ञान का अक्षय स्रोत है। वेदों में जीवन, जगत, आत्मा, परमात्मा, धर्म, विज्ञान, समाज, शिक्षा तथा मोक्ष के संबंध में अत्यंत गंभीर और सार्वकालिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ऋग्वेद का हिरण्यगर्भ सूक्त उन सूक्तों में से हैं जिनमें परमात्मा के स्वरूप का अत्यंत उच्च कोटि का वर्णन मिलता है। पठित मंत्र उसी सूक्त का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसमें ऋषि ने परमात्मा को आत्मा का प्रकाशक, शक्ति का प्रदाता, समस्त जगत का नियंता, अमृतत्व और मृत्यु का अधिपति तथा एकमात्र उपास्य सत्ता के रूप में चित्रित किया है। मंत्र का प्रथम विशेषण है आत्मदा। यह शब्द संपूर्ण वैदिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आत्मदा का अर्थ आत्मा देने वाला है, किंतु वैदिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा अनादि, नित्य और अविनाशी है। उसे कोई उत्पन्न नहीं करता, इसलिए यहाँ आत्मदा का अर्थ है आत्मज्ञान देने वाला, आत्मस्वरूप का बोध कराने वाला तथा आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला। मनुष्य जन्म से ज्ञानी नहीं होता, वह धीरे धीरे सीखता है, समझता है और अनुभव प्राप्त करता है। यदि संसार में ज्ञान का कोई दिव्य स्रोत न होता तो मनुष्य कभी सत्य को नहीं जान सकता था। वेद कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ऋषियों के हृदय में वेद ज्ञान का प्रकाश किया था। वही ज्ञान समस्त मानव सभ्यता के विकास का मूल बना। इस दृष्टि से परमात्मा वास्तव में आत्मज्ञान का दाता है। प्रिय श्रोतागण, जब मनुष्य अपने आप को केवल शरीर मानता है तब वह लोभ, मोह, भय, क्रोध और अहंकार में फंस जाता है। वह समझता है कि धन, पद और भौतिक सुख ही जीवन का उद्देश्य है, किंतु जब उसे आत्मा का ज्ञान होता है तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वह समझता है कि शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। वह जानता है कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति नहीं बल्कि आत्मिक विकास भी है। यह परिवर्तन आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रिय श्रोतागण, उपनिषदों में बार बार आत्मविद्या का महत्व प्रतिपादित किया गया है। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य बाह्य रूप से कितना भी शिक्षित क्यों न हो, उसका जीवन अधूरा रहता है। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी ने असाधारण प्रगति की है, किंतु आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य तनाव, असंतोष और मानसिक अशांति से ग्रस्त है। प्रस्तुत मंत्र स्मरण कराता है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराए। मंत्र में परमात्मा का दूसरा विशेषण है बलदा। संसार में जो कुछ भी शक्ति के रूप में दिखाई देता है उसका मूल स्रोत परमात्मा है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य पर गर्व करता है, किंतु वह भूल जाता है कि उसके शरीर की प्रत्येक क्रिया, उसके मस्तिष्क की प्रत्येक क्षमता और उसके जीवन का प्रत्येक क्षण परमात्मा की व्यवस्था पर निर्भर है। बल का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक दृढ़ता, नैतिक साहस, आत्मसंयम, सत्यनिष्ठा और आध्यात्मिक

स्थिरता भी बल के ही रूप हैं। इतिहास में अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने शारीरिक बल से नहीं बल्कि आत्मबल से संसार को प्रभावित किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का प्रचार किया और समाज सुधार का महान कार्य संपन्न किया। यह आत्मबल

0: संसार में व्यवस्था है, इसलिए उसके पीछे एक नियंता अवश्य है। यदि ब्रह्मांड में कोई बुद्धिमान नियामक न होता तो इतनी विशाल और जटिल व्यवस्था संभव नहीं होती। जिस प्रकार किसी सुव्यवस्थित भवन को देखकर हम उसके वास्तुकार का अनुमान लगाते हैं, उसी प्रकार इस सुव्यवस्थित ब्रह्मांड को देखकर परमात्मा की सत्ता का बोध होता है। यही कारण है कि ऋषि कहते हैं कि संपूर्ण विश्व उसकी प्रशिष्य अर्थात शासन व्यवस्था को स्वीकार करता है। इसके बाद मंत्र में आया है यस्य देवाः, अर्थात जिसकी आज्ञा का पालन देव भी करते हैं। वैदिक साहित्य में देव शब्द का अर्थ केवल किसी अलौकिक सत्ता से नहीं है। देव वह है जो ज्ञानवान, प्रकाशमान, उदार और परोपकारी हों। ऋषि मुनि, विद्वान, योगी और श्रेष्ठ पुरुष सभी देव कहलाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार का कोई भी महान व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था से ऊपर नहीं है। चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वह जन्म, मृत्यु, कर्म और प्रकृति के नियमों के अधीन रहता है। यह विचार मनुष्य को विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य अहंकार नहीं बल्कि सत्य के प्रति समर्पण है। प्रिय श्रोतागण, मंत्र का अगला भाग अत्यंत दार्शनिक है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, अर्थात जिसकी छाया में अमृतत्व है और जिसकी व्यवस्था में मृत्यु भी है। यह वाक्य जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझाने की कुंजी है। वैदिक दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है, वह न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर परिवर्तनशील है किंतु आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इसीलिए वेद मृत्यु को विनाश नहीं मानते बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन मानते हैं। जब कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है तब उसकी पहचान समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह कर्म और पुनर्जन्म की व्यवस्था का आधार है। मृत्यु का अस्तित्व भी परमात्मा की व्यवस्था का आवश्यक अंग है। यदि मृत्यु न हो तो सृष्टि का क्रम रुक जाएगा, नई पीढ़ियों का विकास नहीं होगा, कर्म फल की व्यवस्था बाधित हो जाएगी। इसीलिए मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि प्रकृति के संतुलन का एक आवश्यक साधन समझना चाहिए। मंत्र का अंतिम चरण है कस्मै देवाय अविशा विधेयम। यह प्रश्न वास्तव में उपासना के विषय में वैदिक निर्णय प्रस्तुत करता है। ऋषि पूछते हैं कि जो आत्मज्ञान का दाता है, जो शक्ति स्रोत है, जो संपूर्ण विश्व का नियंता है, जो अमृतत्व और मृत्यु दोनों का अधिपति है, उसके अतिरिक्त उपासना के योग्य और कौन हो सकता है? प्रिय श्रोतागण, वेदों का उत्तर स्पष्ट है। उपासना केवल उसी एक परमात्मा की होनी चाहिए। वही सर्वज्ञ है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वव्यापक है और वही न्यायकारी है, जो सत्ता स्वयं सीमित हो, जो जन्म और मृत्यु के अधीन हो, जो अज्ञान से युक्त हो, वह उपासना की अधिकारी नहीं हो सकती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि उपासना का अधिकारी केवल परोपकार है। वही सभी गुणों से संपन्न है और वही सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला है। इसीलिए मनुष्य को उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। अतः यह मंत्र केवल वैदिक काल का धार्मिक स्तोत्र नहीं है बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शाश्वत मार्गदर्शन है। यह मनुष्य को आत्मज्ञान, आत्मबल, सत्य, धर्म, विनम्रता और ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करता है। जो व्यक्ति इसके संदेश को अपने जीवन में धारण करता है वह व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर उन्नति प्राप्त कर सकता है। यही इस मंत्र का वास्तविक उद्देश्य है और यही इसकी अमर महत्ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से सीते इलाजों के रहने वाले निवासियों को, जो वाकवा के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है, खासतौर पर फोबियाविल लेन, एवेन्यू शॉल डिकेंस, विलियम वुल्फोफ के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि 14 जुलाई 2024 को सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, अभी आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। कुछ भक्ति गीत आप सभी के नाम, और साथ रहिए 6:30 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे। और फिर से मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक के लिए प्रदीप जी द्वारा ये सुंदर सा भक्ति गीत कहा जाता है, जब आप किसी की सहायता करते हो तो आपका जो सहायता है स्वयं परमात्मा ही करते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: 13 जुलाई 2026 की सुबह है। नमस्कार आदाब।

पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया है। आज से हर रोज इथियोपियन एयरलाइंस की एक उड़ान मॉरिशस की तरफ भरी जाएगी। इस कदम के जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और पर्यटन तथा अन्य सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। मॉरिशस में गए जून महीने में उपभोक्ता दामों सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा है। ओटवी थिएटर का पुनर्निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में, कल मंत्री महेंद्र कुंडिया ने स्थल का दौरा किया। विदेश में बैंकॉक के एक पब में भयानक आग, 27 लोग जान से गए हैं। नमस्कार, आदाब सभी को। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया है। कल दोपहर बाद इथियोपियन एयरलाइंस की पहली उड़ान सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पटरी पर उतरी। इसके जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और पर्यटन, कारोबार तथा व्यापारिक आदान प्रदान के सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। इलाकाई सतह पर ये मॉरिशस के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि अफ्रीका का ये प्रथम हवाई परिवहन है।

0: अब से मॉरिशस की तरफ इथियोपियन एयरलाइंस की रोजाना एक उड़ान भरी जाएगी। मॉरिशस में गए जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दूसरी बात, मुद्रास्फीति दर में धीमापन नजर आया है, लेकिन परिवारों के लिए घर चलाना अभी तक मुश्किल है। शैली नियबन की रिपोर्ट पर असीता रघु का विवरण।
1: जून 2026 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर यानी एनुअल इन्फ्लेशन 3.7% रही, जबकि एक वर्ष पहले ये 5.4% थी। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं है कि वस्तुओं के दाम कम हो गए हैं। कीमतें अब भी बढ़ रही हैं, लेकिन जून 2025 की तुलना में उनकी वृद्धि की रफ्तार धीमी हो गई है। महंगाई का एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक पिछले 12 महीनों की औसत इन्फ्लेशन दर है, जो इस वर्ष 4.1% रही, जबकि पिछले वर्ष ये 2.9% थी। अर्थशास्त्री एरिक निंग के अनुसार लगातार बनी हुई महंगाई के पीछे कई कारण हैं। इनमें ईंधन की बढ़ती कीमतें, मई से बिजली दरों में 15% की बढ़ोतरी तथा कई सेवा क्षेत्रों में लागत में वृद्धि शामिल है। उनका अनुमान है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट नहीं आती है तो वर्ष के अंत तक औसत महंगाई दर बढ़कर 5.7% तक पहुंच सकती है। एक और चिंता का विषय को इन्फ्लेशन है, जो पिछले एक वर्ष में 6.5% पर बनी हुई है। ये संकेत देता है कि कीमतों में बढ़ोतरी अब केवल ऊर्जा और खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों में भी फैल चुकी है। इसका सीधा असर आम परिवारों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजमर्रा के खर्चों में लगातार बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी क्रय शक्ति पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। वही व्यवसायों के लिए उत्पादन लागत बढ़ने से आने वाले समय में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में और वृद्धि होने की आशंका भी जताई जा रही है।
0: मॉरिशस में करीब 20% नौजवान बेरोजगार हैं। बढ़ती महंगाई और पहली नौकरी के लिए मांगे जाने वाले तजुर्बे की वजह से बहुत से नौजवान विदेश जाना मुनासिब समझ रहे हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर भावेश जगन्नाथ के मुताबिक आर्थिक वृद्धि लाना चाहिए ताकि नौजवानों के लिए नौकरी की ज्यादा संभावनाएं पैदा की जा सकें। स्कूल वैन के अच्छे संचालन और कार्य कुशलता के वास्ते ड्राइवर के साथ साथ एक हेल्पर का होना लाजमी है। मकसद वैन से उतरने और चढ़ने में बच्चों की हिफाजत करना। इसके अलावा अगर बच्चों को सड़क पार करना पड़े तो हेल्पर को उनकी मदद करनी चाहिए। नेशनल लाइन एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी NLTA हेल्पर को इस काम के लिए एक ऑथराइजेशन कार्ड भी देती है। अभी उदय की जबानी पूर्व डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सिरिल अपालाजा को सुनते हैं। आशीबाचू ने उनसे बात की।
2: La tendance, lui, j'ai bien fait une application à l'NTA pour les gagner parce qu'il est capable d'agir avec l'attendant. Donc, quand nous donnons.
3: एक attendant को NLTA की ओर से एक पास के लिए अपनी अर्जी भेजना होगा। पास देने से पहले हम उस अटेंडेंट की मोरालिटी सर्टिफिकेट भी देखेंगे, क्योंकि वे बच्चों को संभालते हैं। इससे हम अटेंडेंट और बच्चों यानी कि दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के वास्ते इस प्रकार की औपचारिकता अपना रहे हैं। स्कूल वान या फिर बस वान के दरवाजे ठीक से बंद हैं, बच्चे अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, बच्चों के व्यवहार को अटेंडेंट द्वारा नियंत्रित हो। जब एक बच्चा अपने घर तक पहुंचता है तो अटेंडेंट की मदद से वो उतरता है। उतरने के बाद ठीक से देखता है कि उस बच्चे के अभिभावक या एक बड़े उसे लेने आया है या नहीं। इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, तभी वाहन चालक वहां से रवाना हो सकता है। ये काम पूरे अनुशासन के साथ करना जरूरी है। जब तक उस बच्चे का अभिभावक उसे लेने तक नहीं आते हैं, तब तक उस वान या फिर बस चालक को इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस तरह के नियम का पालन नहीं किया जाए तो वान या फिर बस चालक या फिर उसके मालिक के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। ट्रैफिक एक्ट धारा 76 के तहत उस मालिक या फिर वान चालक को सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उनके परमिट को रोक दिया जाएगा।
0: पोटलवी थिएटर के पुनः निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण से गुजर रहे हैं। कला एवं संस्कृति मंत्री महेन गुंदिया ने परियोजना का जायजा लेने के लिए स्थल का दौरा किया। उन्होंने तसल्ली जताई कि जनता के मनोरंजन के लिए बहुत जल्द इस थिएटर को फिर से

0: खोल दिया जाएगा। निर्मा नारायण रेड्डी, आशिता रघु।
1: À la demande du Lord Mayor, Madame Christelle Pondar et l'adjoint au Lord Mayor, nous finissons faire une visite au théâtre de Port-Louis.
2: नगर पालिका की लॉर्ड मेयर क्रिस्टेल पोंडा तथा डेप्यूटी मेयर की मांग पर हमने पोर्ट लुइस थिएटर का दौरा किया, जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तले आता है। कह सकते हैं कि कार्य काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, पर जांच से पता चलता है कि इस परियोजना में एक महत्वपूर्ण देरी भी हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार ये परियोजना अगस्त 2026 में पूरी हो जाएगी और इसे पोर्ट लुइस नगर पालिका को सौंप दिया जाएगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दूंगा कि इस समय सीमा का पालन हो, क्योंकि बहुत समय से इस थिएटर का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद पोर्ट लुइस नगर पालिका और कला एवं संस्कृति मंत्रालय एक कार्यक्रम सूची पर काम करेंगे, जिससे ये जगह जीवंत रहे। गौरतलब है कि 18 वर्षों तक बंद रहने के बाद पोर्ट लुइस थिएटर को पुनः खोलना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
0: फ्रांसीसी दूतावास की पहल पर कल मनाए जाने वाले फ्रांस राष्ट्र दिवस के सिलसिले में तिल्फेमू का प्रोमेनाड में भव्य गतिविधियों का आयोजन किया गया था। खास पकवान, मिठाइयाँ, संगीत, नाच और दूसरे मनोरंजक पहलुओं के जरिए मॉरिशस और फ्रांस की दोस्ती को और गहरा किया गया। बैंकॉक थाईलैंड में एक मशहूर पब में आग लगने से कम 27 लोग जान से गए हैं, 63 लोग घायल हुए हैं। अभी एक जांच शुरू की गई है ताकि इस हादसे की सही वजह के बारे में पता चल सके। दक्षिण अफ्रीका में 5 हफ्ते पहले शुरू माइग्रेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत करीब 53,000 विदेशियों को वापस उनका मुल्क भेजा गया। ज्यादातर लोग मालावी, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के मुताबिक ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभियान अभी तक जारी है। सालों में गैर कानूनी अप्रवास के खिलाफ ये वहां की सबसे बड़ी क्रैकडाउन कार्रवाई है। और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, उत्तर पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम अच्छा रहेगा, दोपहर बाद पूर्व उत्तर और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। और आज रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षाएं होंगी। हवा उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके तेज होंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुन्द्र में न जाने की दरखास्त है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगुनों में। तापमान, सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 7:45 और सूर्यास्त 6:00।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया। आज से हर रोज इथियोपियन एयरलाइंस की उड़ान मॉरिशस की तरफ भरी जाएगी। इस कदम के जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और दूसरे सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। मॉरिशस में गए जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा है। पोटरी थिएटर का पुनर्निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में, कल मंत्री महेंद्र गोंदिया ने स्थल का दौरा किया। और बैंकॉक के एक पब में भयानक आग, 27 लोग जान से गए हैं। तो ये थी अब तक की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे टेक्निकी साथी कादिया कुदादिन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। NBC के साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में शोक समाचार। नमस्कार और आदाब। शोक समाचार सुनिए। बासें रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 72 साल की 72 years old मोहतरमा गनसामा बाचू पैदाइशी नाम झरिया, जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं।

जनाजा आज 2:30 बजे। आज 2:30 बजे के घर बासन रोड हाईलैंड फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए हाईलैंड की अशरफी मस्जिद और फिर दफनाने के लिए थमामा मिल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। बेजन रोड बेजुकाप में 83 साल की 83 साल श्रीमती रोज गोविंद, श्रीमती रोज गोविंद पैदाइशी नाम फौसी जो देवंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 2 बजे, आज 2 बजे इनके बेटे रमेश गोविंद के घर बेजन रोड बेजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमौता की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बासन रोड कथोबोन में 81 साल की 81 साल श्रीमती आनंती रामनोथ, श्रीमती आनंती रामनोथ पैदाइशी नाम दोमा जो रानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 3 बजे, आज 3 बजे के बेटे सतीश रामनोथ के घर बासन रोड कथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामामेल की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। जॉन कैनेडी स्ट्रीट गांवगोब में 52 साल के 52 साल श्री शिव कुमार मकुन, श्री शिव कुमार मकुन जो पंपो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 12:15 बजे, आज 12:15 बजे इनकी माँ कमला मकुन के घर जॉन कैनेडी स्ट्रीट गांवगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:15। रोशनी रोड फोंजूसाक में 76 साल के 76 साल श्री चबीलाल दियापुल, श्री चबीलाल दियापुल जो राजन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और DBM के पुराने कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 2:30 बजे, आज 2:30 बजे की पत्नी सुनीति दियापुल के घर रोशनी रोड फोंजूसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजूसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड लुशित याकूज में 88 साल के 88 साल श्री पुसंदत शर्मा दिनारान, श्री पुसंदत शर्मा दिनारान जो बाईजीना के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और मोतालोंग के सुंदर मानगाकों कॉलेज में पढ़ाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 1 बजे, आज 1 बजे इनके घर रॉयल रोड लुशित याकूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। कांपुरन पुस्त दु फ्लक में 52 साल के 52 साल श्री धीरज बुदन, श्री धीरज बुदन जो मान्ना के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 12 बजे, आज 12 बजे इनकी माँ बसेंटी मोंगो के घर कांपुरन पुस्त दु फ्लक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9। कॉम्प्लेसिफ शुगर इस्टेट में 60 साल के 60 साल श्री लक्ष्मण आसेरीगाडू, श्री लक्ष्मण आसेरीगाडू जो बेतुक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे, आज 10 बजे की पत्नी कंचना देवी आसेरीगाडू के घर कॉम्प्लेसिफ माउंट शुगर स्टेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर B06 NHDC आलमा में 29 साल के 29 साल श्री बोबोलेन चुकेन, श्री बोबोलेन चुकेन की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे, आज 11 बजे इनकी माँ प्रेमा चुकेन के घर नंबर B06 NHDC आलमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बंगाली रोड बुसोंज में 52 साल के 52 साल श्री शिवराज बोवू, श्री शिवराज बोवू जो शिवराज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे, आज 11 बजे इनकी माँ लक्ष्मी बोवू के घर बंगाली रोड बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोटा सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। ब्रामस्थान रोड जैकफ्रूट लेन अमिची में 52 साल के 52 साल श्री गणेश कुमार गुंडो, श्री गणेश कुमार गुंडो जो कालू ताइया के नाम से ज़्यादा जाने जाते कालू तोलिए जो कालू तोलिए के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 1 बजे, आज 1 बजे इनकी पत्नी मीरा गुंडो के घर ब्रह्मस्थान रोड जैकफ्रूट लेन अमिचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुशनुआ की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। B03 सिटी 3 बुटीक यूनियन वेल में 60 साल के 60 साल श्री राजेश मोदे, श्री राजेश मोदे जो पापों

0: के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके घर B03 सिटी थ्रॉ बुटीक यूनियनविल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM। मोसिल मोवी ओएस रुइसू डू डेलिस विलनोआ में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री अमरीका सिंह उबिलक सिंह जो बाई के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थे आज 10 बजे इनके दामाद कालीदीन राजीव के घर मोसिल मोवी ओएस रुइसू डू डेलिस विलनोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। एवेन्यू डेलिस कैनोट एल्बियों में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड श्री नवीन दत्त लुफो जो मेरीलाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज दो बजे के घर एवेन्यू डेलिस कैनोट एल्बियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू के शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। Bagheati Ramprasad Street en Grimosia le Koulemi Chawali Salke 44 years old Shri Yogesh Jawala Parsan jo Yogesh ke naam se zyada jane jate the ki mrityu ho gayi hain arthi aaj subah pone 10 baje inki maa Meeta Maipat ke ghar Bagheati Ramprasad Street en Grimosia le Koule se uthakar antim sanskar ke liye सुल्फेरिनो व क्वा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। इंपास फ्रेडेरिक बोनफिन क्यूपिप में 100 साल की 100 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मीनाची बिसेसो पैदाशिना मुती जो अकाफी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज दोपहर बाद एक बजे इनके घर इंपास फ्रेडेरिक बोनफिन क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगारा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मामजेल जान रोड गुडलैंड्स में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती तारामती मितन पैदाशी नाम बहादुर जो तारा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज साढ़े ग्यारह बजे इनके बेटे श्याम मितन के घर मामजेल जान रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहूज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। नंबर 26 तेलफे एवेन्यू कैथरोबोन में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड श्रीमती विद्यावती बेनी पोसाद पैदाइशी नाम बीरबल जो मगाजीन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज पौने दस बजे के बेटे आनी बेनी पौसाद के घर तेलफे एवेन्यू कैथरोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:45 AM। बॉम्बे स्ट्रीट पिचराफ्रे में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चंद्रानी रघुबाओ पैदाइशी नाम मिटन जो सुनीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 11 बजे के पति सचिदानंद रघुबाओ के घर बॉम्बे स्ट्रीट पिचराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचराफ्रे की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब से वर्ल्ड कप 2026 शुरू हुआ है, शायद ये पहला दिन है जिसमें आपको देने के लिए न कोई रिजल्ट, कोई नतीजा, न ही आज के फिक्स्चर के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आज तो मैच है नहीं और कल रात कोई मैच खेला नहीं गया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल और आज आराम के दिन, सेमीफाइनल के इंतजार में बची चार टीमें जमकर तैयार हो रही हैं। पहला सेमीफाइनल कल 11 बजे फ्रांस वर्सेस स्पेन, फिर परसों वेंसडे मैच अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। दोनों सेमीफाइनल एमबीसी टीवी 11 और एमबीसी प्ले अप पर लाइव दिखाए जाएंगे। नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच के बाद इंग्लैंड के बॉस टोमास टुखेल ने कहा कि वो अपनी टीम के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। भाग्य हमारे साथ था, गॉट लकी, बहुत ढीले रहे, बहुत तकनीकी गलतियां की। इस बार कप्तान हैरी केन ने कहा कि वो अपने कोच के फ्रस्ट्रेशन को समझता है, क्योंकि हमें पता है कि हम इससे बेहतर खेल सकते हैं, हम तैयार होते हैं इसके लिए। वी स्टिल फील वी कैन इम्प्रूव। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना ये कोई साधारण मैच नहीं, एक ऐतिहासिक राइवलरी है। फुल स्टोरी आपको देंगे स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन आज 8:30 बजे RM2 पर। फीफा के प्रेसिडेंट यानी इन्फांटिनो ने कहा कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहिए। 64 टीमों का वर्ल्ड कप हो सकता है आने वाले सालों में। अभी 48 टीमें भाग लेती हैं, मतलब और 16 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो पाएंगी। अगले वर्ल्ड कप में 6 होस्ट नेशंस हैं, मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन, अर्जेंटीना, पहागुए और यूरुग्वे में मैच खेले जाएंगे। विंबलडन ओपन का किंग बना यानिक सीनर, पहला सेट बेरेव ने जीता 7-6 से, फिर दूसरे सेट में 7-6 से यानिक सीनर की जीत, तीसरा सेट सीनर ने जीता 6-3 से, फिर पांचवा सेट भी सीनर ने जीता 6-4 पर। ये सीनर का दूसरा विंबलडन टाइटल है। साइकिलिंग टूर डी फ्रांस के स्टेज 9 में माथ्यू वान डे पोएल की जीत हुई। फ्रांस में हाई टेम्परेचर, कड़ाके की गर्मी को लेकर स्टेज को 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर से कम किया गया।

डिफेंडिंग चैंपियन तादेज पोगाचार अभी येलो शर्ट के साथ है। आज आराम का दिन होगा टू डी फ्रांस में। क्रिकेट, इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पहली बार के लिए वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट में दो कीर्तिमान, दो हिस्टोरिकल मोमेंट। एक तो यष्टिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाली पहली बैट्समैन बनी। साथ में गेंदबाज बॉलर क्रांति गौरी लॉर्ड्स के टेस्ट ऑनर्स बोर्ड में अपना नाम लिखने वाली पहली खिलाड़ी बनी। 5 विकेट लेने वालों का नाम वहां ऑनर्स बोर्ड में लिखा जाता है। आज आखिरी दिन का खेल होगा। 6 विकेट खोकर इंग्लैंड की टीम 327 रन पीछे है। केवल 4 विकेट लेना है भारतीय टीम को। इतिहास रच सकती है लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली महिला टीम आज हो सकती है टीम इंडिया। और वैसे क्रिकेट की बात हुई तो आपको बता दें कि मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन अब ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ऑफिशियल मेंबर बन गया है। मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन के सभी लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स जो है मॉरिशस में, सभी को बधाई। क्यों नहीं, क्रिकेट के साथ मॉरिशस भी इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा और ICC का भाग तो बन गया, अब इंटरनेशनल मैचों में भाग ले पाएंगे। नमस्कार, आप सभी लोगों का मी की ओर से शुभ दिन।

0: नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय यह 7:05 हो चुके हैं। सोमवार का दिन है, 13 जुलाई 2026। सात नवारी है पूजा, इसे कहा जाता है मंडे हो या फिर संडे, जीवन तो चलता ही रहता है और चलना ही चाहिए, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अवश्य सिखाता है और प्रत्येक सूर्योदय यही सीख देती है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा लौट कर आएगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ आप चलते रहें। चलिए इस सोमवार की शुरुआत करते हैं चिंतन से। आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: सारे संसार को तिनके के समान तुच्छ जानना आसान है, सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना आसान है, परंतु आत्म प्रशंसा को अपने हृदय से निकाल देना कठिन है।

भाई हाल कैसा है जनाब का? बस मैं तो यही कहूँगी, आज तो मंडे है और मंडे का मतलब है रशिंग, और इस जल्दबाजी में काम पर जाना, वैसे ट्रैफिक में फंसना, पर फिर भी क्या करें, जिंदगी है, चलता ही रहता है। पर एक बात तो है, जीवन हम बनाते हैं और रास्ता भी हम ही बनाते हैं। इसलिए सोमवार की इस नई सुबह नई उम्मीद, नया हौसला और नई उड़ान लेकर आई है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए एक नई कहानी है। इसे मुस्कुराते हुए लिखिए, देखिए किस तरह से बदलता है चुटकी में। साथ निभारी हैं गीता जी, पोफिया से लीला जी हैं, बुआशेखी से माला सुमारू जी हैं, और साथ में हैं शैला जी, गौनव्या सुदेश, और जो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है सुबह का नजराना कार्यक्रम में। गुनगुनाते रहिए और जुड़िए हमारे साथ। बाजी फिल्म से गीता दत्त जी की आवाज में, चलिए सुनते हैं।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: दिल के साथ साथ कुछ पुराने गीत के दौर और कुछ पुराने गीतों की बहार लेकर आई है पूजा, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ दे रहे हैं श्री गोविंद जी और शिव मंदिर के सभी भक्तों के लिए। और साथ में है शोभा जी वाकवा से, सुनीता जी हैं गांव से, और बिशल जी हैं साथ में है, इंदिरा लोटन जी, आप सभी का दिल से स्वागत है। चलिए आप सभी के नाम उजाला फिल्म से। चाहे कि जो उसकी हो या जिंदगी की मुश्किलें, स्वाद तभी आता है जब हिम्मत का तड़का हो।

भाई ऐसे मौसम में याला याला तो हो ही जाता है, क्योंकि ऐसे ठंड के मौसम में उठने का मन ही नहीं करता, पर फिर भी उठना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है गुजारे के लिए। और क्या कहा गया है ना कि जो सोता है वो खोता है, और जो उठ जाता है सुबह सुबह मान लीजिए कुछ ना कुछ पा ही लेता है। ये जीवन संघर्ष का जीवन है, संघर्ष करना पड़ता है, पर जब मेहनत सही हो तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए उठ जाइए, क्योंकि चंदा मामा तो सो गए, सूरज चाचू जाग गए हैं, साथ निभा रही हैं सरिता जी काठबोन से, माया जी हैं मोताई ब्लॉन्ड से, मुन जी हैं ख्वाया से, और उषा जी हैं हाईलैंड से।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से उशभुन के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर मोसलमान न्यूटन और रावेनी आले, आवेनी आर्मस्ट्रॉन्ग और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि सोमवार 13 जुलाई 2026 को सुबह के 9:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है,
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो
2: मॉरिशस।
3: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू। आई आई

0: ना कहे कोई परवाह ना कहे जलने को बेपरार चाहत का मुझ पे असर मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर मंजिल है मेरी प्यार
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू अय्या

0: चौंको मत ऐ दोस्तो, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को ना जानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या कर।

अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु।

झलकियां चलिए नजर डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। और अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार आपकी राशि कार्यक्रम हमारी धरोहर कार्यक्रम 8:50 पर और आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे आप समाचार फिर से सुन पाएंगे और समाचारों के उस पार 9:10 पर आज की चर्चा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी नीतुषा।

10 बजे फिर से समाचार होंगे, समाचारों के उस पार भक्ति धारा कार्यक्रम और 10:15 बजे मानस मंथन कार्यक्रम और 10:00 भक्ति धारा कार्यक्रम जारी रहेगा और 11 बजे आप फिर से समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार 11:03 पर उर्दू कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सायदा की तरफ से और मराठी भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे धर्मयाज की ओर से दिन के 12 बजे। दिन के 1 बजे आप तमिल भाषा में आरसी द्वारा कार्यक्रम सुनेंगे। रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में प्रस्तुत करेगी रत्ना जी। दिन के 1:45 पर और 2 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे हॉन्ग हॉन्ग के साथ। आपकी पसंद कार्यक्रम 2:30 बजे सुपहर के 3 बजे आप फिर से समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा सुपहर के 3:05। 4 बजे आप क्षितिज कार्यक्रम सुनेंगे। तेलुगु भाषा में आप रजेंद्र जी द्वारा कार्यक्रम सुनेंगे 4:15 बजे।

0: 5:30 आप बच्चों के कार्यक्रम सुनेंगे रत्ना जी द्वारा। बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। और शाम के 6:00 आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉर्शस की लहरों पर। 6:30 आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे जिनके ओर से। और 7:00 तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुनेंगे। 7:30 आप तेलुगु भाषा में वंदना जी की ओर से कार्यक्रम सुनेंगे। 7:50 पर गीत गंगा कार्यक्रम, भक्ति कार्यक्रम लेकर आएगी रोशनी। 8:10 पर महफिल शब सायदा की तरफ से आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे 8:40 पर। और 9:00 भोजपुरी तड़का कार्यक्रम प्रताप जी की ओर से। और पुराने दौर के गीत आप सभी के फेवरेट गिनिशा लेकर आएगी 11:00। 12:00 से लेकर 6:00 तक चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियां,
2: झलकियां।

जिंदगी में बचाने वाला कोई नहीं आएगा, कोई बचा सकता है तो आप स्वयं हो। आईने में देखिए, आपसे बड़ा सुंदर, आपसे बड़ा होनहार और कोई नहीं। सुनीता जी हैं दागोचिया से, आपका स्वागत है।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: छोटी सी है जिंदगी, जियो जैसे कि आखिरी हो, खुल कर जिए क्योंकि एक पल का ही जीना है, तो क्यों हम गम मनाए, ये तो आते ही रहेंगे, जो होगा सो होगा, उसे आप रोक नहीं पाएंगे, पर आप उसे बेहतर बना सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। लक्ष्मी जी हैं बाबू से, आपका स्वागत है लक्ष्मी जी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी दुशिका और दिवेश, अपने पूरे परिवार की ओर से जो दागोचिया के हैं,

और करिश्मा जी की भी वेडिंग एनिवर्सरी है उनके पति आकाश और भाई कविश की तरफ से और उनके पूरे परिवार की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जब जब भी मैं सही पल का जीना का

0: गीत जो सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जो भी लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं कैसे धीरे धीरे चलते रहते हैं, और जैसे ऋतिक नाचता है तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए जीवन में एक स्फूर्ति मिल जाती है। क्योंकि जिंदगी में भले ही ट्रैफिक हो या जाम हो या कुछ भी, अगर आप धैर्य से चलेंगे और आत्मविश्वास से चलेंगे और साथ में सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलेंगे, तो धीरे धीरे ही सही आप सिकंदर हो ही जाएंगे, है ना। चलिए आप सभी के नाम ज़ाहब हसन जी के आवाज में धीरे धीरे गीता जी हैं पोफिया से, आपका स्वागत है। गायत्री जी हैं नूवेल फ्रांस से।
1: धीरे धीरे धीरे दूर नहीं है प्यार की मंजिल।
0: विश्वानी जी हैं पुदो आमलेट से, और साथ दे रही हैं आफेज जी।
1: ओ, मेरे चल रहे।
0: आदाब आपको।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: भैया आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, इतने प्यार से साथ दे रहे हैं और आप लोगों की वजह से ही हम चले आते हैं साथ निभाने के लिए, इतने प्यार और अपने पन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। साथ रहिए, 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को शुभ सोमवार।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्ते और सलाम, फजर के 8 बजलबा। आवाज़ समाचार सुने जा अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्सा में जाए खातिर मुरीस के वास्ते एगो नवा द्वार खुल गल बाते। कल दोपहर बाद इथियोपियन एयरलाइंस के पहली उड़ान सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पटरी पर उतर कर रहल। एकर जरिए देश के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत होल बाते और पर्यटन कारोबार तथा व्यापारिक आदान प्रदान के सेक्टरों में नवा संभावना पैदा हो गल रहल बाते। मुरीस में गैल जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ गल बाते। ये आंकड़ा 111.9 अंक से बढ़कर 112.2 अंक तक पहुँचे बा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आल बाते। स्कूल वान के अच्छे संचालन और कार्यकुशलता खातिर ड्राइवर के साथ साथ एगो हेल्पर का होना लाजमी बाते। मकसद वान से उतरने और चढ़ने में बच्चे के हिफाजत करे बाते। एकर अलावा अगर बच्चे के सड़क पार करना पड़े तो हेल्पर को उनकर मदद करना चाहिए। विदेश में बैंकॉक थाईलैंड में एगो मशहूर पब में आग लगल। कम से कम 27 जना के मौत हो गल बाते, 63 लोग घायल होलबा। अभी एगो जांच शुरू हो गल बाते। तो ये रहर समाचार। नमस्ते और सलाम।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: मरने की खबर सुना जा। बॉम्बे स्ट्रीट पे छिगाफरे में दुकुरी 18 बरस के 58 श्रीमती चंद्रा

चंद्रानी रघुबा, श्रीमती चंद्रानी रघुबा पैदाइशना मितन जुन सुनीता के नाम से जस्ती जाने जाता रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज ग्यारह बजे इनकर पति सच्चिदानंद रघुबा के घरे बॉम्बे स्ट्रीट पिच काफ़े से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पिच काफ़े के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM तेलफे एवेन्यू कैथ्रोबोन में चारकोरी दुबरिस के 92 ans श्रीमती विद्यावती बनी प्रसाद, श्रीमती विद्यावती बनी प्रसाद पैदाशी नाम बिरबल जुन महाजिन के नाम से जस्ती जान चात्रालन गुजर कर हवन इनकर माती आज पौने दस बजे इनकर बेटा आनी बनी प्रसाद के घरे तेलफे एवेन्यू कैथ्रोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM मामजल जान रोड गुडलैंड में 3 COR 19 BR के स्वसंजीवनी वं श्रीमती तारामती मितन, श्रीमती तारामती मितन पैदाशी नाम बहादुर जुन तारा के नाम से जस्ती जानो जात्रलन गुजर कर हवन इनकर माती आज ग्यारह बज के आधा इनकर बेटा श्याम मितन के घरे मामजल जान रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुआरूज गुडलैंड के शमशान भूमि ले चावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM इंपास फ्रेडेरिक बनफा क्यूपिप में 5 COR 100 ans के श्रीमती मीनाक्षी बिसेसो, पैदाशी नाम मुती जुन आकाफी के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजरगल हवन इनकर माती आज 1 बजे इनकर घरे एपास फ्रेडेरिक बनफा क्यूपिप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगागा के शमशान भूमि ले चावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM बागेराती रामप्रसाद स्ट्रीट अंग्रेमोसिया लुकुले में 2 COR 4 BR के 44 ans श्री योगेश जवाला परसान, जन योगेश के नाम से जस्ती जाना जात्रलन कुछ अक्कल हवन इनकर माती आज पौने दस बजे इनकर माँ मीता मैपत के घरे बागेराती रामप्रसाद स्ट्रीट और खेमोसिया लुकुले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुरफेरिनो वाको के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे 10 AM एवेन्यू डेलिस कानोट एल्बियो में 2 COR 18 BR के 58 ans श्री नवीन दत्त लोफोर, जन मेरी लाल के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज 2 बजे इनकर घरे एवेन्यू डेलिस कानोट एल्बियो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बॉम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे 2 PM मोसिल मोवी ओएस रुसो डू डेलिस विलनोआ में 3 COR 8 BR के 68 ans श्री अमरिका सिंह ओबिलक सिंह, जन बाई के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज 10 बजे इनकर दामाद कालीदीन राजीव के घरे मोसिल मोवी ओएस रुसो डू डेलिस विलनोआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लेन मानियों के शमशान भूमि ले चावल जाए। क्रिमेशन टुडे 10 AM B03 सिटी 3 बुटीक यूनियन वेल में 3 COR 60 ans के श्री राजेश मोदे, जिन पापों के नाम से जस्ती जानो जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज 1 बजे इनकर घरे सिटी 3 बुटीक यूनियन वेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लेन मानियों के शमशान भूमि ले चावल जाए। क्रिमेशन टुडे 1 PM ब्रह्मस्थान रोड जैक फ्रूट लेन अमिचे में 2 COR 12 BR के 52 ans श्री गणेश कुमार गुंदौ, जिन कालूतोलिए के नाम से जस्ती जान जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज 1 बजे इनकर पत्नी मीरा गुंदौ के घरे ब्रह्मस्थान रोड जैक फ्रूट लेन अमिचे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गोश्नुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे 1 PM बंगाली रोड बोसोंज में 2 COR 12 BR के 52 ans श्री शिवराज बोवो, जिन शिवराज के नाम से जस्ती जान जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज 11 बजे इनकर माँ लक्ष्मी बोवो के घरे बंगाली रोड बोसोंश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोता सैपिया बॉम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे 11 AM B06 NHDC आलमा में 1 COR 9 BR वैतनेवों के श्री बोबालन चुकन, गुजर कल हवन इनकर माती आज 11 बजे इनकर माँ प्रेमा चुकन के घरे B06 NHDC आलमा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सेकुमस्तों सैंपिया के शमशान भूमि ले चावल जाए। क्रिमेशन टुडे 11 AM

0: complessivement to Sugar Estate Metin Kuri 60 ans que Shri Lachman Aserigadu Shri Lachman Aserigadu Jin Betuk ke naam se Jasti Jan Jatralan Gujar Kar Havan Inkar Mati आज 10 बजे कर पत्नी कंचना देवी आसेरी गादू के घरे कॉम्प्लेसिव माउंट शुगर एस्टेट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बामोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 10 एम कॉम्पुरन पोस्ट दु फ्लाक में दू गोरी 12 बरिस के सेकंडोजों श्री धीरज बुदन जिन माना के नाम से जस्ते जाना जात्रलन गुजर कर हवन इंकर माती आज 12 बजे इंकर माँ बसंती मोगो के घरे कॉम्पुरन पोस्ट दु फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावोंचा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट नून रॉयल रोड ले ओशेतिया रूज में चार कोरी 8 बरिस के 88 ओं श्री पसंदत शर्मा दिनारान श्री पसंदत शर्मा दिनारान जन बाई दीना के नाम से जस्ती जाना चात्रलन और जन मोतायलों के सुंदर महाकों कॉलेज में अध्यापक रहलन गुजर कल हवन इंकर माती आज 1 बजे आज 1 बजे इंकर घरे रोल उशित अबूश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बामोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 1 PM रोशनी रोड फोंजूसाक में 3 कोरी 16 बरिस के 66 ओं श्री चबीलाल दियापुल जिन राजन के नाम से जस्ती जाना चात्रलन और जिन DBM के पूर्व कर्मचारी रहलन गुजर कल हवन इंकर माती आज 2 बज गया था आज 2 बज गया था इंकर पत्नी सुनीति दियापुल के घरे रोशनी रोड फोंजूसाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फोंजूसाक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM जून केनेडी स्ट्रीट खोंगुब में 2 कोरी 12 बरिस के सेकंडोजों श्री शिव कुमार मक्कुन श्री शिव कुमार मक्कुन जिन पोंपो के नाम से जस्ती जाना चात्रालन गुजर कल हवन इंकर माती आज सवा बारह बजे इंकर माँ कमला मक्कुन के घरे जिन केनेडी स्ट्रीट खोंगुब से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिरमो गुडलैंड के शमशान भूमि दी चावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 2:15 PM बासा रोड कैथोबोन में 4 कोरी 1 बरिस के 81 ओं श्रीमती आनंती रामनोद पैदाशी नाम दुमा जन रानी के नाम से जस्ती जाना चात्रालन गुजर कल हवन इंकर माती आज तीन बजे इंकर बेटा सतीश रामनोद के घरे बासा रोड कैथोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थौमा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 3 PM बर्जन रोड ब्यूजिकाप में 4 कोरी 3 बरिस के 83 ओं श्रीमती रोज गोविंद पैदाइशी नाम फौसी जन देवंती के नाम से जस्ती जाना चात्रालन गुजर कल हवन इंकर माती आज 2 बजे इंकर बेटा रमेश गोविंद के घरे बर्जन रोड ब्यूजिकाप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सहमौत है के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 PM बासन रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 3 कोरी 12 बरिस के 72 ओं मोहतरमा गन सामा बच्चू पैदाइशी नाम झरिया जिन साबित के नाम से जस्ती जाना चात्रालन इंतकाल कर कल हवन जनाजा आज 2 बज के आधा इनकर घरे बासन रोड हाईलैंड फिनिक्स से उठा के सबसे पहले जनाजे के नमाज खातिर अशरफी मस्जिद हाईलैंड सौरव दफनाए खातिर थौमा मेल के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM मॉस्क्रूड सुरीनाम में 5 बरिस के सैकों आयशा बीबी सोफिया मुदाबुकस जिन सोफिया के नाम से जस्ती जाना चात्रालन इंतकाल कर कल हवन जनाजा आज 10 बजे इनकर वालिद फादिल मुदाबुकस के घरे मॉस्क्रूड सुरीनाम से उठा के दफनाए खातिर सुरीनाम के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 10 AM शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमने संवेदना प्रकट करत है जा
1: एट 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है पूजा। नमस्कार आप सभी को आपकी राशि कार्यक्रम में। चलिए जानते हैं आज से लेकर 19 जुलाई तक आपका ये राशि क्या कहता है। इस साप्ताहिक राशिफल आप सभी के नाम चलिए जानते हैं।
1: एरीज मेष राशि,
0: चलिए मेष राशि वालों के लिए क्या रखा है इस सप्ताह। यह हफ्ता अपने दिल की बात खुलकर सामने रखने का है। शुरुआती 2-3 दिन आपके लिए काफी एक्टिव रहेगा। इस दौरान मेल जोल बढ़ाना और छोटी मोटी यात्राएं करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद हफ्ते के बीच आपका पूरा ध्यान अपने घर परिवार के मामलों पर टिका रहेगा। करियर के मामलों में नई जिम्मेदारियां मिलेगी और अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। प्रेम के रिश्तों में मधुरता रहेगी, पुराने मतभेद दूर होंगे। स्वास्थ्य, सिर दर्द और थकान से बचें। शुभ रंग लाल और शुभ अंक 9।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: चलिए वृषभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करने का और लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्या बात है, शुरू शुरू में आपका पूरा फोकस अपने बजट और खर्चे पर होगी, जिससे आप काफी समझदारी से संभाल भी लेंगे। करियर के तौर पर धन लाभ और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रेम संबंधी रिश्तों में साथी का सहयोग मिलेगा। अविवाहितों के लिए अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। स्वास्थ्य में खान पान पर ध्यान दीजिए, पेट संबंधी समस्या हो सकती है। शुभ रंग आपका सफेद और शुभ अंक 6।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: चलिए मिथुन जातकों के लिए जानते हैं आज आपका इस हफ्ता आपके लिए क्या रखा है। मिथुन राशि वालों, इस हफ्ते आप समाज और अपने कामकाज पर हर जगह छाए रहने वाले हैं। शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पर रहेगा, जिससे कुछ बढ़िया मौके आपके हाथ लग सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा ध्यान अपने बैंक बैलेंस और सेविंग को सुधारने पर होगा और जहां आपके पैसों को लेकर थोड़े समझदारी भरे फैसले लेने की जरूरत पड़ेगी। नए अवसर मिलेंगे, संचार कौशल से सफलता भी मिलेगी और प्रेम संबंधी किसी पुराने मित्र से मुलाकात रिश्ते को नया मोड़ दे सकता है। स्वास्थ्य पर तनाव कम रखें, पर्याप्त नींद लें। आपके लिए शुभ रंग हरा, शुभ अंक 5।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: चलिए कर्क राशियों के लिए यह हफ्ता मानसिक सुकून और नया हौसला देने वाला है। शुरुआत में आप अपने अधूरे कामों को निपटाने पर ध्यान देंगे। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ बड़े और जरूरी फैसले ले पाएंगे। ऐसे ये तो सच्ची बात है, सही फैसलों से ही, सही चुनाव से ही आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। मेहनत का फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार और साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा।

0: स्वास्थ्य के लिए सर्दी जुकाम से सावधान रहें। अभी तो मौसमी जुकाम भी है, तो कर्क वाले ध्यान दीजिए। शुभ रंग आपका सफेद और शुभ अंक 2।
1: लेओ सिंह राशि।
0: तो चलिए जानते हैं सिंह राशियों के लिए क्या रखा है। सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता लाइफ में एक नई शुरुआत करने का है, आरंभ है। शुरुआत में दोस्तों से मिलना जुलना बढ़ेगा। टीम के साथ मिलकर काम करने से आपको काफी फायदा होगा। नेतृत्व क्षमता से प्रशंसा मिलेगी और प्रेम संबंधों में, रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा, क्या बात है। और स्वास्थ्य ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक काम से बचे। शुभ रंग आपका सुनहरा और शुभ अंक 1।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: चलिए कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों यह हफ्ता आपके करियर और कामकाज के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। शुरुआत में ऑफिस या बिजनेस में आपको कोई अच्छी खबर या तारीफ मिल सकती है। आपकी मेहनत सफल होती दिखेगी। आपको अपने दोस्तों और करीबियों से पूरा साथ मिलेगा, जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। हफ्ते के बीच में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जल्दबाजी ना करें, थोड़ा शांत होकर सोच समझ कर फैसला लें। जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा बिगड़ ही जाता है, इसलिए सोच समझ कर ही काम कीजिए कन्या राशि वालों। आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: चलिए तुला राशि वालों के लिए क्या रखा है जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए इस हफ्ते आप आगे के प्लान्स पर ध्यान रखेंगे, योजनाएं बनाएंगे, साथ ही बड़े लक्ष्यों पर फोकस भी करने वाले हैं। यह हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। शुरुआत में किसी जरूरी काम से के सिलसिले में आपका घूमना फिरना हो सकता है, ट्रैवल हो सकती है। इस दौरान होने वाली बातचीत या मीटिंग से आपको अच्छे खबर मिल सकता है। इसके बाद हफ्ते के बीच में आपका पूरा ध्यान अपने करियर और कामकाज पर टिक जाएगा। आपको ऑफिस में कुछ नई और बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी, स्वास्थ्य कम अच्छी ही रहेगी, बस थोड़ा सा ध्यान दे। शुभ रंग आपका गुलाबी और शुभ अंक 6।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: वृश्चिक राशि वालों के लिए, जातकों के लिए यह हफ्ता आपके लिए कुछ बड़े और नए बदलाव लेकर आ रहा है। शुरुआती दिनों में आपको अपने पैसों के लेन देन पर ध्यान देना होगा। बिजनेस के काम पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। इस बीच आपका मन पूजा पाठ में भी लगेगा। कहीं बाहर घूमने या किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी अचानक बन सकता है। करियर पर विजय मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रेम भावनाओं पर नियंत्रण रखें, गलतफहमी से भी बचें, मीठा वाणी बोलें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका मरून और शुभ अंक 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: धनु राशि वालों के लिए यह

0: लगता आपके रिश्तों और पैसों के मामलों में थोड़ा संभाल कर चलने का है। शुरुआती 2-3 दिनों में पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहेगी और कामकाज से जुड़ी बातचीत या मीटिंग भी काफी सफल रहेंगे। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा हाथ रोकना होगा, खासकर जब आप खर्चे कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे प्रेम संबंधी वालों के, और आपके स्वास्थ्य नियमित व्यायाम करें आप। व्यायाम करने से आप स्वस्थ रहेंगे। शुभ रंग आपका पीला और शुभ अंक 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: भाई मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता आपके खास रिश्तों और मजबूत बनने वाले हैं और मौका भी लेकर आएगा। शुरुआती 2-3 आपका पूरा ध्यान अपने काम को निपटाने और सेहत को दुरुस्त करने पर रहेगा। फिर आपका मन परिवार और पार्टनर के साथ बातचीत करने और उनके साथ वक्त बिताने में लगेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा खासा ही रहेगा, बस जुकाम पर थोड़ा मोरा जुकाम रहेगा, पर ध्यान दीजिए। शुभ रंग आपका नीला और शुभ अंग आपका 8।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता आपकी क्रिएटिविटी को निखारने और लाइफ में आगे बढ़ने का है। आपका मूड काफी अच्छा रहेगा, लव लाइफ बढ़िया रहेगी और साथी के साथ मनपसंद कामों को करने का मौका भी मिलेगा। ऐसे साथ कर काम करने से प्यार भी बढ़ता है। अपनी सेहत और डेली रूटीन पर थोड़ा ध्यान दें। खुद को फिट रखने के लिए थोड़ा सा अनुशासित होना आवश्यक है। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला और शुभ अंक 4। चलिए अब अंतिम राशि की ओर हम बढ़ते हैं।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता आपके परिवार और मानसिक सुकून के इर्गिर्द घूमने वाला है। घर परिवार की जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं और आपको वहां ज्यादा ध्यान देना होगा। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपका मन खुश रहेगा और नई चीजें सीखने का या फिर करने में आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। आपके लिए शुभ रंग है हल्का पीला और शुभ अंक है 7।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मशीन।
2: दोस्तों, आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज़ पेश कर रहा हूँ, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गम टूट गए लिखने वाले शायर जनाब ख़तिल शिफाई साहब की गज़ल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने। बहुत शुक्रिया।

8:45 हो चुके हैं और कुछ गजलें आप सभी के नाम। कहा जाता है जो लब नहीं कह पाते ये गीत कह जाते हैं। हमारे एहसास जो हमारे दिल के अंदर ही है पर कभी कभी किसी के लिए बयां करना मुश्किल पड़ जाता है, तो ये गीत ही बहुत कुछ कह जाते हैं। कभी कभी जीवन में भी जब भी हम गजलें सुनते हैं तो ऐसा लगता है पूरी जो जीवन है इसमें समा गया है। कुछ लाइन जो है हमारे जीवन को ही दर्शा देती है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है और आशा है आप सभी को आज का जो प्लेलिस्ट है पसंद आ रहे होंगे। विश्वानी दुनमुन जी हैं वाकवा से, आपका स्वागत है विश्वानी जी। और साथ में है सुनीता जी गांव गुप से।

0: तो चलिए श्रोतागण, इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब हम बनेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर। किरण जानकी जी की प्रस्तुति में फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। तब तक पूजा की ओर से आप सभी को शुभ सोमवार और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जुड़िए हमारे साथ। 9 बजे आप समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम लेकर आएगी नीतू शाह।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने अप्रवासी घाट के जो इन विश्व विरासत सूची में शामिल होवत इबरिस 20 बरिस मनावता ओकर एगो बफजोन रहेला ऊपर ध्यान देवसा। जैसे जानेला हर एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के एगो बफजोन रहेला और ई विश्व विरासत स्थल जोन शर्तबन मजदूरी से जुड़ल बा, ई एगो विश्व विरासत स्थल है जेकर संरक्षण के साथ साथ ओकर चारों ओर के इलाका जेके बफजोन बोलीला सा ओकर भी संरक्षण होवेला। यूनेस्को अपन सिफारिश में ई साफ साफ स्पष्ट करेला कि एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के चाही अपन एगो साझेदार लोग खातिर एगो बफजोन रहेगे। उस सब साझेदार, उस सब स्टेक होल्डर्स लोग के ओकर में शामिल करेंगे जे लोग ई बफजोन में रहेलन सा हुआ पर उ लोग के कारोबार होवेला, व्यापार होवेला और उ लोग के सलाह मशवरा से चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अपन मैनेजमेंट प्लान बनावेगे। हर एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के एगो मैनेजमेंट प्लान रहेला जेकर अनुसार ई साइट के संरक्षण होवेला और ई मैनेजमेंट प्लान नियमित रूप से अपडेटेड करल जाला। बफजोन के सुरक्षा खातिर साल 2011 में हियाँ के शहरी धरोहर के संरक्षण और सुरक्षा खातिर एगो प्लानिंग पॉलिसी गाइडेंस तैयार करल गल रहा और कानूनी रूप एक देवल गल ताकि ई इलाका, ई नाजुक इलाका में जोन भी विकास हो, जोन भी कार्य हो, वो विरासत तत्व के ध्यान में रखते हुए करल जाए। एकर मकसद है पोर्ट लुई के एगो ज्वलंत ऐतिहासिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करके ओकर रूप में देखेगी और एकर संगे संगे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के सिफारिश के अनुसार ही 2009 में एगो

प्रोटेक्शन एरिया प्लान स्थापित करा गल ताकि आप्रवासी घाट विश्व विरासत स्थल के बफर जोन में एगो सुनियोजित भावी परियोजना विकसित हुई। मतलब कि अच्छा से सोच विचार के ऐसन एगो योजना जहाँ पर सब कोई के भागीदारी रही और जैसे पोटलुई के पुराना रूप रहल ओके ध्यान में रखते हुए हियाँ के गतिविधि चली। बफर जोन में जितना इमारत बा ओके चार गो भाग में विभाजित करल गल बा और ये चार गो भाग में देखबा त अलग अलग तौर पर हियाँ के जोन जगह बा जोन इमारत बा ओकर संरक्षण होवेला और आप्रवासी घाट ई मान के चलेला कि ई चारों वर्ग के जोन जोन ग्रेड बा उ सब के संरक्षण चाही एगो अच्छा तालमेल के साथ आगे बढ़ावे के। और ई खातिर हर बरिस 16 जुलाई के जोन की आप्रवासी घाट के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करे के दिन रहल आज से 20 बरिस पहले एगो कंसल्टेटिव कमिटी चलेला जहाँ पर सब स्टेक होल्डर्स सब साझेदार लोग मिले लंजा और विचार विमर्श करे लंजा कि कैसे उ लोग सकियन जा ई जोन परियोजना बा ई जोन नियम बा ओकर में शामिल होके अपन कारोबार आगे बढ़ावे। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा। नमस्कार।
1: नमस्कार। आदाब। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया है। कल दोपहर बाद इथियोपियन एयरलाइंस की पहली उड़ान सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पटरी पर उतरी। इसके जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और पर्यटन कारोबार तथा व्यापारिक आदान प्रदान के सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। इलाकाई सतह पर यह मॉरिशस के लिए एक बड़ा कदम है क्योंकि अफ्रीका का ये प्रथम हवाई परिवहन रहा। अब से मॉरिशस की तरफ इथियोपियन एयरलाइंस की रोजाना एक उड़ान भरी जाएगी। मॉरिशस में गए जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दूसरी बात, मुद्रास्फीति दर में धीमापन नजर आया है लेकिन परिवारों के लिए घर चलाना अभी तक मुश्किल है। स्कूल वैन के अच्छे संचालन और कार्यकुशलता के लिए ड्राइवर के साथ साथ एक हेल्पर का होना लाजमी है। मकसद वैन से उतरने और चढ़ने में बच्चों की हिफाजत करना है। इसके अलावा अगर बच्चों को सड़क पार करना पड़े तो हेल्पर को उनकी मदद करनी चाहिए। इसके वास्ते नेशनल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी NLTA हेल्पर को इस काम के लिए एक ऑथराइजेशन कार्ड भी देती है। पोर्ट लुई थिएटर के पुनर्निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण से गुजर रहे हैं। कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया ने परियोजना का जायजा लेने के लिए स्थल का दौरा किया। उन्होंने तसल्ली जताई कि जनता के मनोरंजन के वास्ते बहुत जल्द इस थिएटर को फिर से खोल दिया जाएगा। विदेश में बैंकॉक थाईलैंड में एक मशहूर पब में आग लगने से कम 27 लोग जान से गए हैं, 63 लोग जख्मी बताए जाते हैं। अभी एक जांच शुरू की गई है ताकि इस हादसे की सही वजह के बारे में पता चल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।

0: सबको एक नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में फिरों से आप सब लोगन के स्वागत बाटे। जी हाँ, आज लेंदी के दिन है, तो चला एक घंटा की जो प्रोग्राम बाटे हमनी बात करी लाजा खेती बाड़ी के बारे में। हमनी की जो पर्यावरण हमनी से जो जुड़ल बातें, हमनी की जितना खेतीहर हवन जा काहे कि खेतीहर हवा कोसो माते हवा सब हमनी से एकर से जुड़ल है जा। तो आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबन लोगन के स्वागत बाटे। आज हमनी एगो ऐसा टॉपिक तैम पर बतियाब जा जोन है हमनी के मिट्टी। अभी गीतवन सुनला माटी के मोल, माटी के बड़ा मोल बातें और बड़ा ही अनमोल बातें। जे एकर मोल जानेला वही जानेला कि माटी से हमनी आयल है जा और यही माटी में हमनी चल जाब सा। और जो माटी नहीं रही तो हमनी के खाए पिए के कुछ नहीं मिली। तो चाहेला माटी के निमन से उकर संभाल रखे के उनकर संरक्षण करे के। तो ए पर चर्चा करे खातिर आज फिरों से हमनी के मेहमान हवन फागेदानी से गो अधिकारी हवन। आप हव श्रीमान संजय शंभू। चला इनकर हमनी स्वागत करी ला जा। शंभू जी प्रणाम, नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: कार्यक्रम में आप सबके स्वागत बाटे। तो आज हमनी माटी, हमेशा हमनी माटी से जुड़ल इतना चीज पर हमनी बताए ला जा। आज मटिये पर हमनी जानब जा काहे कि माटी से हमनी के खाए के मिलेला, पिए के मिलेला। माटी जन फर्टाइल बाटे,

0: जोन उपजाऊ हमनी बोली राजा, दू गो प्रकार के माटीन बाटे, एगो बंजर जमीन, एगो उपजाऊ जमीन। हबी बंजर जमीन जो बाटे बाद में हमनी बतियाब सा, पर जो सॉइल फर्टिलिटी के बारे में ई है, कौन ची है सॉइल फर्टिलिटी?
1: तो जब एगो माटी में खुजब सा एगो रोपाई करे के
0: जी,
1: तो जमे निमन से हमनी के पेड़ पौधा जो बा बढ़ी, फल दे, फूल दे वगैरह वगैरह, तो हमने के को माटी चाहेला जो उपजाऊ बात है, जो फर्टाइल बात है, तो एक प्रकार से सकब सब बोले कि एगो उपजाऊ माटी कौन सी है, वो ऐसा एगो माटी है जेकर में सकब सा खेती बाड़ी करे
0: जी,
1: एक प्रकार से सकब सब बोले। लेकिन सही रूप से सॉइल फर्टिल एगो एगो फर्टाइल सॉइल एगो उपजाऊ माटी का है, वो ऐसा एगो माटी है जेकर में जे जे जन जीवित बातें, जेकर में जीव जन जीव लोग आए मिक्रोबा और में कीड़ा कीटाणु वगैरह वगैरह सब ओकर में जीवित बातें वो माटी में, वो केवल अब से वो फर्टाइल सोयल उपजाऊ माटी
0: जी।
1: क्योंकि वो लोग आज नहीं रही तब माटी में और मिक्रोब सब नहीं रही, तब जाके जन बोला जैसे पा बंजर जो शुरू में बोला तगन ला अभी वो माटी में कुछ नहीं बातें, एको एको जीव नहीं बा ओकर में, एको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बा, कुछ नहीं बातें, तो माटी तक अगर कैसे वो बालू पकड़ ले हो या कोनो ऐसे सुखल चीज जैसे पकड़ ले हो,
0: माने कि ओकर में कुछ नहीं सकल जाए रोपाई करे
1: नहीं, तो ओकर में तो एलिमेंट नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, आज ओकर में एगो जीव नहीं सकता रहे तो ओकर में एगो पौधा कैसे बढ़ी ओकर में।
0: तो अब तोहर से पूछती, जब बंजर जमीन की बात करत हुआ तो का एगो बंजर जमीन एगो उपजाऊ जमीन सकल जाए बनाए ओकरा?
1: सकल जाए हाँ, चाहे ला जैसे बुझा सा आम उन्म करे के, तो एगो एगो बंजर जमीन सबसे पहला कैसे जानब से एगो माटी बंजर बाते
0: जी,
1: तो आज ऐसे देखब सा कोनो एगो माटी में जाब सा एगो एगो सीट में आज जाब सा जगह में तो देखब सा वो माटी देखा तो नंगा बाते
0: जी,
1: अगर मैं घास हुए नहीं जमाता तो आज एगो एगो माटी में घास हुए नहीं जमाता तब बोला सही तो एगो माटी बंजर बाते, ये खाली देखे से एनालिसिस चला करे के देखब तो जान जाएब, एगो माटी में देखब खूब हरियाली बातें तो जान तो वो माटी बंजर नहीं बातें, वो माटी उपजाऊ बातें, वो माटी माटी जीवित बातें, ओकर में जीव बातें। अब बंजर माटी के जीवित करे खातिर समय लगी, वो कहना आज कुछ करब काल काल निमन नहीं हुई, तो कौन चीज चाहला करे के ओकर में, तो सबसे पहला तो चाहला ओकर में माछे ऑर्गेनिक आने के ऑर्गेनिक माटर, क्योंकि जीव जन जन जीव लोग बातें जन जीव जंतु बातें आई माटी में रहेला वो लोगों के चला खाए के, तो वो लोग कुछ खा लन सा वो लोग जन बोल जैसा ऑर्गेनिक माटर देबरी वगैरह वगैरह जन बा ओकर पर जी लन सा ना ओके खा लन सा कैसे कैचुआ बातें, तो वो जन माछे ऑर्गेनिक बा खा ला, तो सबसे पहला हमने चला माछे ऑर्गेनिक आने के। अब माछे ऑर्गेनिक जब आनल तो ओकर में तो जीव आज नहीं आए ना
0: जी,
1: तो अब परी औसनी जब माछे ऑर्गेनिक सब डाल दिला वगैरह तब सिंचाई सब करवा जब माटी चला इमी दूर रखे के, अब परी इंतजार करे के कब कैंचुआ लोग आए कब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोग आए, तो जब माछे ऑर्गेनिक दल कैसे गाय के ओकर फीमिया दल तो गाय के फीमिया में देजा ओकर में बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्रोब है निमन निमन मिक्रोब है, तो जब हो फीमिया लेके तू हो बंजर माटी में डाला तो फीमिया के साथ साथ ये जो निमन मिक्रोब बाते वो के डाला तो
0: जी,
1: तो हो जो जीवा चाहेला मिक्रोब के तो वो लेके आना तो। अब गते गते कौन चुहला जब माटी बंजर हो जला तो लाहो से इसे बंजर हो जला नीचे जला, तो कौन चुहला कि जोन जोन जोन चीज रहेला मटिया में तो वो लोग भागे लगे लन तो उसे किला नीचे चला तो जैसे नीचे चला जैसे नीचे चला तो अब एकदम से नीचे ले ढेर प्रॉब्लम हुई तो सकेला मरियो जाए सब
0: जी।
1: तब माटी के जब तू रेफेयर करे लगला फीमिया लेके आके डाले लगला ओकर में आई खूब आए लगल लिमी जीते बातें हम मटिया इमिद बातें, तो गते गते जो हम जी भागल रहा जितना हम खूब भागल रहा तो गति ले तो ले समय ले, लेकिन गते गते गते गते फिर से आए लगी तब जाके माटी आए
0: उपजाऊ
1: हो। और एगो दूसर रूप से सकबा बोले एगो ऐसे माटी के बोलब जा उपजाऊ बातें यानी कि बोली सा जीवित बातें, तो एगो एगो उपजाऊ माटी में बंजर के आज

0: उपजाऊ कर दिला तो दिख जब एगो पेड़ पौधा रोपत हो तो ठीक से बढ़ाता, ठीक से फूल होता फुलाता, ठीक से फर धरता।
1: तो हबी बोलला कि कैसे एगो बंजर जमीन के उपजाऊ जमीन बनेबा, पर एगो बंजर जमीन वो कैसे बनेला जैसे बोलते हो वो कर्मी जो कीड़ा।

0: सा केला एगो एक्सीडेंट होल होई एगो एक्सीडेंट से कोनो स्पिल ओवर होगल कोनो एगो प्रोड्यूस केमिक कोन हो रहल कोई वोलंटेरमन ने दले माना मे लेकिन आग के गन लहुआ परी पड़ गल माटी में तो हो माटी वा में ने कंटामिने होगल तो हो वा के जन मिक्रोब सब बाज इतना चीज रहे लाओ कमें तब मर जाए हाई एगो का एक्सीडेंट वगैरह से लेकिन नॉर्मल मग अब कैसे होला एगो देश के नाम ला सके ऑस्ट्रेलिया बा वहाँ पर ही माटी खोदबा था वहाँ में तो निमक मिलेला
1: अच्छा
0: निमक खाद काहे कि वहाँ के माटी में इतना ले खाद के प्रयोग होलवा वो कारण से तो एगो माटी में आज हमने बहुत खाद डालब सा आबीजे कहते हैं सके बोला सा आबीजे कहते हैं सा हाई फैचिजा डालते हैं सा तो गते गते तो फैचिजा तो शिमिक है ना तो गते गते आज इतना आबीजे कहते हैं सा सही मात्रा में डालते हैं सा तो गते गते गते गते हम मटिया एगो प्वाजों कहते हो जला कैसे उदाहरण के रूप से सकाप सा बोले कल एगो गिलास पानी में तनिशुन नमक डालनी तनिशुन नमक डाल के घोलनी उकर में तो जब हम आज तनिशुन पिया पिए के नहीं चला मैं पुले खाते नहीं से बताए वो उदाहरण जो होता है पिया चार तो तनिशुन साले बाते नमकीन बाते तो पिए ला ओके पी ले ला प्रॉब्लम नहीं बाते अब हवे पंजा में डन ला हम 10 कुए 15 कुए लेके डाल के घोड़ा था हवे लेके तो गला बोला पिए के कब नहीं पीबा हाँ तो वो और आज पीबू कर सकेला और पाँचों माँ कहते हो जाए बस इतना ले कौन सा उतरे बातें तो हवे प्रकार से जब खाद जो बा फिर चीज ऐसे डालब सा अभिषेक करब सा तो इसे हो जो निमक के जो कौन सा थ्राशों बा माटी में वो बढ़ चला तो जब बढ़ जाएगा तो सब चीज़ डिबालांस हो लगेगा जितना मिक्रोब वगैरह वगैरह बा सब भागे लगे सब मरे लगे सब अब एक अलावा ढेर चीज ऐसा बा जो शिमिको से जुड़ल बात है कैसे कोई कोई हर्बिसाइड लेबिसिड के प्रयोग करेगा अब एक आध गो लेबिसिड है जो उनके जो मिला सा रेमानोस यानी कि आज आज हम माटी में डालब एक आध गो लेबिसिड है गन्ना सकेला तीन समय तीन हफ्ता या चार हफ्ता के बाद गन्ना लेबिसिड के लेफे जाए लगेगा लेकिन एक आध गो है छः महीना नौ महीना बरिस भर ले ओकर लेफे रहेला तो आप गन एक जनाबा जो ऐसा ने लेबिसिड के प्रयोग करा था जो लंबा के मानोस बाते और ओके रेपेची चीज में हर घड़ी ओकर प्रयोग करा था तो माटी गते गते गते गते जो जी बाते हाँ तो अफेक्ट होता बता बंजर हुए लगला तब देखो ओकर में कुछ नहीं जमेला तो कुछ रोबू कर बा सकेला फिमियाओ दल हुए बा तो थोड़ा सा घड़ी खाते नहीं से मोते हुए तब देखा पाची हुए लगल मुरझा जला ऐसे हुए तो इस प्रकार से सका सब बोले कि कोनो कोनो पेस्टिसाइडो जन मारा जाए डालब सा माटी में तो ऐसे एक रो में प्रॉब्लम होला अब एक अलावा एक आगो चीज बा जो फेनोमेन नेचुरल सा हुआ कैसे बा सुखारी
1: जी
0: जब सुखारी आल और इरीगेशन ने बातें पानी ने बदा लेके माटी में तो माटी तो ऊपर से अब सूखे लगल सूखे लगल सूखे लगल तो जैसे बोलनी सा माटी तो जीवित बा ना में कितना मिक्रोब बातें तो जब सूखे लगल वो लोगों के पानी चाहेला
1: जी
0: तब बोलो कि पानी नहीं मिली तो लोग भागे लगे हैं या ऐसा नहीं को काल जो गंदा बहुत से वे बात ऐसे मरे लगे हैं तो जब भागे लगे हैं या मरे लगे हैं तो हम माटीवा में तो गंदा अब जीवित नहीं बात है तब कुछ हुई तब हुई तब बंजर हुई लगी अब दूसरा एक आध गो फेनोमेन बा गते गते एक आध गो आदमी लोग खुशी ला अपन खेत के निमन से तैयारी कर फर्स्ट क्लास तो कुछ कैल सब घास लेके निकाल देवे जब सब घास निकाल देवे तो माटी नंगा रहेला
1: जी
0: और जब माटी ढेर नंगा रहेला तो ऊपर से सूर्य जो धूप रहेला तो मारेला तो माटी तो अब अथी तापमान बढ़ेला जो माटी जो पानी बा माटी में एवापोरे होला जो हवा बाते एगो हवा जब झोंका हुआ था तेजी से तब लाहो की माटी जो छोटा छोटा बात कब धूल
1: उड़ेला
0: अब लाहो के माटी कुछ टोपसोल वही सबसे निमन माटी है
1: जी
0: हवे में रोपाई के लासा 20 से 30 सेंटीमीटर ले जाला ऐसे टोपसोल तो हव जब नंगा कर दिला माटी अब हवा मारी तो निमन माटी धूल की तरह ऐसे उड़ता
1: जी
0: तो निमन माटी तो जाता तो कुछ रहता जो माटी निमन नहीं बा वर्षा भी हुआ तब भी ऐसे हुआ निमन माटी भाई के चल दला अनेक कारण
1: तो चल हमने के जितना जना अभी सुनत हो वन जा 402 80 85 402 808 पाँच पर सक बजा हमने के फोन करे कुछ

0: रही आज हमने मिट्टी जन ओकर उपजाऊ मिट्टी पर हमने बतियात है जा सकेला तोहर लगे तो नहीं सुन माटी बाते रुपाई करे कि मन बा पर नहीं सकत हुआ करे सकेला कोनो प्रॉब्लम बाते तोहर जमीन जन बाते वो बंजर बाते कुछ रही पूछा हमने के मेहमान हवन श्रीमान संजय संभू तक 402-8085-4028-5 भाई संजय हबीब बोला कि फैचिलीजों के मान कि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल होला तो एक से जितना इस्तेमाल करते जाएबा हमने की जो माटी बाटे ओकरा अफेक्ट करता और बैठे फैचिलीजों और फैचिलीजों की बात जब करत हुआ तो जब फैचिलीजों के बात करत हो पेस्टिसाइड और फैचिलीजों सबसे आगे चाहला जाए कि दुगो अलग चीज़ है हाँ
1: दुगो अलग चीज़ है
0: जी
1: फैचिलीजों में तोरा मिनरल्स मिला मिनरल मिला खाई के मिलेगा
0: जी
1: तब जो पौधा लोग बा जब खाद के फैचिलीजों के माटी में डलबा तो जब सिंचाई करवा या पानी बरसल या माटी में लिमिजते बाते तो वो जो फैचिलीजों में पिघल डाला पिघल के कुछ सोल्यूशन हो जाला
0: जी
1: तब घासन जो जर बा जरी बा तो वो तू तक मुँह ने माना खाए के तो वो सोल्यूशन में हिंचेला
0: जी
1: तो जब हिंचेला पानी के तो वो सोल्यूशन को हिंचेला तो जो खाद में जो एलिमा रहा तो मिलेला खाए के
0: सकब सब बोले फैचिलीजों जो बातें माटी के उपजाऊ बनावेला
1: नहीं माटी के बिल्कुल उपजाऊ नहीं बनावेला फैचिलीजा सिंथेटिक है केमिकल है और में एक आधो मिनरल्स बाते कैसे एन पी का मैग्नीशियम बोरोन माइक्रो एलिमेंट्स सब कर में बाते डिपेंड कौन फैचिलीजा से प्रयोग कर ला जैसे बोली गन्ना गन्ना एक मुठा खाद लेके तू एक जगह में डाल ला
0: जी
1: तो एक मुठा खाद वा जब सिंचाई होल तो पिघली ओकर में से हो खाद में से सकेला आधा आधा से ज्यादा सकेला डिपेंड कौन खाद प्रयोग हो रहा
0: जी
1: आज नाइट्रेट बेस रही था सकेला वो ले में वोलाचिल हो जाए चल जाए वोलाचिलिटी हो जाए अब जो बचल वो माटी में गल एन पर्ची धुआ के चला तब एन पर्ची खाली हो जो जड़ बातें वो हिंची लेकिन जहाँ पर ही दल्ला हो एलेमावा वो एलेमावा तो हुए परी बा अब जब हो एलेमावा हुआ परी बा तो वो तो खाली जन जरबाओ की हिंची ये तक वो माटी में एको कॉन्ट्रीब्यूशन ने करी जीव जंतु लोग के आने के हाई हाई ये कर में फर्क बात है फिर चीजों जन बा वो तो हर वो खेत के ज्यादा जीवित नहीं बना वाला खाली को एलिमा दे हुआ था
0: जी
1: है तोहरा खाए खाते कैसे तो एको विटामिन ले बा
0: जी
1: तो हो गया
0: सप्लीमेंट नियन हो जाए
1: जिसकी आप उसका पेस्टिसाइड्स के पूछ लो वो केमिकल्स वो गंदा कुछ के मुआई के
0: जी
1: कैसे मारू घास के मुआई के बाद एबिसिड के प्रयोग करवा कीड़ा के मारे के बाद या बीमारी के से लिपटे के बाद तो ऐसे चीज या फोजिसिड के प्रयोग कर
0: अच्छा एक जना हवन उनका से हमने बताया आप जा हेलो
2: हेलो वी
0: नमस्ते
2: हम वहाँ तो बीमार है ला
0: बोला भैया नमस्ते
1: नमस्ते
0: हाँ बोला
2: हेलो
0: हाँ बोला सुना था जा
2: हाँ तोरा प्लांटेशन बैगन कर लेला नी गांचियन फरे लगाया तो सुखा जाला
1: हाँ अच्छा
2: गांचियन सुखा जाला सब नहीं सुखा ला
1: हाँ
2: वो पौची सुखा जाला और वो एकाद गोड़ा जाला
1: हाँ
0: एकर कारण
1: हाँ एकर में जहाँ तो सब माटी वे में से आवेला ता जन हमने के जन खेती बाड़ी करी ला जा जन सब्जी खाए ला जा ओकर में से ओकर में एकाध गो वंचन जन बहुत ही कना नाजुक रहे लन सा
0: जी
1: ओकर में है बैगन तब बैगन कुन चुला जब रोपाई कर बा तब दिखबा खूब हरा रहेला बड़ा होला लेकिन ये जन भैया बोला तो ये समस्या ये खास कर आवेला जब फुलाला या फर धरेला तब होला तो ये कारण कुन छ उस समय जब बैगन के जो पौधा बाते फुलाता फर धराता उस समय हो जो डेवलपमेंट प्रोसेस बाते बैगन के ओके भी लासा वेरी एनर्जी डिमांडिंग है तो उस समय वो जितना ओकर ओकर ओकर ओकर कैसे बोला ओकर
0: लाफोस
1: लाफोस जो बाते वो डालता वो पौधा डालता फुलाए खातिन और फड़े खातिन और हवे समय स्ट्रेस हो गए कोनो प्रकार के स्ट्रेस आल उसका कि माटी में पानी के स्ट्रेस होल उसका कि जो इन खेती हर बातें सकेला अर्थिंग अप करता माटी चढ़ावा था या कोनो तरह के को स्ट्रेस आल तो दिमाग

0: लॉसी हो जाए तब वो कारण सुखे लगेगा.
1: तो हमने आशा करे थे जब भाई जी की उनकर सवाल
0: उस समय चला वो सब आई माटी ने चढ़ाई के चला माटी की स्ट्रेस ने कराई के जितना लिमिट जितने चला उतनी ही आई ज्यादा भी नहीं चला डाले के पानी कम भी नहीं चला डाले
1: जी जी. और लोगीत एग्रीकल में ये सब मिले
0: ना. हाँ ये सब मिले ना
1: वेबसाइट पर भी जो बातें मिले ना भाइयों. तो हमने मांग कर अब जा जे कुछ जाने खोजत हुआ और तो देखिए लोगीत एग्रीकल एक और जना हवन. हेलो हेलो
2: हेलो बहन जी.
1: नमस्ते जी.
2: नमस्ते भाई जी. नमस्ते बहन जी.
1: बोला जी नमस्ते.
2: हमार तीन गो किशों बा.
1: बाप रे बाप तीन गो.
2: हाँ देखा पहला किशों ये है काहे चाहेला हमनी के लाते मिजेते में फूल या कुछ भी रोपे की. दूसर बा जे तीन दिन के बाद की चार दिन के बाद चाहेला को कुछ प्लांटलो में पानी डाले की. और तीसरा जोन है जे काहे मट्टी के चाहेला आग में भूंज के तोल में डाल के चूल्ही बना के भूंज के वो मटिया में डाले की. हाँ ये हम जाने खोजे थे काहे अंतर बैठना.
0: तीसरा तीसरा फिर से बोला था तीसरा कौन सा.
2: तोल में अतिवाजे लंबा तोल में नीचे आग डाला और मटिया के खूब भून द भूंज के छोड़ द और कैसे भी बेचा था ना मट्टी पे पागे कर सब. हम यही जाने खोजे थे काहे इतना अंतर बा.
0: अच्छा सबसे पहला बोला काहे को माटी के चला इमिद रहेगी. जहाँ तो जैसे अभी शुरू में बोलनी एगो एगो पौधा के एगो पेड़ के ओकर जड़ी रहेला जड़ी माटी में बाते जन जड़ी बाते हमनी कलिते जानवर की जानवर कलिते वो लोग के मुँह ने बाते खाए के तो वो लोग कैसे खा लन सा वो लोग के जन जड़ बाते ओकर में दिखबा आज एगो एगो कैसे एगो लाके जोयों के कबर बा दिखबा ओकर जड़ बाते खूब फिन फिन रहेला उज्जर उज्जर रहेला तो हवे द्वारा वो लोग खा लन सा. तो आप कैसे खा लन सा जड़ी वो की तब मुने बातें तो वो कुंच कहला वो खाए के अब्सोर्बे कहला उस सोल्यूशन के रूप में ले वेला. तो जब एगो माटी में तो खाए के रहेला ना एगो माटी सूखल रही तो के तब पानी नहीं मिली पिए के घासीनुआ के. जब पानी नहीं मिली भाई घासीनुआ के पिए के तब खाइवो के नहीं मिली. और जब एगो माटी में लिमिजते रही तनिशन पानी रही एक्सेस पानी नहीं है लिमिजते बातें तो जो खाए के बातें माटी में तो वो लिमिजते में मिलल मतलब मिलावल बातें एगो सोल्यूशन के रूप में होगा बात. जब घासीनुआ जो जड़ी बातें अब जब हो पानी हिंची वो अपन पिए खातिन तो साथ साथ सोल्यूशन के रूप में जो खाए के बा माटी में वो भी हिंच देवेला. तो वो कारण चाहला वो माटी के इमिद रहे के हाय एगो. दूसरा चीज बोला कौन सा दूसरा चीज
1: चाची
0: ये हुआ कि चल गया.
1: अच्छा
0: बाप है ना. तीसरा चीज रहल तीसरा चीज रहल माटी के भूंजे के
1: जी.
0: हाय वो हाय हमने जाता है पहला वाला हम सुन ले हाय. लेकिन देखा हम तोरा एगो दूसर एगो योजना है समझाएला माटी के कैसे सुलागिजाशन कर देला.
1: मतलब
0: सुलागिजे सावेजे
1: धूप
0: के किरण से माटी के ओकर तापमान बढ़ा के जन कीड़ा कीटाणु बा के मारे के. हाँ तब हमर हमर ख्याल से शायद है जन भुंजे के बुलाता शायद कोई निकते बात है. लेकिन है भुंजे के हमने जानी ला तो कुंच कैला सा माटी के एगो प्लाज्मान बनेला. तो इत हाउ गन्ना माटीवा में जब कुछ सेमे कैला कुछ है बीज डाले ओकर में तो बीज उठ के तब देखा तब मर जला. तो एकर एकर कारण बाकी शायद माटी में है अनेक प्रकार के शायद बीमारी वगैरह ओकर में हो कैसे पिचम बातें वगैरह वगैरह बीमारी के नाम है. तो ओकर से लिपटे खातिन जन जैबा एगो फौजी फौजीसी डाले रासायनिक रासायनिक पदार्थ डाले तो सबसे सहल सबसे सरल चीज बा हम हो प्लाटबानवा के एगो एगो प्लास्टिक से ट्रांसपार एगो प्लास्टिक ट्रांसपार से जन बेचाला लेकिन ढक दिया. ढक के ओकर चारों ओर ओके कना एमेचिक कर दिया फेमे कर दिया ओकर पर पत्थर माटी वगैरह वगैरह चढ़ा दिया चारों ओर. जब ओकर में धूप मारी तो हो जन प्लास्टिक के नीचे जन माटी बा तो कहते तापमान बढ़ी तब दिख बा तरे में ट्रांसपिरेशन गुटले पानी सब बाते क्योंकि माटी तो ट्रांसपिरे होता ना एवापोरे होता ना ट्रांसपिरे नहीं सॉरी एवापोरे होता. लेकिन क्योंकि वो प्लास्टिक बा कर में तब हो पानी नहीं सकता बाहर निकले वहीं पर ही ट्रैप बाते. तो हाई से जब हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता से छोड़ दिला

0: ओकर तापमान जब बढ़ी बढ़ी तो जन कीड़ा कीटाणु लाहू में मटिया में बा तो वो मर जाला तब सदब अपन प्लास्टिक निकाल के तर में अपन माछे ऑर्गेनिक डाल के बीज ओकर में सेमे करे तब जाके तोरा निमन से हो जेमिनाशो हो
1: तो हम आशा करे थे जा जो चाची हवन उनकर सवाल के जवाब मिलकर बाटे एक और जना हवन नए का दे बोले था नए हवन तो चल हमनी के साथ दिया जा आज हमनी माटी जो उपजाऊ माटी है सोल फर्टिलिटी के बारे में बताया था जा एगो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आएला जा

बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हवा माटी के मोल कार्यक्रम तो नहीं बा लेकिन हाँ माटी के मोल हमने बात करत है जा जब सॉइल फर्टिलिटी है और अभी एगो चाची पूछलन कि माटी के बुझा

0: जाला हबीले हो प्रश्न वा हमार दिमाग में बातें भाई शंभू एक बारे में तनु सुनो और कुछ बोल बा
1: हाँ जैसे आगे एक उदाहरण ले सुलागिजाशो
0: हाँ
1: और एक चीज बा जो इन किसान लोग सक्यंजा करे वह जब कैसे योगिक फार्मिंग वेला जा
0: योगिक फार्मिंग जैविक फार्मिंग तो जानी ला
1: हाँ योगिक फार्मिंग एक चीज बा उसका नाम है अग्निहोत्रा अग्निहोत्रा ता उकर में सूर्य देव के पूजा करा लला ता उकर में एगो मंत्र भी बाते और जन चीज जन जलाए ला जा
0: जी
1: गाय के जन गोबर रहला एगो केक की तरह रहला ता उके एगो मंत्र के साथ जन जलाए ला जा तो उकर राख जन मिलला सकब जा साथ में लेके एगो पानी में डाल के छोड़ के तब फिल्टरे करके तब उके अपन पेड़ पौधा पर सिंचाई करे या फिर माटी में डाले
0: अच्छा।
1: वैसे ही सकब जा कैसे कबो हमने के जन मिला सा आश जन आसान मिलेला हाउ सकब सा प्रयोग करे
0: जी इत निमन बात है कितना चीज हमने आज जान ली जा तो चल 402-8-4-0-2-8-0-8-5 पर कुछ पूछे के बाद माटी से जुड़ल भाई शंभू हवन तो हर प्रश्न के जवाब दियन एगो प्रश्न हावेला है जा परी जब हमनी रुपाई करत है जा खेती बाड़ी करी ला जा आजकल ढेर हाइड्रोपोनिक्स हमनी देखत है जा सगरो सगरो बातें तो हाइड्रोपोनिक्स में वो लोग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करी ला तो हौजा के माटी जिन बातें फर्टाइल बातें और कई जना जो बातें जो हाइड्रोपोनिक्स प्रोडक्ट्स के बातें वो लोग के बोले ना जा आज वायु एक बारे में कुछ बोल बा
1: दोनों गलत बातें
0: कैसे
1: सबसे पहले तो हाइड्रोपोनिक्स में जैसे बोला जा वह सॉइललेस कल्चर तो सॉइललेस कल्चर में तो पहला तो माटी में नहीं रुपाई होता
0: जी
1: हाँ तो हाइड्रोपोनिक में कैसे रुपाई होता या तो फिर जो जैसे बोला साख कोकोपीट में कोकोनट क्वायर बाग्स में है एगो या फिर दूसरा ना एक्वापोनिक के सिस्टम में ताकि पानी से किले होता तो उकर में जो पौधा बात रखल बात उकर रुपाई होता दोनों में यानी कि सॉइलेस कल्चर में जैसे तू ही बोला फर्टिलाइजर डाल लेता जैसे शुरू में बोले नहीं था एगो एगो एगो उपजाऊ माटी कुंचा एगो माटी जो जीवित बात जो में जीव बात है कोकोनट क्वायर बाग्स में कौन जीव बात है तो नहीं बा जो एक्वापोनिक होता होता चियो में बातें ओकर में कौन जी बातें ओकर में नहीं बा जितना चीज हाइड्रोपोनिक में बा सब सब आर्टिफिशियल कोकोनट क्वायर बाग में कुछ नहीं बातें आज फर्टिलाइजर नहीं डाला जाए कुछ ओकर में नहीं हुई एक्वापोनिक में आज फर्टिलाइजर नहीं डाला जाए तो एको पौधा ओकर में नहीं बढ़ी तो ईगो कैसे बोला जाए भ्रम है कि हाइड्रोपोनिक फर्टाइल वगैरह वगैरह ये सब नहीं है
0: अच्छा
1: बिन फर्टिलाइजर कल आज कल आज एगो एगो दुविधा हो एगो समस्या हो बाहर गनल हमने हमने के जो फर्टिलाइजर मंगाएला सब बाहर से कोनो ओकर में समस्या हो गल पहला सेक्टर जो आज आफेक्टी हुई वह हाइड्रोपोनिक क्योंकि वो 100% फर्टिलाइजर खाद पर निर्भर करेला
0: जी
1: है एगो दूसरा बोला बियो हमरो देखले है एक आध जगह में हाइड्रोपोनिक के ओकर जो फौजी बात है राप कर पुमनामू बात है वगैरह बकेट में ओकर में डाला सब फौजी नेचुरल एक आध जगह में फौजी बियो सब बा ये भी गलत बात है सबसे पहला आज फैचिजा साइड चिक के प्रयोग होता हाइड्रोपोनिक में तब यहीं पर नहीं सके लाओ बियो रहे क्योंकि उतर साइंटिचिक है ना शेमिक है ना तो यहीं पर तब भांडा पूज जला ना नहीं नहीं नहीं छावा एक बोला जैसे बोला सा एक मिसलीडिंग मार्केटिंग एक इलिसिट मार्केटिंग
0: कोनो कॉन्ट्रावेंशन कुछ बा एक बारे में कई की जैसे बोले तो वह बियो नहीं बातें पर बियो बतावल जाता
1: हाँ तो जन जन यानि के जन ऑथोरिटी हुई जन इंस्पेक्शन करेला जन जन यानि के खाए के चीज बेचाता ला जन ला सेंटे के अफेक्टे करेला या जन मार्केटिंग जैसे बोली मिसलीडिंग मार्केटिंग होता तो सब ऑथोरिटी बात जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह से केला हुई तो वो लोग के चलान देखे के तो एक में और एगो चीज देखा कैसे खेलन सा शब्द से हम तो के कोनो प्रकार के एगो पुमनामो बेचब तो बोला देखा लिख दे फौजी नेचुरल कुछ नहीं सब बकरे का है सच्चे के नेचुरल ना प्लास्टिक नहीं है ना
0: नेचुरल तो बा
1: लेकिन शब्द के जो प्रयोग करवा नेचुरल
0: तो जब पाछे कोन चीज डालल गबा
1: जब इंटरप्रेट करवा तो ए नेचुरल लिखवा बी यूज सकेला हो
0: माने कि इमे कुछ न डालल गबा
1: हां ऐसे देखा कैसे शब्द से

0: इलान सा तो हाई सब हमारे देखे मैं हिसाब चीज जहाँ नहीं डाले के हिसाब के जहाँ बहन आए एगो रिस्ट्रिक्शन डाले के कि ऐसा ऐसा सब नहीं चाहा प्रयोग करे के और जो जे बियो डाला था तो वो तो जस्टिक खराब बात है
1: जी
0: क्योंकि फर्टिलाइजर के प्रयोग बाद नहीं सकेला बियो रहे बाहर में लेकिन इसे एगो दोस्त हमारे सेशल में वहाँ पर ही हाइड्रोपोनिक करा था लेकिन वहाँ पर ही हाइड्रोपोनिक करा था लेकिन जो खाद बहु खाद के प्रयोग नहीं करेला वो जो वो वर्मी कंपोस्टिंग करेला जब वर्मी कंपोस्ट से जो लीचे तावेला जो सोल्यूशन मिलेला हवे जिलिए करके विदा करेला अपन सिस्टम हाइड्रोपोनिक में यानी कि ओकर जो एलिमेंट जो खाद प्रयोग करा था वो नेचुरल
1: नेचुरल बात है चलो जो काम करवा ईमानदारी से करवा
0: ईमानदारी से करे
1: जो चीज करत हुआ जो कुछ डालत हुआ तो चाहे ना जाने के चाहे ना लिखे के अब हम जब सा खेत में ढेर जना ढेर खेतीहर वो लोग अपन खेत की जब तैयारी करत हुआ जा उपजाऊ सब करत हुआ रोपाई करत हुआ जा तो अर्थ वर्म्स मान की लेवे है ना लेवे वो सब कैचवा वो सब लौकेला तो वो सब देख के वो लोग के कौन चीज बुझाला
0: डेरा जालन सा
1: डेरा जालन सा ये कौन चीज चाहेला करे कौन चीज है एकर उचरीते कौन चीज है एकर लेपोतोस कौन चीज है माटी में
0: सच्चे के ढेर कोई कैचवा के देखेला या डेरा जालन सा या सोचे लन जा कि हमार खेत में कैचवा बा हमार हमार जन सब्जी बाओ के खा ले बिल्कुल ऐसे नहीं बातें जब तक कैचवा बातें तो हर माटी में ई एगो संकेत करता कि तो हर माटी उपजाऊ बातें
1: अच्छा
0: देखा जन कैचवा बाते वो एगो जन माटी में माचे ओगानिक ने बाते वो वहाँ कबू नहीं रही सबसे पहला ये तब एगो कैचवा देखला माटी में तो एक संकेत था कि तुम माटी में माचे ओगानिक बाते तो अच्छा चीज बा है एगो दूसरा चीज हाउ जन कैचवा बा वो तो माचे ओगानिक ओकरे चला खाए के ना
1: जी उनको जी खाला
0: माटी में सब खाला माचे ओगानिक डेब्री वगैरह जन नेचुरल से बोला जाए सा वो बा खाला जब माटी में मिलेला लेकिन जब खा के जब निकालेला तो उता एगो कंपोस्ट खाफीने का इतने तरह दे होता तो देखा कैसा निमन काम कर रहा था तो हर का दिन तो यानी कि हमने के पेड़ पौधा लोग के वो एलिमेंट दे होता जस्ती खाफीने और लोग के जब मैं प्रयोग कर दिया था हाई दूगो तीसरा चीज कैचवा माटी में रहे खातिन तो वो तो एकदम से एक एक जगह में नहीं रहेला ना
1: जी
0: तो चलेला चले जब चले लाता जिसे बोला सा जब टनलिंग कर रहा ना
1: जी
0: हाँ जब टनलिंग कर रहा था कुछ होता आयराशों में रहता क्योंकि हम जन जन जर बा ओके चाहना भी आए रिस्पिरे करके ओके भी आए चाहना रिस्पिरे कर जिए के हाँ तो आज ऑक्सीजन नहीं मिली ओके तो
1: नहीं जी
0: हाँ तो देखा कैचवा कैसे हम हमने की सहायता कर रहा था आए राशो माटी में ला होता तो कैचवा संकेत करता तोहर तोहर जन माटी बा उपजाऊ बा ओके संगे दिराए के नहीं चाहला ओके मारे की भी नहीं चाहला ओके संगा छोड़ दे के
1: जी तो चलो जितना जना अभी कैचवा देखा तो वह अपन खेत में अपन कारों में बातें तो ओकरा उठा के नहीं फेंकिया वो तो हर माटी के बढ़ियार बनावे के मदद पहुंचा हुआ था।
0: हाँ।
1: अच्छा आजकल हमने टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे जय शंभू जी और हमने ढेर जाने मेकानिजेशन ढेर हुआ था क्या कि मैदेव के प्रॉब्लम बातें आजकल खेत में जहाँ जैब देखब तो जो ट्रैक्टर वो सब बातें हमने के माटी के जैसे बोली ला जा प्लोइंग प्लाउिंग करें सा तो एक बारे में तनि सुन बताओ माटी खातिर अच्छा है कि अच्छा नहीं है।
0: सबसे पहले तो जैसे बोला अभी जो कम करवा के बाद कभी कमी बात है तब कबू कबू पढ़ेला ऐसा नहीं कोई चीज करे कि ऐसे मेकानिजाशों बातें तब माटी की तैयारी खातिन माटी की तैयारी खातिन प्रयोग होला अपने आप में ऐसा तैयारी जो माटी के एंजिस्टैक्ट में सब माटी के प्लाव करता नहीं चाह
1: जी
0: काहे नहीं चाह बस कि एगो तो जन तोहर जैसे बोली टॉप सॉइल बात है उतर लाहो मानो तो टॉप सॉइल ला के उल्टा नीचे कर दे वेला
1: अच्छा
0: तो हाई एगो
1: ती वो अच्छा पाचिक नहीं है मटिया के जैसे तन तन सुन उलट पुलट कर रहता है तो मटिया के फिर से रिस्पिरे ये सब
0: नहीं अभी ओकर पर आयला तो ये सब उल्टा पुलटा कर दे वेला एगो एक आदगो लामोताज भी हमने बोलता नहीं है मैं फोना मोहताल मैं जैसे बोलता है पढ़े ला करे के क्योंकि दूसर अथी ने बात दूसर योजना ने बात है कैसे कर जाए तो अच्छा पढ़े ला करे के लेकिन हम मुझे जहाँ ले सकल ला ए विधे करे नहीं करेगी तो जहाँ नहीं करेगी काहे क्योंकि माटी के उल्टा पुलटा कर दे जब माटी में तो मिखोब वगैरह वगैरह रहल जीव रहल तो जब माटी वहाँ के खोल लेला उसे तो धूप नहीं बातें तो सब अब माटी

0: अब एक्सपोजे बा धूप में
1: तो
0: जो निखो बा कुंच हुए तो माटी में से जो निमिचते बा कुंच हुए सब ए वापोरी हो लगल तो जन जन जीव बाते तो भागे लगे तो जैसे नीचे जाए लगी तो हयो हयो हुला हवा बाते जैसे बनी शुरू में हो जन धूल कहते रहला तो उड़ेला तो माटी के जब बीने कर देला एकदम से फिन वगैरह सब माटी कैसे छोड़ दिले हुआ तो वो देखो हवा मारा जैसे धूल ऐसे उड़ा था देखा था लाहौ के मटिया कुंच धूल हुआ टॉप सॉइल ऐसे उड़ा था ऐसे चल रहा था खूब ऐसे तैयारी कर दिले हुआ तूफानी मौसम के समय चलाल बा तूफान आल तो क्योंकि सब माटी खुल गल बा कसी जब मशीन पास हुआ खुल गल बा ना तो जब एगो बाढ़ आए तो कुंच कला सब माटी लेके चल जाए तो ये कार्य नहीं था हमने कि जहाँ तक हो सकी हाँ देखा हमने बोला था नहीं चाहला करे के क्योंकि कम करवा के कमी बातें तो आज पढ़ी करेगी तो पढ़ी करेगी लेकिन हम बोलते जहाँ तक नहीं चाहला करेगी तो नहीं करिया कैसे एगो माटी में गनला दरी एगो सब्जी बा जन दरी से होला दूर दूर में रोपाई होला तो उस सकबा ओकर में ओसन एगो माटी में एगो तोंदेस की तरह पासे ओकर में चला दे
1: जी
0: तो जितना घास पाता नीचे से काट दे ना तब दरी कर देबा तब दरी दूर दूर में अपन जन जिस तरह बा एक मीटर में या दो मीटर में वगैरह वहाँ पर ही टूरू करके खोद के तब वहाँ पर ही अपन रोपाई कर देबा तो इसे माटी के नहीं हिलेला तो इस प्रकार से तो हर माटी भी सुरक्षित बात है ओकर में घास बात है ऊपर से धूप ने मार ओकर में नहीं मारा था वगैरह वगैरह
1: अभी धूप के बात कर रहे थे अभी सौंसमा लेता हूँ कि हमने बात कर रहे थे जब मोटका पानी आवेला हमने कबू कबू देख लीजा कि कोनो कोनो कारों में खेत में जो पानी बा वो रमासल कर बाते वो जो बाते और कोनो कोने में वो जैसे हम बोली ला सब हाँ भीतर चल जा
0: हाँ हाँ तो एक में हवे है मेकानिजेशन वगैरह से जुड़ल बातें आगे हाउ आगे जो बोला था नहीं ऊपर ऊपर और एक चीज बोल देला हाई जो टेक्निक बोलनी कि जो माटी के सगब नए काम करे ओकर में नए हिलाए खाली जहाँ चाहे ला हुआ अपन दरी करके बना अपन दरी कोड़ के वहाँ रोपाई करिया एक नाम है मिनिमम टिलेज
1: जी
0: है एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कनाला मिनिमम टिलेज अब एक दूसरा जीरो टिलेज ये भी है तो जीरो टिलेज में माटी के बिल्कुल भी नहीं कोड़ा डाला माटी के ऊपर जो माचे ऑर्गेनिक बा सूखल पत्ता बा वगैरह वगैरह डाल के एगो एगो बिस्तर की तरह बनावल जाला तब हवे में पौधा वाला डाला तो माटी में नहीं कोड़ला तो ये जीरो टिलेज होगा अब मिनिमम टिलेज में जहाँ खाली चाहेला हुआ कोड़बा इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में है तो माटी के सुरक्षित रखे खातिर अब जब थकते पासे हुला जब बड़का बड़का मशीनरी बा तो भारी देला ना जब पासे हुला तब माटी के कोपाक्षों कर लन सा पासे माटी दबाता एगो दूसरा चीज एगो एगो चीज है फाइन दी कोकिंग यानी कि जो माटी में हो छोटा छोटा पत्थर तो बड़का निकल ही जा निकाला जाता तो यहाँ पर फाइन दी कोकिंग जो पीती पीती छोटा छोटा पत्थर बा ओके भी निकाला जाता तो जब भाई सब निकाल दिला छोटा छोटा पत्थर वगैरह तो कुंची लगल
1: बोतोस बात है ना
0: लोगों के लिए पहुंचा तो जब कुंची होगा तो खाली जन माटी लगलवा हवे लगलवा अब ओकर में मशीन पासे होला
1: पर सुपो नहीं रहेला माने की अंदर
0: जस्ती को हां कॉम्पैक्टी होता अब जस्ती कॉम्पैक्टी होगल जब पानी बरसल जब वर्षा हो तो कुंची हो और जितना हो माटी बा पहले तो पत्थर वगैरह रहल तो पत्थरवा गला एगो घोंपा के तरह माटी से ढूके
1: जी
0: और जब खाली माटी बातें तो सब तक लाकुल की तरह गना कोले हो गलवा ऐसे चिपक गलवा सब तो जब पानी बरसता तो वही तरह लोकेला लाहो में बासें हो जाता क्योंकि नीचे अंदर नहीं जाता
1: जी तो कबो कबो हयो देख लीजा कि कबो कबो पानी जब बरस गल बाते तो कोनो माटी दो तीन दिन बाद ही वो सूख गल बाते क्रैक होए लगल बा जबकि दूसर लगे हमारे पड़ोसी लगल ओकर माटी जो माटी मॉइस बाते वो कैसे
0: हाँ तो ये हो खातिर धूप भी चाहेला तगना वर्षा हो जैसे बोलला दो तीन दिन बाद देखो तो माटी सूखे लगल क्रैक होए लगा कैसे होला जब माटी में पानी बरसल तब भीगा रहल इमिद रहल अब ओकर बाद जब धूप निकलल सूर्य आल तगना जैसे बोला सा हर्ड सन जैसे गर्मी के मौसम में तापमान भी ज़्यादा बा 30 डिग्रीज करता वगैरह तब या ज़्यादा 34 वगैरह ऐसे करा था तो माटी जनबा ओकर में जो निमिजते बात ओते इवापोरे हो लगा

0: इतना लेकिन गर्म कर रहा था. अभी कोई पानी बचा, अभी एक कुछ पानी आ गए थे उगल, एक कुछ आ गए थे उगल, रुक गल, अब खाली धूम बाते लगता एवापोरे होता, एवापोरे होता, एवापोरे होता. जब एवापोरे उगल तो जब माटी अब देता देताशे हो रहा, इमीद माटी तो संगे रहेगा तो देताशे हुए लगा तो तरह वो ये हो लालिन
1: क्रैक.
0: हाँ एक एक रेखा की तरह लगेगा इसे निकलवा क्रैक हो जाएगा. तो है आज ज़्यादा सिचुएशन बिगड़े स्थिति बिगड़ते जाए तब तरह जैसे फिल्म में लोग ऐसे आए सकड़ो इसे लालिन बा फाटे लगल ऐसे तरह लोग की. अब कोई लगे जैसे बोला अच्छा से बोला, कोई लगे सकेला माटी फाटत हुई, कोई लगे शायद नहीं फाटत हुई. अभी इमीन बातें तो दोनों माटी में तुलना करब तो कहाँ पर अंतर बातें. तो जो माटी अभी इमीन बातें ओकर में जस्ती माछे उगाने की बातें, जो माटी में माछे उगाने की नई बातें तो वो सुखारी से जस्ती प्रभावित होलन सा.
1: अच्छा
0: क्योंकि हम माछे उगाने के में ओकरे होल ओकर कैपेसिटी बातें लिमिटे के चीनी करे के
1: जी.
0: जोन माटी में जोन माटी में माछे उगाने की नई बातें तो वो कब बने सकी पानी के आए चीनी करे रखे
1: माने के कड़ा कड़ी धूप जोन बातें घामा जोन बातें और वो मोटका पानी दोनों हमने के माटी के खाली निफास बातें हो.
0: हाँ ढेर पानी रहला तो अंगोजे हो जला तो पानी सकला जमा होते हुए तो उसे तो जड़ी जोन बा तूफे हुए लगी नहीं सकी रेस्पिरे करे तक समस्या बात है. या फिर बारूद रहता ढेर पानी बात है तब कुंच हुए और निमन माटी लेके जाता धोआ था जैसे जैसा लाबू पानी जाता कीचड़ सब लेके जाता तो मैं धोआ था आई ढेर पानी
1: जी.
0: पानी नहीं बात है तो सूखा था. जब सूखा था तो जड़ी के नहीं मिली लिमिजते शुरू में जन बहन सुनने के लिए रहा तो बोलते ना काहे लिमिजते के लह पोता उस काहे बात है बस की जड़ी के था खाए के मुँह ने माना सुरेशो में ले. तो देखा भाई बातचीत में एक और संकेत हो गल कि एगो माटी जन हाली फाटेला ई संकेत करेला कि वो माटी में माछे उगाने के कमी बात
1: कमी बात है. तो जब रोपाई करत हुआ तो कितना मेद सोच में चाहेला एगो माटी के ऊपर रखे के और हमेशा हमने सुनने है जा कि चाहेला कानालू सब बनाए के जी मोटका पानी आए तो हो पानिया में तो कितना जब रोपाई करत हुआ मटिया जो सोच में कितना चाहेला ऊपर रहे
0: के ऐसे बोला सा कि जो 20 से 20 सेंटीमीटर तक वो हमने के टॉप सॉइल है सबसे उपजाऊ माटी है
1: जी.
0: लेकिन 20 एगो लगभग एगो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है सकी 30 सेंटीमीटर ले चल रहा है लेकिन जैसे नीचे जाए तो उपजाऊ नहीं रहेगा. अब काहे लाहो के माटी उपजाऊ रहेगा
1: जी
0: क्योंकि जब माचे उगाने का अनुभव तो कहाँ पर डाला सा ऊपर डाला सा ना खेत में आज मिलाई भी करब सा पियूष लेके आज बीने करब सा या एगो होते वाते पास कर तो लाहोए में बीने होता ना तो माचे उगाने के बाद लाहोए में तो लाहो टॉप सॉइल ले ला. अभी कोई जंगल के ले ला
1: जी.
0: एगो जंगल में उतना हरियाली रहेला उतना जानवर रहेला जब पत्ता गिरेला पेड़ गिरेला एगो जानवर मर जाला कहाँ गिरेला माटी पर ऊपर गिरेला तब सर के कहाँ पर ही रहेला माटी के ऊपर ही रहेला तब वो कहते हैं ऊपर की जो माटी है वो सबसे उपजाऊ रहेला.
1: पर एगो हैजा पर ही हमने सोची ला जा जब बोले ला जा जे गासिन में सब कुछ मिलेला गासिन हुए से तो सब कुछ होवेला पर अभी बोला था वो टॉप सॉइल चाहेला जो ऊपर की
0: सब्जी वगैरह के जब देखी ला सा तो उन लोग के जो जड़ी बातें उतना नीचे नहीं जालन सा जितना पौधा बातें कैसे लाके जुयों के लिए ले कितना नीचे जाए इतना लगभग नीचे जाए 10 सेंटीमीटर वगैरह जाए एगो जजाम ले लेबा एगो जड़ी कोड़ ले हुआ जजामा के जब आज कोड़ के दिखबा जब बड़ा होगल बा तक जड़ी कितना बहुत नहीं रहला तन देर दूर नहीं चला तो सब्जी खाते 20 से 30 सेंटीमीटर तक ये हमने के फर्टाइल जोन है. अब जन जन पेड़ रहला वृक्ष रहला अब देखा वृक्ष के दो प्रकार दो तरह के जड़ी है एक वो जन सीधा नीचे चला
1: जी
0: वो टाप रूट सिस्टम है नीचे चला तो वो जस्ट खास खातिन कामे आवेला खंबा की तरह भूखा गलवा एगो दूसरा कि वो नीचे से चला पानी भींचे
1: जी
0: क्योंकि लाहौर में पानी नहीं मिले ना
1: जी.
0: अब सोचा एगो वृक्ष इतना ले बड़ा बा ओकर ओकर ओकर जन जड़ी बात है लाके जुयों के जड़ी कहती रहती तो गिर जाए हाँ तो चला औखाज रह के तो दो तरह के जड़ी है एगो जन बड़का नीचे चला वो जला पानी भी खोजे और औखाज में मिला और जन बाकी रहेला देखा फैलल रहेला
1: जी
0: ऊपर भी आवेला वे खाने वे लंचा देखा खाट के बीती डल्ला था तेगास वगैरह वे जब मब सब तब मब फाटे लगे क्योंकि जन हो जब जड़ी बाई से जाता ना लाते खाल तो ऊपर ही रहेगा अब एकदम से

0: ऊपर नहीं रहला क्योंकि ओकरो चाहला अपन बचाव चाहला सुरक्षित रह के ऊपर में रही जैसे कि ब्लेसे वगैरह हो जाए हानि पहुँचे जो कहीं तरह से भीतरे मिला लेकिन ऊपर में रहला।
1: चला अभी इस सब पर हमने बताई लीजा, अब चाहला जाने के हमने के जो माटी के सुरक्षित रखे के ओकरा चाल रखे के कौन चीज चाहला करे के।
0: हाँ तो सबसे पहला कब्बो अपन माटी में माचे उगाने की कमी नहीं हो दिया
1: जी,
0: आज घाटे कर दिला तो तुम्हार माटी गला शुरू कर दिला अब बंजर हो के। हाँ तो हमेशा चाहला माचे उगानिक डाले के, और माचे उगानिक देखा अनेक प्रकार की है सकवा जा गाय के फिमिया जैसे हम हमेशा बोला सबसे बेस्ट है, हाउ मिली तो डाल दिया नहीं मिली था सकबा कॉम्पोस्ट करी खेती हर होता जितना घास सब तो कारो में बाप बुझिया में सकबा अपन से घास रोपे अपन से
1: जी
0: सकबा एनिमन निमन घास रोपे बोझिया की तरह कैसे लेबिए बाल लेबिए जैसे बोला सकबा थी माला वगैरह तो कि सकबा तब काट काट के रख दे एक कोना में कॉम्पोस्टे हुए खाते हाई खेत में घर पे सकबा जा अपन किचन वेस्ट के लेके उगाने किचन वेस्ट लेके कैसे कॉम्पोस्ट बनाए लेकिन की सकबा प्रयोग करे
1: जी
0: घोड़ा के जो फीमिया बा सब बच्चा प्रयोग करे। अब देखा एक जो फीमिया बा वह मुर्गी के
1: जी
0: मुर्गी के फीमिया में बहुत नाइट रही था गनला वो फीमिया हुए नहीं है गन्ने को फर्टिलाइजर कहते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ तो कोई ओके अकेले नहीं प्रयोग कर जा
1: हाँ चाहला
0: हाँ कुछ में मिला दे के सब बच्चा गाय के फीमिया में मिला दे सब बच्चा दूसरे फीमिया में मिला दे या कॉम्पोस्ट में मिला दे तो ओकर में ढेर लाजो था एगो ऑप्शन एगो फीमिया जब प्रयोग करब तो जो व्याज्य है जो लेकिन फै है व्याज्य कैसे तुम्पुस वगैरह वगैरह बात है शॉर्ट साइकिल वन सा ओकर में तो खाद ही नहीं चाहता लेकिन क्योंकि ओकर में दे ओकर में
1: देजा
0: खाद बात है ऑप्शन। अब है माचे उगाने के दूसरा है तो माटी के चला कबो सुखाने छोड़े के एगो माटी के सुखा छोड़ब तो जो जीव बातें भागे लगे तो लाहो में नहीं रही बीतरे बीतरे चले जाए तो जो रुपाई करब तो समय ले फिर से आए के तो चला ओके इमीद रखे के। अब इमीद रखे खातिन और ओके सुरक्षित रखे खातिन माटी के कभी कभी भी नंगा नहीं छोड़िया कैसे बोलनी चाहे बार आवेला था माटी धोवाला धूप रहेला था जन ऊपर में जन माटी रहेला था तापमान जब बढ़ जाला तो जन निमिजते रहेला ये वापो गए हो जाला हाँ तो कैसे चाहना बचाए के जब घास रही तो घास वास अकबर छोड़ दे ताइए कर दिया
1: जी
0: या फिर घास वो नहीं छोड़िया सकबा को रुपाई कर दे जैसे बोला सा लत्ती के अब लत्ती के तो अनेक प्रकार के सब्जी वो के सकबा करे या गल हला दिया बा बोला जैसे जौताक वगैरह तो जौताक डाल के छोड़ दिया जौताक मिली खाए के वो तो हाली हाली बढ़ी तोहर तोहर खेत के भी उपजाऊ बनाए तो ये भी सकबा करे। जन हैवी मशीनरी बा माटी के आज नहीं चाहेला हिलाए के तैयारी करके जैसे बोला बीने सब खेत के तो नहीं करियो आज सकबा जा खाली तुरु खो दे जैसे बोला सा रोपाई करे खाते तो खाली हो भी करियो तो माटी उतना नहीं हिली ना तो है सब ओकर बाज बातें। अब सकबा जा जानो तो तनि सुन माटी के कुछ बा गाँव फोसे करे कि अब तनि सुन ओकर ओकर में जीव लाए के तो चला मिखो बने के तो कहाँ से अनब और माटी जो गाय के फीमिया में ओकर में जैसे बोली जाओ ओकर में तो मिखो बाते तब ओकर माटी में दलब तो कभी मिकोबा चलाए या फिर आजकल जहाँ रिटेल आउटलेट्स बा ओकर में रहेला बायो फर्टिलाइजर जैसे बोला ओकर में मिकोब बात है तो वो सब माटी में डाले लेकिन ऐसा मिकोब के जिए खातिन कौन चीज चाहेला माचे ओगानिक।
1: तो चलो अभी हमने के प्रोग्राम जो बातें आज की चर्चा कार्यक्रम हजे परी समाप्त होला संक्षिप्त में जल्दी जल्दी हमने के बोला अभी अपन मिट्टी जो हाथ में लेबा तनि सुन अपन कारो से अपन आंगन से वो कैसे चाहेला हो कि कैसे जानब सा कि हाँ उफ चाल हा कौन चीज को सुगंध बात है कौन सी बात है कैसे महसूस होला
0: ए हाथ में आज लेबा ता जान जेबा।
1: हाँ
0: सुगंध आज ओकर में माचे उगाने के रही निमन से या कंपोस्ट ओकर में रही तो अच्छा मौकेला
1: जी
0: लेकिन आले गनला खाली आई कैसे ना इमेजिन नहीं करो
1: जी
0: माटी के ले लेला हाथ में माटी सुखल बा रोखल बा छोड़ बा धूल की तरह गिर जाए सब
1: जी
0: कुछ नहीं रहला हाथ में तो ये माटी नहीं छबाते
1: जी
0: माटी के लेला ओके ऐसे जब दबाइला पच पच पानी निकला था या फिर गोला की तरह कोले उगलवा चिपक गलवा ये भी नहीं छबाते ये माटी में बहुत पानी बा। अब एगो माटी लेला जब इसे पकड़ ले हुआ

0: बुझाता था निशुन इमित बा जब ऐसे खाजे करके इसे करा तो आगे की तरह सुखल रुखर के नहीं गिरा था भिंजल भिंजल गिरा था मैं भिंजल भिंजल कहते पानी नहीं बासे और जब गिरल तो हाथ में देखबा लिमिजते रगल और माटी के जो पचकिल बा में चिपकल बा था निशुन हाय सबसे गेला अच्छा बात है।
1: तो चला आज हमने यही पर बतिया लीजा जो माटी बाटी उपजाऊ और अब हमने आशा करे थे जान गएला कि कैसे एगो बंजर जमीन रहेला कैसे एगो उपजाऊ जमीन रहेला तो निमन से रोपाई करिया खेती बाड़ी करिया और सबकी भलाई हुई। आज के चर्चा कार्यक्रम है जी परी समाप्त होला। श्रोतागण दर्शकगण बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संजय शंभू फागे से हुआ और जितना जना हमने के सुनन देखलन पार्टिसिपेट करलन सब कोई की हमने की टीम दने से प्रणाम नमस्ते।

0: सुमेर आगे स्टूडियो से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। मुशरत में गए जून महीने में उपभोक्ता दाम सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% से बढ़ा है। ये आंकड़ा 111.9 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा है। स्टैटिस्टिक्स मुशरत की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दूसरी बार मुद्रास्फीति दर में धीमापन नजर आया है, लेकिन परिवारों के लिए घर चलाना अभी तक मुश्किल है। मुशरत में करीब 20% नौजवान बेरोजगार हैं। बढ़ती महंगाई और पहली नौकरी के लिए मांगे जाने वाले तजुर्बे की वजह से बहुत से नौजवान विदेश जाना मुनासिब समझ रहे हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर भावेश जागोनाथ के मुताबिक आर्थिक वृद्धि लाना चाहिए ताकि नौजवानों के लिए नौकरी की ज्यादा संभावनाएं पैदा की जा सकें। फ्रांसीसी दूतावास की पहल पर कल मनाए जाने वाले फ्रांस राष्ट्र दिवस के सिलसिले में तिरफे मुका प्रोमेनाद में भव्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। खास पकवान, मिठाइयां, संगीत, नाच और दूसरे मनोरंजक पहलुओं के जरिए मुशरत और फ्रांस की दोस्ती को और गहरा किया गया। प्रदेश में दक्षिण अफ्रीका में 5 हफ्ते पहले शुरू माइग्रेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत करीब 53,000 विदेशियों को वापस उनका मुल्क भेजा गया। ज्यादातर लोग मालावी, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के मुताबिक ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभियान अभी तक जारी है। सालों में गैर कानूनी अप्रवास के खिलाफ ये वहाँ की सबसे बड़ी क्रैकडाउन कार्रवाई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। मस्क्रूज सुरीनाम में 5 साल की 5 years old आयशा बीबी सोफिया मुदाबकस, आयशा बीबी सोफिया मुदाबकस जो सोफिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 10 बजे इनके वालिद साहब फादिल मुदाबकस के घर मस्क्रूज सुरीनाम से उठाकर दफनाने के लिए सुरीनाम का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। फ्यूनरल टुडे 10 AM बासाई रोड कथोबोन में 81 साल की 81 years old श्रीमती आनंती रामनोत, श्रीमती आनंती रामनोत पैदाशी नाम दोमा जुरानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज 3 बजे इनके बेटे सतीश रामनोत के घर बासाई रोड कथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी हैं।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: ये है रेडियो मॉरिशस।

प्रणाम श्रोताओं, घड़ी मिलाते चले समय 10:04 हो चुके हैं। भक्ति धारा कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। और कहा जाता है जहाँ पर आप भक्ति और प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, तो आपके सभी जो विघ्न हैं वो हर जाते हैं। आइए इसी विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, रामचरित मानस के बाल कांड के दोहा 254 यानी 254 के नीचे की चौपाइयाँ मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग बहुत ही सुंदर है कि श्री राम अब अपने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उस स्थान पर पहुँचते हैं, उस मंच पर पहुँचते हैं जहाँ धनुष रखा हुआ है, और वे कितने सुंदर दिखाई देते हैं इसका तुलसीदास जी ने बहुत ही आलंकारिक, बहुत ही काव्यात्मक वर्णन किया कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। श्री राम सूर्य की तरह हैं, बाल सूर्य की तरह हैं, और जैसे ही वे मंच पर उपस्थित होते हैं उनके आभा मंडल से, उनकी तेजस्विता से सभी लोग चकित हो जाते हैं। जो राजा लोग आए थे आशा लेकर के कि वे धनुष

उठा पाएंगे, उनका सारा उत्साह समाप्त हो जाता है, वे निराश हो जाते हैं। लेकिन जो संत हैं, जो सज्जन लोग हैं, वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें देख करके देवता और मुनि शोक रहित हो जाते हैं, फूल बरसाकर अपनी सेवा

है मुझे उनके आदेश का पालन करना है, इस भाव से गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और जितने भी ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित हैं सबके चरणों में नतमस्तक होकर उनसे आज्ञा मांगते हैं। आइए अब आगे की चौपाइयों को हम पढ़ें और उस पर विचार करें। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम, सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। राम जी कैसे चल रहे हैं? मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल की तरह। जैसे हाथी जब चलता है तो वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके आगे कौन है, पीछे कौन है। वो अपनी मस्त गति से, मस्त चाल से चलता है। उसी प्रकार श्री राम हर बात से अनभिज्ञ होते हुए, हर बात से परे होते हुए, यानी श्री राम को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। इस बात पर भी वो चिंतन नहीं कर रहे हैं कि मैं धनुष उठा पाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा, क्या होगा, नहीं। वो मस्त हो करके यानी हाथी जैसी चाल से, बहुत ही श्रेष्ठ हाथी की तरह वे अपने मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं और राम जी को देख करके जितने भी स्त्री पुरुष हैं सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनके शरीर रोमांचित हो जाते हैं, सब अपने भाग्य पर इठला रहे हैं, सब अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। जितने श्रेष्ठ लोग हैं, जितने संत हैं, ऋषि मुनि हैं और जो वहाँ उपस्थित लोग हैं, वे सब यही चाहते हैं कि श्री राम धनुष तोड़ें और सीता जी का विवाह श्री राम से ही हो। इसलिए ये जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो जनकपुरी के नागरिक हैं और जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वे पितरों और देवताओं की वंदना करते हैं, यानी भगवान का स्मरण करते हैं। जब हमें कुछ पाना होता है, जब हमारे मन में कोई कामना होती है, तो हमें तुरंत परमात्मा की याद आती है। हम परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके उनसे विनती करते हैं कि हमारी कामना पूरी हो जाए। उसी तरह से ये जितने भी श्रेष्ठ लोग वहाँ उपस्थित हैं, वे अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पुण्य फलीभूत हो जाए। हम यही चाहते हैं, यदि हमने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया है, कोई भी पुण्य किया है, तो उसका सुफल हमें क्या मिले, कि श्री राम धनुष तोड़ दें। और कैसे तोड़ दें? कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें, यानी उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़े। जैसे कमल की डंडी कितनी कोमल होती हो तो छूते ही टूट जाती है, तो कह रहे हैं कि ये धनुष श्री राम के लिए इतना हल्का हो जाए, कितना हल्का, कमल की डंडी की तरह हो जाए, इतना कोमल, इतना कम वजन का हो जाए, इतना हल्का हो जाए कि श्री राम जैसे ही इसे उठाएं धनुष टूट जाए, श्री राम को कोई परिश्रम नहीं करना पड़े। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाई। तुलसीदास जी ने सबकी प्रतिक्रिया का वर्णन किया कि जो राजा बड़े अभिमानी थे उनकी क्या स्थिति हुई, जो राजा इस गर्व से आए थे कि हमारा ही विवाह सीता जी से होगा उनकी क्या स्थिति हुई, जो छल और कपट से भरे हुए राजा थे उनकी क्या स्थिति हुई। फिर उन्होंने बताया कि जो संत हैं उनकी क्या स्थिति हुई, ऋषि मुनियों की क्या स्थिति हुई, जो मिथिला के लोग हैं उनकी क्या स्थिति हुई, और अब कह रहे हैं माँ की क्या स्थिति हुई, सीता जी की माँ क्या सोच रही हैं, उनके हृदय पर
क्या बीत रही है उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी सखी न समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस

बचन कह ही बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माँ स्नेहवश बिलख कर बिलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सबने अपने अपने मन के उद्गार अभिव्यक्त कर दिए, लेकिन सीता जी की माँ की क्या स्थिति है? सीता जी की माँ ने जब देखा श्री राम जो अभी बिल्कुल बाल्यावस्था से बढ़कर के अब किशोरावस्था में हैं, इतनी कम आयु का एक बिल्कुल कोमल अंगों वाला राजकुमार, उसे गुरु ने कहा है कि तुम धनुष तोड़ो, और ऐसा राजकुमार मंच की ओर बढ़ रहा है, ये देख करके माता सुनैना अधीर हो गईं, घबरा गईं। उन्होंने राम जी को वात्सल्य भाव से देखा, वात्सल्य यानी ममता भाव से। उनको बिल्कुल यही लगा कि ये मेरा ही पुत्र है। जैसे हर माँ के अंदर ममता भरी होती है, वात्सल्य भरा होता है, अपने बच्चे को देखते ही उसकी ममता बिल्कुल प्रकट हो उठती है, तो राम जी को देखते ही माँ सुनैना को लगा जैसे ये मेरा ही बालक है, और उसे देखकर उनकी ममता बिल्कुल उनके हृदय में जैसे भर उठी, और उन्होंने अपनी सखियों को अपने पास बुलाया और स्नेह के कारण मान लो बिलखने लगीं, रोने लगीं और ये वचन बोली। सखि सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर ये नहीं कहता कि ये बालक यानी राम जी अभी बहुत छोटे हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। यानी माँ सुनैना को लग रहा है कि गुरु विश्वामित्र ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। उन्होंने न कुछ सोचा न समझा, राम जी को बोल दिया कि उठो धनुष तोड़ो। कहाँ इतने इतने बड़े पराक्रमी राजा, दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से आए, सबने इस धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, कोई भी सफल नहीं हो सका, और गुरु विश्वामित्र ने इतने कोमल इतने अभी बालक राम जो हैं उनको कह दिया ऐसा दुरूह कार्य करने के लिए, तो ये तो उचित बात नहीं है। और जब गुरु विश्वामित्र ने ऐसा कहा तो ये सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतने बड़े बड़े तपस्वी, और यहाँ इस मिथिला नगरी के एक से एक श्रेष्ठ नागरिक, किसी ने भी उठ करके गुरु विश्वामित्र को ये नहीं कहा कि हे गुरु आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों ऐसी आज्ञा दे रहे हैं इस नन्हे से बालक को, ये कैसे उठा पाएगा इस धनुष को। तो ये सोच करके माँ सुनैना का हृदय एक तरह से द्रवित हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है कि जब कोई अन्य ये कार्य नहीं कर पाया तो भला श्री राम इतने कठोर धनुष को, इतने भारी धनुष को कैसे उठा पाएंगे। इसलिए उन्हें लगता है कि जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए भी नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई क्यों नहीं समझाता। उनको यही लग रहा है कि रावण और बाणासुर जैसे एक से एक पराक्रमी राजा जिन्होंने इस जगत को विजयी कर रखा है, यानी जो अत्यंत पराक्रमी हैं, जिन्हें जगत विजयी कहा जाता है, ऐसे श्रेष्ठ राजा जब धनुष को हिला भी नहीं सके तो भला ये राम जो अभी बहुत ही कोमल अंगों वाले हैं, अभी बाल्यावस्था में हैं, वो इस धनुष को कैसे उठाएंगे। तो रानी को सुनैना को लगता है कि दो बड़ी भूलें हो रही हैं। एक भूल ये कि गुरु विश्वामित्र ने राम जी को ये आदेश दे दिया, और दूसरी बात राम जी को भी तो कहना चाहिए था गुरु से कि गुरु जी मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन राम जी भी गुरु की आज्ञा

या मान करके बिल्कुल चल दिए, तो ये दोनों काम उचित नहीं हैं और कोई क्यों इन्हें समझाता नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनु राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले ही। माँ क्या सोच रही हैं कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। माँ की चिंता का कहीं कोई अंत नहीं है। माँ एक तो इस बात से बहुत दुखी हैं कि कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं सका। जैसे राजा जनक निराश और हताश हैं, दुखी हैं, वैसी ही स्थिति माँ की भी है, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह समय पर हो जाए और श्रेष्ठ व्यक्ति से हो। और यहाँ तो एक नहीं, पूरे भारत के कोने कोने के श्रेष्ठ और पराक्रमी राजा एक साथ एकत्रित हुए हैं। सब चाहते हैं सीता जी से विवाह करना, लेकिन राजा जनक ने जो प्रण किया है उस प्रण का निर्वाह करने में कोई भी समर्थ नहीं हो पा रहा है। इसलिए रानी सुनैना मन ही मन बहुत दुखी हैं और बार बार यही सोच रही हैं कि रावण और बाणासुर जैसे वीर राजा भी इस धनुष का स्पर्श नहीं कर पाए, यानी उसे टस से मस नहीं कर पाए, और इतने राजा बहुत घमंड करके, अहंकार करके, अभिमान करके यहाँ पर आए थे, सब पराजित हो गए, और उस धनुष को अब ये सुकुमार राजकुमार श्री राम भला उठा पाएंगे? हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं? हंस का बच्चा यानी हंस भी नहीं, हंस का छोटा सा बच्चा, उसे कहा जाए कि तुम मंदराचल यानी मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लो, तो क्या हंस का छोटा सा प्यारा सा बच्चा, कोमल बच्चा, उस पर्वत को उठा पाएगा? तो धनुष मंदराचल की तरह है और श्री राम कैसे हैं? हंस के छोटे से बालक की तरह हैं। वो भला इस भारी धनुष को कैसे उठा पाएंगे? भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी अनरानी। और उनकी इन बातों को सुन करके जो उनकी सखियां हैं, जो उनकी सहेलियां हैं, जिनसे वो अपने मन की व्यथा प्रकट कर रही हैं, जिनके सामने अपना दुख अभिव्यक्त कर रही हैं, वो सखियां अब रानी को समझाने जा रही हैं, उन्हें तसल्ली दे रही हैं। क्या कहती हैं कि और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापद समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कछु जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो रही। अभी वो अपनी सहेलियों से कह रही हैं अपना दुख, और सहेलियां अभी रानी सुनैना के उद्गारों को सुन रही हैं। रानी ने एक और बात कही कि ठीक है, गुरु विश्वामित्र ने आदेश दे दिया, हो सकता है उन्हें अपने शिष्य पर बहुत अभिमान हो, उन्हें लगता हो कि श्री राम धनुष उठा लेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि गुरु विश्वामित्र को ये आदेश देना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात है, राम को उठना ही नहीं चाहिए था। और तीसरी बात है कि यदि गुरु ने आज्ञा दे भी दी तो राजा जनक तो बड़े समझदार हैं, बहुत विवेकवान, बहुत ज्ञानी, बहुत विज्ञानी, तो ऐसे राजा जनक को तो कम से कम अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। उन्हें तो गुरु को समझाना चाहिए था, गुरु विश्वामित्र को, कि गुरु जी आप ये क्या आदेश दे रहे हैं, भला इतना नन्हा ये जो राजकुमार है श्री राम, वो कैसे इस धनुष को उठा पाएंगे? लेकिन लगता है राजा की भी बुद्धि इस समय काम नहीं कर रही है, वो भी इस समय बहुत परेशान हो गए हैं, उनका भी ज्ञान इस समय लगता है कि मटिया मेट हो गया है, इसीलिए वे भी चुप हैं और जो हो रहा है उसे केवल देख रहे हैं। हे सखी, विधाता की गति कछु जानने में नहीं आती, यानी परमात्मा को क्या करना है,

हमें कुछ भी मालूम नहीं है, उन्होंने क्या भाग्य में लिखा है, आगे क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं। और यूं कह कर के रानी चुप हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था अपने दुख को वे किस तरह से प्रकट करें। और तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली। क्या बोली? बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी अनरानी। वो जो सहेली थी वो राम जी के महत्व को अच्छी तरह जानने वाली थी। राम जी कौन हैं, कितने पराक्रमी हैं, कितने ज्ञानी हैं, इन सब बातों को एक सखी अच्छी तरह जानती थी। इसलिए वो चुपचाप पहले रानी सुनैना यानी सीता जी की माँ के वचनों को सुनती रही। और अब वो कोमल वाणी से अपनी बात कहती है। क्या कहती है? कि हे रानी, जो तेजवान है उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवान यानी जिसके अंदर तेज है, जिसके अंदर तेजस्विता है, जिसके अंदर पराक्रम है, वीरता है, ऐसा व्यक्ति छोटा होते हुए भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए केवल आयु से, केवल उम्र से हम किसी की तेजस्विता को नहीं परख सकते हैं। कोई हो सकता है कि बहुत उसकी आयु हो लेकिन उसका ज्ञान, उसका पराक्रम बिल्कुल हीन हो, और कोई अभी बहुत बालक हो लेकिन वो अपने पराक्रम, अपनी तेजस्विता से बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा दे। तो श्री राम कैसे हैं? देखने में तो छोटे हैं लेकिन उनकी केवल आयु पर और उनके कोमल शरीर पर ही हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। वो वास्तव में क्या हैं इसे समझना चाहिए। और श्रोताओं, आज इन्हीं चौपाइयों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगी। आइए एक भजन सुने और कार्यक्रम को यहीं संपन्न करें। धन्यवाद। नमस्कार।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम जारी है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और सोमवार का दिन है और देवों के देव महादेव को हम समर्पित करते हैं। और कहा जाता है जिसने भी शंकर को पूजा है उनके बेड़ा पार हमेशा हुआ है, और वो देवों के देव महादेव हैं, भोले हैं और सभी के मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। चलिए सुबह सुबह उनके ही नाम लेते हैं।

नमः शिवाय बड़ा ही गुणकारी मंत्र है। जिसने भी नाम धरा शंकर का, कंकड़ से शंकर बन गए।

श्रोताओं कहा जाता है कि जब भी कोई भी विघ्न आए, कोई भी समस्या आए, तो बस ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्या दूर हो जाएंगी।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, बस यही आशा है। सभी को प्रणाम और शुभ सोमवार।

0: सुमेरा आगे स्टूडियो में उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में जाने के लिए मॉरिशस के वास्ते एक नया द्वार खुल गया है। कल दोपहर बाद इथियोपियन एयरलाइंस की पहली उड़ान सर सीव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पटरी पर उतरी। इसके जरिए देश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हुई है और पर्यटन, कारोबार तथा व्यापारिक आदान प्रदान के सेक्टरों में नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। इलाकाई सतह पर ये मॉरिशस के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि अफ्रीका का ये प्रथम हवाई परिवहन रहा। अब से मॉरिशस की तरफ इथियोपियन एयरलाइंस की रोजाना एक उड़ान भरी जाएगी। मॉरिशस में करीब 20% नौजवान बेरोजगार हैं। बढ़ती महंगाई और पहली नौकरी के लिए मांगे जाने वाले तजुर्बे की वजह से बहुत से नौजवान विदेश जाना मुनासिब समझ रहे हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर भावेश जगन्नाथ के मुताबिक आर्थिक वृद्धि लाना चाहिए ताकि नौजवानों के लिए नौकरी की ज्यादा संभावनाएं पैदा की जा सकें। पोटली थिएटर के पुनर्निर्माण कार्य अभी आखिरी चरण में से गुजर रहे हैं। कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया ने परियोजना का जायजा लेने के लिए स्थल का दौरा किया। उन्होंने तसल्ली जाहिर की कि जनता के मनोरंजन के लिए बहुत जल्द इस थिएटर को फिर से खोल दिया जाएगा। विदेश में बैंकॉक थाईलैंड में एक मशहूर पब में आग लगने से कम 27 लोग जान से गए हैं, 63 लोग जख्मी हुए हैं। अभी जांच जारी है ताकि इस हादसे की सही वजह के बारे में पता चल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। सिमेट्री रोड आमोगी में 77 साल की 77 यूज ओल्ड मोहतरमा फातिमा बीबी बहादुर, जो फातिमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दो बजे इनके घर सिमेट्री रोड आमोगी से उठाकर दफनाने के लिए आमोगी का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
4: शम्मे फरोजा,

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ताहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान, जो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ।

और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम यहां ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूं, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारा लाऊं या आग के मकाम से अपना रास्ता मालूम कर सकूं।

फिर जब वो वहां पहुंचे तो आवाज आई कि ऐ मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपने जूते उतार दो, तुम यहां पाक मैदान यानी तुआ में हो और मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो।

और ऐ मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूं और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, और इसमें मेरे और भी कई फायदे हैं।

फरमाया कि मूसा इसे जमीन पर डाल दो, तो उन्होंने उसको डाल दिया और वो यकायक सांप बनकर दौड़ने लगा। फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको अभी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में दबा लो कि वो किसी ऐब व बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपने बड़े बड़े निशानात दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है।

कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ लें, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को। उससे मेरी कमर को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें। तू हमको हर हाल में देख रहा है।

फरमाया मूसा तुम्हारी दुआ कबूल की गई और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी वालिदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है। वो ये था कि इसे यानी मूसा को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया उसको किनारे पर डाल देगा और मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और मूसा मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन वहां फिरौन के यहां गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इसको पाले पोसे, तो इस तरीक से हमने तुमको तुम्हारी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज ना करें। और तुमने एक शख्स को मार डाला था तो हमने तुमको गम से नजात दी और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की, फिर तुम कई साल अहले मदीन में ठहरे रहे। फिर ए मूसा तुम एक अंदाजे पर आ पहुंचे।

और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है, तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती न करना। दोनों फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है, और उससे नरमी से बात करना, शायद

0: वो वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे मुख्तलिफ नबातात पैदा की कि खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। बेशक इन बातों में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं।
1: मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम।

0: इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी दफा निकालेंगे। और हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई मगर वो तकजीब और इनकार ही करता रहा। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? तो हम भी तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे, तो हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि न तो हम उसके खिलाफ करें और न तुम, और यह मुकाबला एक हमवार मैदान में होगा। मूसा ने कहा कि आपके लिए यौम जीनत का वादा है और ये कि लोग उस रोज दिन चढ़े इकट्ठे हो जाएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने शौक़ व मोहब्बत की वजह से दिन और रात में मुझ पर तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक इस पर हक है, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।

मशहूर वलीउल्लाह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही ताला की खिदमत में किसी ने एक परिंदा तोहफ़तन पेश किया। आपने उसको अपने पास रख लिया लेकिन जल्द ही आज़ाद कर दिया। आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई, आपने इसे क्यों आज़ाद कर दिया? फरमाने लगे, इस परिंदे ने मुझसे कहा, ए जुनैद, आप ख़ुद तो आज़ादी के साथ हर तरफ घूमते हैं, अपने अहबाब और दोस्तों से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन आपने मुझे कैद कर रखा है। मुझे भी आज़ाद कर दीजिए ताकि मैं भी अपने दोस्तों से मुलाकात कर सकूं और आज़ादी से उड़ सकूं। ये बात सुनकर मैंने उसे आज़ाद कर दिया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैंने इस परिंदे को आज़ाद किया तो इसने मुझसे कहा, ए जुनैद, मैं इसलिए कैद किया गया था कि एक दिन अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल हो गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी अल्लाह पाक के ज़िक्र से और उसकी याद से गाफिल ना रहूँगा। ए जुनैद, मैं सिर्फ़ एक दिन अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल हुआ तो इस जुर्म की सज़ा मुझे कैद की सूरत में मिली, तो उन इंसानों का क्या बनेगा जो उम्र भर अल्लाह पाक की याद से गाफिल रहते हैं? ये नसीहत करने के बाद वो परिंदा उड़ गया। अल्लामा सफ़ूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस वाक़े के तहत फरमाते हैं कि वो परिंदा बार बार हज़रत जुनैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आने लगा और आप से मानूस हो गया। यहाँ तक कि जब आप दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाते तो वो दस्तरखान पर आकर बैठ जाता और उनके साथ खाना खाता और दाने चुगता। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हुआ तो वो परिंदा नीचे गिरा, तड़पने लगा और तड़प तड़प कर उसने भी दम तोड़ दिया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देख कर पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? फरमाया हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, मैंने एक बेज़ुबान परिंदे पर रहम किया तो अल्लाह पाक ने मुझ पर भी रहम किया। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई और सामईन किराम, इस ईमान अफरोज़ वाक़े से हमें इबरत के बहुत मदनी फूल हासिल हुए, जिनमें से चंद पेशे खिदमत हैं। जो परिंदा अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल होता है वो कैद हो जाता है। जमादात व नबातात का मामला भी कुछ इसी तरह है। चूँकि हदीस पाक में है कि दरख्त पर कुल्हाड़ा उसी वक्त चलता है जब वह अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है। दुनिया में जो भी परिंदे और जमादात वगैरह हैं सब अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं और हर वक्त इसकी याद में उनकी ज़बान तर रहती है। दूसरा मदनी फूल यह हासिल हुआ कि अल्लाह पाक की अता से औलिया इकराम रहमतुल्लाही अलैहिम परिंदों से बातचीत करते और उनकी गुफ्तगू समझते हैं। एक मदनी फूल यह भी हासिल हुआ कि चरिंदों और परिंदों के साथ भी हुस्ने सलूक से पेश आना चाहिए, लिहाजा जो लोग जानवर पालते हैं उन्हें इस बारे में खूब गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। या आशिकान रसूल, आजकल लोग शीशे के छोटे से शोकेस में इकोरियम में प्लास्टिक के या शीशे के कुछ फूल डाल वगैरह कर रंग बरंगी छोटी छोटी मछलियां रखते हैं। वो प्यारी प्यारी मछलियां शोकेस के शीशे को पानी समझकर रास्ता ढूंढते हुए बार बार इस पर मुंह मारती हैं और देखने वाले इनकी इन हरकत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ऐसों को सोचना चाहिए कि ये मछलियाँ वसी समंदर में आज़ादी से तैरती हैं, लेकिन आज इन बेचारों को बिचारियों को एक छोटी सी शोकेस में बेदर्दी के साथ बंद कर दिया गया है। अगरचे शीशे के शोकेस में मछलियाँ रखना हराम नहीं, जायज़ है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर हमें एक कमरे में नज़र बंद कर दिया जाए तो हम पर क्या गुजरेगी? यकीनन दुनिया की तमाम आसाइशें मुहैया होने के बावजूद हमारा जीना दोभर हो जाएगा। इसी तरह उन परिंदों को देख कर भी बड़ा तरस आता है जिन्हें लोगों ने पिंजरों में कैद कर कर इनकी परवास का सिलसिला मुनक़ता यानी ख़त्म कर दिया। इसी तरफ इशारा करते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा, ए तायर लाती हुई इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। बहरहाल अल्लाह पाक की किसी मखलूक पर बिला वजह जुल्म नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो यही हमारी आखिरत की बर्बादी का सबब बन जाए। चुनाचे हदीस पाक में है कि एक औरत को इस वजह से अज़ाब में मुब्तला किया गया कि उसने एक बिल्ली को कैद किए रखा, ना तो उसे कुछ खिलाया पिलाया और ना ही छोड़ा कि वो कुछ खुद खाकर गुजारा कर लेती, यहाँ तक कि वो मर गई। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, अगरचे परिंदे पालना नाजायज़ व हराम नहीं, यानी ज़ुआज़ो वगैरह परिंदे पाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई पालता है तो वो इनके लिए खानों का ज़खीरा करें, इनको खाने की कमी ना हो, ताकि वो खाते पीते रहें और इन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुंचने पाए। यहाँ तक कि शीशे के शोकेस में मछलियाँ पालने का ताल्लुक है कि ये शौक़ के अलावा कुछ नहीं। और कीजिए कैद।

में इन बिचारियों पर क्या गुजरती होगी, ये खुले पानी में बिल्कुल आज़ाद होती हैं, जहाँ चाहती हैं जाती हैं। आपने देखा होगा ये छोटी छोटी मछलियाँ बार बार शीशे पर अपना मुंह मारती हैं, क्योंकि शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पानी की तरह होता है, जिसे ये पानी गुमान करती हैं। इस तरह बार बार शीशे से मुंह टकराने के सबब उन्हें जो तकलीफ़ होती होगी, इसे कोई एहसास रखने वाला ही समझ सकता है। बाज़ लोग बहुत हसास होते हैं, जैसा कि एक वाक़या बयान किया जाता है। एक शख्स ने अपने घोड़े को ज़ोर से कोड़ा मारा तो वहाँ करीब ही किसी चारपाई पर एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा थे, जिन्हें इतना सदमा हुआ यानी शौक लगा कि उनकी पीठ पर कोड़े का निशान आ गया। ए आशिकान रसूल, अगर हम अल्लाह पाक की मखलूक पर रहम करेंगे, इंशाल्लाह हम पर भी रहम किया जाएगा। लेकिन नाउज़ु बिल्ला, अगर हम बेजा जुल्म करेंगे तो बरोज़ क़यामत फंस जाएंगे। याद रखिए, बकरी वगैरह हलाल जानवरों को ज़बह करना जुल्म नहीं, क्योंकि शरीयत ने इन्हें ज़बह करने की इजाज़त दी है। लेकिन इनके साथ जुल्म की मुख्तलिफ सूरतें हैं। मसलन बकरी या बकरे को ज़बह करते वक्त इतना ज़्यादा ज़बह कर दिया कि छुरी रीढ़ की हड्डी पर या हराम मग़्ज़ तक पहुँच जाए। याद रहे, रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेकर कमर के आखिरी सर तक होती है, इसमें दुम शामिल नहीं। इस हड्डी से एक सफ़ेद डोरी निकलती है, जिसको हराम मग़्ज़ कहलाए जाती है। इसका खाना हराम है, मगर आम तौर पर लोगों को इसका पता नहीं होता। चाँप और कमर के गोश के साथ ये सफ़ेद डोरी भी आ जाती है, और बहुत से लोग ऐसे इसे बोटी समझकर खा जाते हैं। अगर गोश बेचने वाला माहिर है तो वो ये सफ़ेद डोरी गोश से अलग कर देता है। मुर्गी की गर्दन में भी यही सफ़ेद डोरी होती है, जो कि हराम मग़्ज़ है, लिहाजा इसे भी नहीं खाना चाहिए। बिला वजह जानवर ज़बह करते वक्त हराम मग़्ज़ तक छुरी पहुँचाना ये तकलीफ़ है, क्योंकि ज़बह में चार रगें काटना होती हैं, और ज़बह करते वक्त अगर तीन रगें या चारों का अक्सर कट जाए तब भी ज़बीहा हलाल हो जाएगा। इसी तरह बाज़ ज़ालिम कसाब जानवर ज़बह करते हैं और खाल छील कर छुरी दिल की तरफ घोंप देते हैं, ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। ये भी जुल्म है, और जुल्म जो है वो इंसान के साथ हो या किसी जानवर के साथ हो, जुल्म जुल्म होता है, और इससे हमें बचना है, वरना इस जुल्म की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम अज़ाब के हकदार कर दिए जाएं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने जो बयान की इब्तिदा में सुना कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला को एक ऐसा परिंदा तोहफ़े में पेश किया गया जो अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल होने के सबब क़ैद हुआ था, इसी तरह का मज़ीद एक दिलचस्प वाक़या पेश खिदमत है। एक बुज़ुर्ग अपनी नन्नी मुन्नी बच्ची के साथ साथ लिए बच्ची को दरिया किनारे आए और मछलियाँ पकड़ने लगे। वो मछलियाँ पकड़ कर अपनी बच्ची को देते ताकि वो इन्हें टोकरी में जमा करती रहे। काफ़ी देर बाद जब वो बुज़ुर्ग शिकार से फारिग हुए तो देखा टोकरी खाली है। उन्होंने बच्ची से पूछा, मछलियाँ कहाँ गईं? जवाब दिया, बजान आपने बताया था कि माहीगीर के जाल में यानी मछेरे के जाल में वही मछली फंसती है जो अल्लाह पाक की याद से गाफिल होती है, लिहाजा आप जो मछली पकड़कर मुझे देते तो मैं समझ जाती कि शायद ये वही मछली होगी यानी जो अल्लाह पाक के जिक्र से गाफिल हुई है, जब ही तो फंसी है, और जो अल्लाह पाक की याद से गाफिल हो गई हो, इस मछली का मुँह पकड़ती और इसे ये कहकर दरिया में छोड़ देती कि देख तू अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल हुई है तो हमारे जाल में फंस गई है, अब मैं तुझे मोहलत देती हूँ, आइंदा अल्लाह पाक की याद से गाफिल मत होना। इसके साथ साथ मेरे जहन में ये भी बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इन गाफिल मछलियों को खाकर हम भी गाफिल अल्लाह पाक की याद से गाफिल ना हो जाएं। इस वाक़े से कोई ये ना समझे कि मछली खाना हराम है। याद रखिए, मछली हलाल है, सिर्फ वही मछली हराम है जो पानी में कुदरती मौत मर कर उल्टी तैर जाए। ए आशिकान रसूल, ये उसूल जहन नशीन कर लीजिए कि मछली के अलावा पानी का हर जानवर हराम है। केकड़ा खाना हराम है क्योंकि ये मछली नहीं बल्कि पानी में रहने वाला एक जानवर है। हज़रत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल से अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए गुजर रहे थे कि अचानक दिल में ख्याल आया कि शायद इस जंगल में मेरे सिवा कोई अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला ना होगा। अल्लाह पाक ने तमाम परिंदों, दरिंदों और चरिंदों को हुक्म दिया कि सब अपने अपने जिक्र की आवाज़ बुलंद करें। अब हर तरफ से परिंदों, दरिंदों, चरिंदों के जिक्र की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम फौरन मामला समझ गए और सजदे में जाकर अल्लाह पाक से माफ़ी चाहते हुए अर्ज़ गुजार हुए, ए अल्लाह पाक, क्या ज़मीन के नीचे भी तेरा जिक्र हो रहा है? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इद्रिब बिआसाकल अर्ध, यानी आसा

0: लाठी ज़मीन पर मारो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपना आसा मारा, ज़मीन फट गई और इसमें से जो पानी जोश मारता हुआ नज़र आया, पानी नज़र आने लगा। फिर हुक्म हुआ कि इस पर भी आसा मारो। आप अलैहिस्सलाम ने इस पर भी आसा मारा तो पानी का सीना चाक हुआ और इसमें से एक सफ़ेद एक काला पत्थर नमूदार हुआ। बहुक में खुदाबंदी इस पर भी आसा मारा तो वो पत्थर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, इसमें से एक सब्ज़ ग्रीन जानवर निकला जो अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तेरी उम्र कितनी? उसने कहा 300 साल। फरमाया, तेरा काम क्या है? बोला, अल्लाह पाक क्या की याद से भी कोई अहम काम है? ए मूसा, मैं हर वक्त अल्लाह पाक की याद में मशगूल रहता हूँ। मुझे दिन में 2 मरतबा पानी पेश किया जाता है, लेकिन मैं इस डर से नहीं पीता कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने में मशगूल हो जाऊँ और इस दौरान मेरी मौत वाकई हो जाए और यूँ मैं अल्लाह पाक का जिक्र छोड़कर गफलत की मौत मर जाऊँ। ये कहकर वो सब जानवर गायब हो गया, पत्थर पानी के नीचे चला गया और ज़मीन दोबारा अपनी असली हालत पर आ गई। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, ज़मीन के अंदर रहने वाली मखलूक भी अल्लाह पाक का जिक्र करती है। ए आशिकान रसूल, ये छोटा सा कीड़ा हमें ये क्या सिखा रहा है, हमें क्या बता रहा है कि अल्लाह पाक के ज़िक्र से भी कोई अहम चीज़ है। हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करने वाले बन जाएं, ज़बान को ज़िक्रुल्लाह से तर रखें। ज़िक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया की मोहब्बत, दुनियावी मालो दौलत की लालच और गफलत का नतीजा ये कि आज मुसलमान तबाह बर्बाद हो गया है। अगर मुसलमान की ज़बान अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती और इसका दिल अल्लाह पाक की याद से मामूर रहता तो ये नौबत ना आती, लेकिन अफसोस मामला इसके बरक्स है। पहले बंदा जब आँख खोलता था तो सुबह सवेरे अल्लाह पाक का नाम और उसके कान में अल्लाह पाक का नाम जिक्र पड़ता था, जबकि अब सूरत हाल ये कि बंदा जब सुबह आँख खोलता है तो ना जाने कैसी कैसी आवाज़ें निकालता है और कैसी कैसी आवाज़ें उसके कानों में गूंजती हैं। पहले बंदा आँख खोलता था तो पाकीज़ा सूरतें देखता था और अब मोबाइल पर बेहया औरतों के चेहरे देखता है। याद रखिए, बदनज़री की बड़ी सज़ा है और होलनाक अंजाम है। अल्लाह पाक हमें अपने हाल पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को अपनी याद और अपने ज़िक्र की तौफीक बख्शे। हम सब के दिलों से गफलत का मेल और जंग दूर करके अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमारे दिलों को आईना बना दे। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिह।
1: ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे।

के पास आने लगा और आपसे मानूस हो गया। यहाँ तक कि जब आप दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाते तो वो दस्तरखान पर आकर बैठ जाता और उनके साथ खाना खाता और दाने चुगता। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला का इंतकाल हुआ तो वह परिंदा नीचे गिरा, तड़पने लगा और तड़प तड़प कर उसने भी दम तोड़ दिया। आप रहमतुल्लाह ताला के इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। फरमाया हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने, मैंने एक बेज़ुबान परिंदे पर रहम किया तो अल्लाह पाक ने मुझ पर भी रहम किया। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई और सामईन किराम, इस ईमान अफरोज़ वाक़े से हमें इबरत के बहुत मदनी फूल हासिल हुए, जिनमें से चंद पेशे खिदमत हैं। जो परिंदा अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल होता है वो क़ैद हो जाता है। जमादात व नबातात का मामला भी कुछ इसी तरह है। चूँकि हदीस पाक में है कि दरख्त पर कुल्हाड़ा उसी वक्त चलता है जब वह अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है। दुनिया में जो भी परिंदे और जमादात वगैरह हैं सब अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं और हर वक्त इसकी याद में उनकी ज़बान तर रहती है। दूसरा मदनी फूल यह हासिल हुआ कि अल्लाह पाक की अता से औलिया इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम परिंदों से बातचीत करते और उनकी गुफ्तगू समझते हैं। एक मदनी फूल यह भी हासिल हुआ कि चरिंदों और परिंदों के साथ भी हुस्ने सलूक से पेश आना चाहिए। लिहाजा जो लोग जानवर पालते हैं उन्हें इस बारे में खूब गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। ए आशिकान रसूल, आजकल लोग शीशे के छोटे से शोकेस में, एक्वेरियम में प्लास्टिक के या शीशे के कुछ फूल डाल वगैरह कर रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियाँ रखते हैं। वो प्यारी प्यारी मछलियाँ शोकेस के शीशे को पानी समझकर रास्ता ढूंढते हुए बार बार इस पर मुंह मारती हैं और देखने वाले इनकी इन हरकत से लुत्फानंदोज़ होते हैं। ऐसों को सोचना चाहिए कि ये मछलियाँ वसी समंदर में आज़ादी से तैरती हैं, लेकिन आज इन बेचारों को बिचारियों को एक छोटी सी शोकेस में बेदर्दी के साथ बंद कर दिया गया है। अगरचे शीशे के शोकेस में मछलियाँ रखना हराम नहीं, जायज़ है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर हमें एक कमरे में नज़रबंद कर दिया जाए तो हम पर क्या गुजरेगी। यकीनन दुनिया की तमाम आसाइशें मुहैया होने के बावजूद हमारा जीना दोभर हो जाएगा। इसी तरह उन परिंदों को देखकर भी बड़ा तरस आता है जिन्हें लोगों ने पिंजरों में कैद कर कर इनकी परवास का सिलसिला मुनक़ता यानी ख़त्म कर दिया। इसी तरफ इशारा करते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा, ए तायर लाती हुई इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बहरहाल अल्लाह पाक की किसी मखलूक पर बिला वजह जुल्म नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो यही हमारी आखिरत की बर्बादी का सबब बन जाए। चुनाचे हदीस पाक में है कि एक औरत को इस वजह से अज़ाब में मुब्तला किया गया कि उसने एक बिल्ली को क़ैद किए रखा, ना तो उसे कुछ खिलाया पिलाया और ना ही छोड़ा कि वो कुछ खुद खा कर गुजारा कर लेती, यहाँ तक कि वो मर गई। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन कराम, अगरचे परिंदे पालना नाजायज़ व हराम नहीं, यानी ज़ुआज़ो वगैरह परिंदे पाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई पालता है तो वो इनके लिए खानों का ज़खीरा करें, इनको खाने की कमी ना हो, ताकि वो खाते पीते रहें और इन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुंचने पाए। यहाँ तक कि शीशे के शोकेस में मछलियाँ पालने का ताल्लुक है कि ये शौक़ के अलावा कुछ नहीं। और कीजिए कैद में इन बिचारियों पर क्या गुजरती होगी, ये खुले पानी में बिल्कुल आज़ाद होती हैं, जहाँ चाहती हैं जाती हैं। आपने देखा होगा ये छोटी छोटी मछलियाँ बार बार शीशे पर अपना मुँह मारती हैं, क्योंकि शीशा ट्रांसपेरेंट होता है यानी पानी की तरह होता है, जिसे ये पानी गुमान करती हैं। इस तरह बार बार शीशे से मुँह टकराने के सबब उन्हें जो तकलीफ़ होती होगी इसे कोई एहसास रखने वाला ही समझ सकता है। बाज़ लोग बहुत हसास होते हैं, जैसा कि एक वाक़या बयान किया जाता है। एक शख्स ने अपने घोड़े को ज़ोर से कोड़ा मारा तो वहाँ करीब ही किसी चारपाई पर एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा थे, जिन्हें इतना सदमा हुआ यानी शौक लगा कि उनकी पीठ पर कोड़े का निशान आ गया। ए आशिकाने रसूल, अगर हम अल्लाह पाक की मखलूक पर रहम करेंगे इंशाल्लाह हम पर भी रहम किया जाएगा, लेकिन नाउज़ु बिल्लाह अगर हम बेजा जुल्म करेंगे तो बरोज़ क़यामत फंस जाएंगे। याद रखिए बकरी वगैरह हलाल जानवरों को ज़बा करना जुल्म नहीं, क्योंकि शरीयत ने इन्हें ज़बा करने की इजाज़त दी है, लेकिन इनके साथ जुल्म की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। मसलन बकरी या बकरे को ज़बा करते वक्त इतना ज़्यादा ज़बा कर दिया कि छुरी रीढ़ की हड्डी पर या हराम मक्स तक पहुँच जाए,
याद रहे, रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेकर

कमर के आखिरी सर तक होती है। इसमें दुम शामिल नहीं। इस हड्डी से एक सफ़ेद डोरी निकलती है जिसको हराम मग़ज़ कहलाई जाती है। इसका खाना हराम है मगर आम तौर पर लोगों को इसका पता नहीं होता। चाँप और कमर के गोश के साथ ये सफ़ेद डोरी भी आ जाती है और बहुत से लोग ऐसे इसे बोटी समझकर खा जाते हैं। अगर गोश बेचने वाला माहिर है तो वो ये सफ़ेद डोरी गोश से अलग कर देता है। मुर्गी की गर्दन में भी यही सफ़ेद डोरी होती है जो कि हराम मग़ज़ है, लिहाजा इसे भी नहीं खाना चाहिए। बिला वजह जानवर ज़बह करते वक्त हराम मग़ज़ तक छुरी पहुंचाना ये तकलीफ़ है, क्योंकि ज़बह में चार रगें काटना होती हैं और ज़बह करते वक्त अगर तीन रगें या चारों का अक्सर कट जाए तब भी ज़बीहा हलाल हो जाएगा। इसी तरह बाज़ ज़ालिम कसाब जानवर ज़बह करते हैं और खाल छील कर छुरी दिल की तरफ घोंप देते हैं ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। ये भी जुल्म है, और जुल्म जो है वो इंसान के साथ हो या किसी जानवर के साथ हो, जुल्म जुल्म होता है और इससे हमें बचना है, वरना इस जुल्म की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम अज़ाब के हकदार कर दिए जाएं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने जो बयान की इब्तिदा में सुना कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला को एक ऐसा परिंदा तोहफ़े में पेश किया गया जो अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल होने के सबब क़ैद हुआ था, इसी तरह का मज़ीद एक दिलचस्प वाक़या पेश खिदमत है। एक बुज़ुर्ग अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ साथ लिए बच्ची को दरिया किनारे आए और मछलियाँ पकड़ने लगे। वो मछलियाँ पकड़ कर अपनी बच्ची को देते ताकि वो इन्हें टोकरी में जमा करती रहे। काफ़ी देर बाद जब वो बुज़ुर्ग शिकार से फारिग हुए तो देखा टोकरी खाली है। उन्होंने बच्ची से पूछा, मछलियाँ कहाँ गईं? जवाब दिया, अब्बाजान आपने बताया था कि माहीगीर के जाल में यानी मछेरे के जाल में वही मछली फंसती है जो अल्लाह पाक की याद से गाफिल होती है, लिहाजा आप जो मछली पकड़कर मुझे देते तो मैं समझ जाती कि शायद ये वही मछली होगी यानी जो अल्लाह पाक के जिक्र से गाफिल हुई है, जब ही तो फंसी है, और जो अल्लाह पाक की याद से गाफिल हो गई हो इस मछली का मुँह पकड़ती और इसे ये कहकर दरिया में छोड़ देती कि देख तू अल्लाह पाक के ज़िक्र से गाफिल हुई है तो हमारे जाल में फंस गई है, अब मैं तुझे मोहलत देती हूँ, आइंदा अल्लाह पाक की याद से गाफिल मत होना। इसके साथ साथ मेरे जहन में ये भी बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इन गाफिल मछलियों को खाकर हम भी गाफिल अल्लाह पाक की याद से गाफिल ना हो जाएं। इस वाक़े से कोई ये ना समझे कि मछली खाना हराम है। याद रखिए मछली हलाल है, सिर्फ वही मछली हराम है जो पानी में कुदरती मौत मर कर उल्टी तैर जाए। ए आशिकाने रसूल, ये उसूल जहन नशीन कर लीजिए कि मछली के अलावा पानी का हर जानवर हराम है। केकड़ा खाना हराम है क्योंकि ये मछली नहीं बल्कि पानी में रहने वाला एक जानवर है। हज़रत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल से अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए गुजर रहे थे कि अचानक दिल में ख्याल आया कि शायद इस जंगल में मेरे सिवा कोई अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला ना होगा। अल्लाह पाक ने तमाम परिंदों, दरिंदों और चरिंदों को हुक्म दिया कि सब अपने अपने जिक्र की आवाज़ बुलंद करें। अब हर तरफ से परिंदों, दरिंदों, चरिंदों के जिक्र की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम फौरन मामला समझ गए और सजदे में जाकर अल्लाह पाक से माफ़ी चाहते हुए अर्ज़ गुजार हुए, ए अल्लाह पाक, क्या ज़मीन के नीचे भी तेरा जिक्र हो रहा है? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इद्रिब बिआसा कल अर्द, यानी आसा लाठी ज़मीन पर मारो। सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपना आसा मारा और ज़मीन फट गई और इसमें से जो पानी जोश मारता हुआ नज़र आया, पानी नज़र आने लगा। फिर हुक्म हुआ कि इस पर भी आसा मारो। आप अलैहिस्सलाम ने इस पर भी आसा मारा तो पानी का सीना चाक हुआ और इसमें से एक सफ़ेद, एक काला पत्थर नमूदार हुआ। बहुकम खुदाबंदी इस पर भी आसा मारा तो वो पत्थर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, इसमें से एक सब्ज़ ग्रीन जानवर निकला जो अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा था। सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तेरी उम्र कितनी? उसने कहा 300 साल। फरमाया, तेरा काम क्या है? बोला, अल्लाह पाक क्या कि याद से भी कोई अहम काम है? ए मूसा, मैं हर वक्त अल्लाह पाक की याद में मशगूल रहता हूँ। मुझे दिन में 2 मरतबा पानी पेश किया जाता है लेकिन मैं इस डर से नहीं पीता कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने में मशगूल हो जाऊँ और इस दौरान मेरी मौत वाकई हो जाए और यूँ मैं अल्लाह पाक का जिक्र छोड़ कर गफलत की मौत मर जाऊँ। ये कहकर वो सब जानवर गायब हो गया, पत्थर पानी के नीचे चला गया और ज़मीन दोबारा अपनी असली हालत पर आ गई। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, ज़मीन के अंदर रहने वाली मखलूक भी अल्लाह पाक का जिक्र करती है। ए आशिकाने रसूल, ये छोटा सा कीड़ा हमें ये क्या सिखा रहा है, हमें क्या बता रहा है कि अल्लाह पाक के जिक्र से भी कोई अहम

0: चीज़ है। हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करने वाले बन जाएं, ज़बान को ज़िक्रुल्लाह से तर रखें। ज़िक्र व दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बा रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया की मोहब्बत, दुनियावी मालो दौलत की लालच और गफलत का नतीजा ये कि आज मुसलमान तबाह बर्बाद हो गया है। अगर मुसलमान की ज़बान अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती और इसका दिल अल्लाह पाक की याद से मामूर रहता तो ये नौबत ना आती। लेकिन अफसोस, मामला इसके बरक्स है। पहले बंदा जब आँख खोलता था तो सुबह सवेरे अल्लाह पाक का नाम और उसके कान में अल्लाह पाक का नाम जिक्र पड़ता था, जबकि अब सूरत हाल ये कि बंदा जब सुबह आँख खोलता है तो ना जाने कैसी कैसी आवाज़ें निकालता है और कैसी कैसी आवाज़ें उसके कानों में गूंजती हैं। पहले बंदा आँख खोलता था तो पाकीज़ा सूरतें देखता था और अब मोबाइल पर बेहया औरतों के चेहरे देखता है। याद रखिए, बदनज़री की बड़ी सज़ा है और होलनाक अंजाम है। अल्लाह पाक हमें अपने हाल पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी याद और अपने ज़िक्र की तौफीक बख्शे। हम सब के दिलों से गफलत का मेल और जंग दूर करके अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमारे दिलों को आईना बना दे। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व
1: आलिही। सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। मौज़ सामीन, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकले और इल्म के रास्ते में मुशक्क़तें बर्दाश्त करे, उसे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहमियत दी है। इसीलिए इल्म और दीन को आगे बढ़ाने और आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने में तालिब इल्म का अहम किरदार होता है। वो अपने उस्ताद से सीखता है और फिर ख़ुद उस्ताद बनकर सैकड़ों को फैज़ इल्म पहुँचाता है।

0: मी सीच्या घड्याळात ठीक 12 वाजले आहेत.
1: स्वर तरंग
2: स्वर तरंग

yakınan şu.

好听吗？好听，点赞、评论、关注、收藏、转发、弹幕支持一下，谢谢！别忘了强烈推荐哦！感谢观看，欢迎常来听歌，下个视频再见。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। सोमवार 13 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 2:30 बज चुके।

है और यहाँ पर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आपकी पसंद इसे लेकर हम जुड़ चुके हैं आपके साथ और अभी से लेकर 4:15 तक हम आपके साथ साथ आज रहने वाले हैं। सो कैसे हैं आप सभी, ठीक है ना? आज सोमवार का दिन है, वीकेंड तो आजकल इतने जल्दी बीतता है कि हम क्या कहें। जैसे वीकेंड शुरू होता है मानो ख़त्म भी हो जाता है और आजकल समय इतनी तेज़ी से बीत रहा है। और समय के साथ चलिए हम भी यहाँ पर आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए। खूबसूरत गाने तराने यहाँ पर आपके मनोरंजन के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम चलाएंगे और आपकी पसंद यह प्रोग्राम है तो बेशक फरमाइशी गीत यहाँ पर शामिल करेंगे। और जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं आपके साथ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तैयार हो जाइए आप सबके इस पसंदीदा प्रोग्राम में साथ देने के लिए। और नंबर तो हमारा आपको पता ही है ना, 5251700552517005 है नंबर हमारा आपके मैसेजेस के लिए। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 4028085 पर। और चलिए अवतार फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के आपके पसंद इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।

चलिए, यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और यहाँ पर इंसानियत फिल्म का गाना सुदेवी जी, जो आपने मांगा है वो गाना हमारे पास नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। तो इंसानियत फिल्म का ये जो अगला तराना है हम आपके नाम करते हैं, उम्मीद करते हैं ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। गाना जाता है यहाँ पर आपकी दीदी ललिता के नाम, सभी कुशल फैमिलीज़ के लिए, आत्माराम भैया के लिए, दीदी सुनीता, शोभा देवीना के लिए, संगीता है, जिवराज है, बिंदु है, मालिंगा से है, केशनी, कृषय, कृषिका, लक्षिका, सभी राम रतन परिवार, सभी राम गुलाम परिवार, सभी को आरूफ परिवार के नाम, रघुवर फैमिलीज़ के लिए, हृदय फैमिली के नाम। और यहाँ पर यही गाना खासकर आपके लिए सुदेवी जी, बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़ी हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर अगला जो तराना है, विश्वानी जी आपके नाम भी हम करते हैं, विश्वानी दुमन जी जो वाकवा से हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है इंदिरा के नाम, शारदा के नाम, नीला, प्रतिभा आपकी सहेलियों के लिए, शोभा है, गीता गजाधर है, सभी दुमन परिवार जो इस समय बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है और ये तराना आप सभी के नाम, इंसानियत फिल्म का तराना मेरे यहाँ पर, इंसानियत फिल्म का ये जो तराना है आप सभी के नाम हम करते हैं, के नाम जिसने ये गाना बहुत पसंद है।

0: आपकी पसंद।
1: चले कुछ गाने होते ही ऐसे हैं जो दिल के बड़े करीब होते हैं, तो साथी तेरा प्यार पूजा है, ये गाना भी बड़ा ही खूबसूरत सा था। हमें यकीन है ये गाना बहुत से लोगों के दिल को छू भी गया होगा। कुमार सानू, साधना सरगम जी की आवाज़ों में ये जो तराना है, आप सबके नाम हम करते हैं। और चलिए अब बारी है इस अगले तराने की। गीता जी पोफिया से हमारा साथ दे रही है। गीता जी की ओर से अगला तराना जो है जाता है उनके पति रोहित के नाम, उनके सभी बेटों के लिए, सभी बहुओं के लिए, और ख़ासकर आदित्य, आरव, तनिष और जानवी के नाम। हमारी MBC की पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। और यही गाना आपके लिए भी, बम्बई का बाबू फिल्म का ये गाना है, रफी साहब, आशा जी और साथियों की आवाज़ों में।

0: आपकी पसंद।
1: अजी बहार तो यहाँ पर आई है आपकी पसंद इस प्रोग्राम में इन सभी गानों के जरिए जिसकी फरमाइश आप कर रहे हैं 4028085 और साथ ही 5251700005 पर। और चलिए बारी है इस अगले गाने की। शोर फिल्म का जो तराना है एक प्यार का नगमा है, विद्या जी आपके नाम हम करते हैं। यूनियन पार्क से हमारे साथ जुड़ी हुई है, गाना जाता है आपकी चाची कुमारी, आपकी चाची कुमारी के नाम। जीना गाना आपकी चाची कुमारी के नाम। आपकी जगह

सर्दी का मौसम है तो गले में थोड़ी सी खराश आ गई, तो ऐसे में गाना चाहता है आपकी चाची कुमारी के नाम, आपकी बहन सती के लिए। सुरेखा है, बबीता है, सुनीता है, सभी परिवार जो यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रहे हैं। और इस समय हमारे साथ बड़े ही प्यार से ज्योति जी जुड़ी हुई है, आप भी यूनियन पार्क से ही हैं। ज्योति जी, अगला गाना प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अभिषा के लिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
2: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी का स्वागत है। पेंशन सुधार के विरोध में बने संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे अपनी आगे की रणनीति तय करने से पहले फाइनेंस बिल के प्रस्तुत होने का इंतजार करेंगे। आज सुबह आयोजित एक प्रेस वार्ता में ट्रेड यूनियन नेताओं ने राजधानी की सड़कों पर निकाली गई पेंशन सुधार विरोधी शांतिपूर्ण रैली को सफल बताया। उन्होंने 60 वर्ष की आयु से सभी के लिए 15,555 रुपए की सार्वभौमिक पेंशन लागू करने की मांग दोहराई। साथ ही उनका कहना है कि बड़े वित्तीय समूहों पर विशेष टैक्स लगाया जाए ताकि सार्वभौमिक पेंशन और उससे जुड़े अनुदानों को बहाल करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देश के कई इलाकों में मरम्मत का काम चला रहा है। मकसद है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बेहतर करना। ये कार्य मुख्य रूप से सप्ताहांत के दौरान चलाई जा रही है, जब बिजली की मांगे आमतौर पर कम रहती है। कार्यों के अगले सितंबर महीने तक चलने का अनुमान है। और कल प्लिजोस हवाई अड्डे पर इथियोपियन एयरलाइन के विमान के आगमन के साथ मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत हो गई। इससे पर्यटन, व्यापार और व्यापार आदान प्रदान के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़े फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है। भारी वर्षा, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। देश के कई हिस्सों, जिनमें राजधानी ढाका भी शामिल है, बाढ़ की चपेट में है।

0: हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब तक हुई कुल मौतों में आधे से अधिक एक बड़े बाजार वाले जिले में दर्ज की गई है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी रोहिंग्या शरणार्थी बस्ती स्थित है। पिछले सप्ताह इसी जिले में बाढ़ का पानी स्कूल में घुस आने से कई छात्रों और एक शिक्षक की भी जान चली गई थी। और उधर दक्षिणी वियतनाम में एक द्वीप के निकट भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक स्पीड बोट के पलट जाने से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार नौका में 32 भारतीय पर्यटक और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। शनिवार को खराब समुद्री मौसम के दौरान ये स्पीड बोट होम बेरुत एनगुआई द्वीप से लगभग 400 मीटर की दूरी पर पलट गई। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
2: 3:03 समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबी मोबलॉन शामुनी में रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। मोबलॉन शामुनी में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर बुधवार 15 जुलाई को सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहां पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आपकी पसंद।
1: अजी ऐसे ही थोड़ी ना आपको भूलने देंगे हम। आपकी पसंद यह प्रोग्राम चल रहा है रेडियो मॉरिशस पर, और इस प्रोग्राम को कोई भूल सकता है भला? चलिए यहाँ पर साथ दे रहे हैं, आपके पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है। बढ़ते हैं हम अगले गाने की ओर। अगला तराना जो है जिंदगी फिल्म का ये गीत होगा, जाता है यहाँ पर उदय रिवेजपुर से। उदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी ओर से गाना संगीता के नाम। खासकर इनके जो समधी समधीन जी है, सुनील और ज्योति जी, सभी कोरक परिवार और सभी लखन परिवारों के नाम जिंदगी फिल्म का ये गीत चल पड़ा। तो चलिए ऐसा ही कोई गाना सुनना चाहते हैं या किसी के नाम करना चाहते हैं, जुड़ जाइए पसंदीदा गीतों के इस प्रोग्राम में अपनी फरमाइशों के साथ।

0: आपकी पसंद।
1: तो चलिए यहाँ पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में आप साथ हमारा दे रहे हैं। अगला गाना जो है इसकी फरमाइश आई है राजन जी की ओर से। राजन जी जो है इस समय आपकी पसंद इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और उन्होंने एस जानकी जी का कोई गाना जो है इसकी फरमाइश की है। एस जानकी जी जो है ऐसे साउथ के फिल्मों में काफ़ी गाने इन्होंने गाए हैं, लेकिन वहीं पर बॉलीवुड की दुनिया में भी, बॉलीवुड में भी इन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं। और 11 जुलाई 2026 को, यानी कि पिछले शनिवार को इनका निधन हो गया। और इन्हें ज़्यादातर जानकी अम्मा के नाम से जाना जाता है, जिस तरह से लता जी को नाइटिंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी तरह से जानकी जी को नाइटिंगल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता था। तो चलिए इनको याद करते हुए जो है हम इनका गाया हुआ ये गाना आप सबके लिए चलाते हैं। ऐसे अपने करियर के दौरान इन्होंने 48,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, फिल्मों के साथ साथ टेलीविज़न और रेडियो के लिए भी, साउथ के साथ साथ हिंदी फिल्मों के लिए भी इन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं। बप्पी लाहिरी साहब के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया है। और अगला जो तराना है ये आखिरी रास्ता फिल्म का ये गाना होगा। एस जानकी जी, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की आवाजों में, खासकर राजन जी आपके लिए और एस जानकी जी को याद करते हुए ये गाना उनके सभी फैंस के लिए।
2: We want story. Okay. I will tell you a story, but everybody will sing with me.
3: Okay.
2: Ready? Come on. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: आपकी पसंद।
1: चलिए इस खूबसूरत और मस्ती भरे गाने के साथ हमें एक मौका मिला एस जानकी जी को याद करने का, और उनके गाए हुए गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो बेशक 4 बजे से 6 बजे के बीच आप रेडियो मनोरंजन पर हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। उन पर एक स्पेशल प्रोग्राम हम करेंगे, 2 घंटे के दौरान उनके खूबसूरत गाए हुए गाने आपके लिए चलाएंगे, तो वहां पर भी आप हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। चलिए अभी के लिए आपकी पसंद इस प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं, और यहाँ पर सेलू हमारे साथ जुड़ी हुई है, पेंटाया परिवार के नाम। अगला तराना कहते हैं कि बस किसी गाने में हमारा नाम जोड़ दीजिए। तो चलिए आपने कहा और ये गाना आपके लिए चल पड़ा। यही गाना जाता है यहाँ पर मौदलबे के, अनीता जी आपके नाम बड़े ही प्यार से आप हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं। गाना जाता है आपके सभी दोस्तों के लिए, खासकर गाना करुणा के नाम, अमृता के नाम, और जिसने सुनने वाले इस समय हमारा साथ दे रहे हैं उन सभी के लिए। वास्तव फिल्म का ये तराना सोनू निगम जी की आवाज़ में चल पड़ा। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं,

आपकी पसंद। जी हाँ, कहीं ना कहीं हमारी जो दुनिया है इन्हीं गानों के इर्द गिर्द घूमते रहती है, और इन्हीं गानों के ज़रिए जो है हम अपने मूड को ठीक करते हैं, कभी खुशी का ज़रिया ढूंढते हैं और कभी दुख में होते हैं, तो यही गाने जो है हमारा सहारा भी बनते हैं, हमारा साथ भी देते हैं। तो चलिए ऐसा ही कोई तराना सुनना चाहते हैं तो बेशक जुड़ जाइए हमारे इस प्रोग्राम में। अभी के लिए तो इतनी सारी फरमाइशें हैं कि क्या कहें, किसी ने यहाँ पर गाने की फरमाइश की है लेकिन गाने को बीच से लिखा है, फिर भी हमने कोशिश की है समझने की कि जो गाना आप मांग रही है ये वही है। आपने लिखा है कि किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न दे तू छोड़कर, ये गाना आप सुनना चाहती हैं मुकेश साहब की आवाज़ में। तो आई बिलीव ये गाना मेरे हमसफ़र फिल्म का टाइटल ट्रैक है, लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में। सीमा जी आपके नाम जाता है, ट्रियोले से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आप साथ हमारे जुड़ी हुई है। और मेरे हमसफ़र फिल्म का तराना उन सभी के नाम जो लता जी और मुकेश साहब के फ़ैन्स हैं।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए इतनी जल्दी हमारा और आपका साथ नहीं छूटने वाला है, अभी तो यहाँ पर हम आज आपके साथ रहने वाले हैं 4:15 तक। और इस अगले गाने के ज़रिए हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे, जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे उन सभी को, उन सभी लिसनर्स को, आपके परिवार के सदस्यों को जो भी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। तो चलिए जितने भी लोगों का बर्थडे है, अगला गाना आप सब के नाम हमारी ओर से। जन्मदिन बहुत ही ख़ास होता है और ऐसे में अगले गाने के ज़रिए प्यारी प्यारी नीस शिखा को जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं, खास कर नानी सुमंती की ओर से, मौसी आरती की ओर से, साथ में सचिता है, बबीता है, रेखा है, मामी उषा, मामू सत्यम, कजिन्स है अक्षय, राहुल यादव, ऋषभ, नितिक, अनिकेत के नाम, साथ में केशा है, दिशा है, साइशा है। सभी परिवार की ओर से शिखा आपको जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपके नाम। और जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, ये तराना आप सभी के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए यहाँ पर गानों का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं। और पाकीज़ा फिल्म का ये गाना आप सबके नाम हम करते हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में, खास कर ये गाना अमीना जी आपके नाम हम करते हैं आपकी ओर से आपकी बहनों के लिए। फ़ाइमा है, नाजमा है, फाजीमा है, मुनीजा है आपके दो भाइयों के लिए। और यहाँ पर खासकर अमीना जी आपकी ओर से गाना आपके पूरे परिवार के नाम चल पड़ा।

टिकटॉक के फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, उन सभी के नाम भी ये गाना चल पड़ा। ऐसे टिकटॉक पर रेडियो मॉरिशस का पेज है, हमारे उस पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ उस प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े रहिएगा।

0: आपकी पसंद।
1: अजी आज तो कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम जो है 4:15 बजे तक चलने वाला है और इतनी सारी फरमाइशें हैं कि 4:15 बजे तक प्रोग्राम जो है गानों को चलाते चलाते पूरा हो ही जाएगा। अभी के लिए इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। खानदान फिल्म का ये जो तराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। चलिए कोई ना कोई बहाने से हम यहाँ पर आ ही जाते हैं आपका साथ देने के लिए। अभी के लिए जो अगला गाना है जाता है आपके नाम, रिहाना फिनिक्स से हमारा साथ दे रही है और गाना आपकी ओर से आपके सभी फैमिली मेम्बर्स के नाम, हमारे तमाम सुनने वालों के नाम। और चलिए यहाँ पर अनीता जी फ्लिक ऑफ लाक से लिख रही है कि हम भी आपके साथ साथ हैं गाने का सिलेक्शन आपको पसंद आ रहा है, हैप्पी मंडे आप सबको कह रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं, साथ देते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए बहाना कोई भी हो, अपनों से मुलाकात होते रहनी चाहिए, अपनों से जो बात है वो होते रहनी चाहिए, तभी तो रिश्ते जो है बरकरार रहते हैं। नहीं तो कभी कभार होता ऐसा है ना कि हम सोचते हैं कि अरे वो बात नहीं कर रहा है तो मैं क्यों बात करूँ, वो अगर मुझे नहीं पूछ रहा है तो मैं क्यों पूछूँ, और ऐसे ही रिश्तों में दूरियाँ आ जाती है, दरार आ जाती है, और जब तक सुलह की बात आती है तब तक हम एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। तो बस रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और चलिए गानों का ये जो कारवा है इसे हम आगे ले जाते हैं। अगला जो तराना है आप सभी के नाम हम करते हैं, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये जो गाना है, आफिज़ जी लावण्या से बड़े ही प्यार से हमें सुन रही हैं, हमेशा हमें फ़ोन करती है तो कह रही कि ये गाना हो जाए। इनके नाम और इनकी बहन राइफा के नाम जो मेबक से हमारा साथ दे रही है, तो चलिए दोनों प्यारी बहनों के लिए आफिज़ जी और राइफा आप दोनों के नाम इस गाने को हम करते हैं। किशोर कुमार जी की आवाज़ है, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत है, मेरे महबूब कयामत होगी। तो चलिए जो गानों का सिलसिला है यहाँ पर जारी है, आप साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर सविता जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, ज्योति जी हमेशा शातो बनारस से हमारा साथ देती है, तो आपके भी प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग बस कहते हैं कि बस किसी भी गाने में हमारा नाम जोड़ दीजिए, तो ऐसे में जो तराना है आप सभी के नाम हम करते हैं ताकि आप चाहते हैं कि औरों को भी मौका मिले, ताकि उनके भी गाने जो है उनकी फरमाइशें यहाँ पर पूरी हो। तो चलिए ये गाना चल पड़ा।

और चलिए इसी के साथ आपकी पसंद इस प्रोग्राम के अंत तक हम आ गए हैं, और जाते जाते ये आखिरी गाना सुनीता जी ग्रॉगुप से आपके नाम हम करते हैं। माला जी कट्रबोन से हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और जाते जाते यही गाना आप सभी प्यारे सुनने वालों के नाम जिन्होंने आज भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। 4 बजे से जो है आप यहाँ पर तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे राजेंद्र की प्रस्तुति में, और हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार आप सभी को।

0: 800 and 19 kilowatts. This is Radio Marches.
1: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा एमबीसी रेडियो आपके साथ।
2: हेलो दोस्तों, रेडियो मॉरिशस की लहरों पर बचपन ऐसा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का, सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बचपन ऐसा कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हो चुकी है रत्ना, हमारा सब प्रेम नमस्कार स्वीकार करें। आप सब अच्छे होंगे, बस यही आशा रखते हैं। और आज एक और लाजवाब मंडे का दिन बीता है। अब आप कहेंगे मंडे लाजवाब थोड़ी होता है, संडे के बाद मंडेज बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। पर सच कहूँ दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त हों, अच्छे रोल मॉडल्स हों, तो हर दिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बीतता है ना। अगर अच्छा दोस्त हो तो मंडे को स्कूल जाने का मन कितना अच्छा करता है। बस ऐसे ही पहले के ज़माने में हम कहानियों में परियों की बातें सुना करते थे, है ना। पहले के ज़माने में दादी या नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, परियों की कहानियाँ। पर आज के समय में हमारे ज़िंदगी में, रियल लाइफ में भी परियाँ होती हैं, रियल लाइफ में भी एंजल्स होते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं। कई बार हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारा एंजल हो सकता है, कई बार हमारी सबसे फेवरेट टीचर हमारी एंजल हो सकती है, या फिर हमारा बड़ा भाई, बड़ी बहन, या इवन मम्मी पापा, है ना, जो हमेशा हमें गाइड करते हैं। हाँ, पर कभी कभी लगता है कि मम्मी पापा हमें बहुत डांटते हैं, बहुत मतलब कुछ करने से रोकते हैं। पर सच कहूँ तो ऐसे एंजल्स कहीं नहीं मिलते। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनके लाइफ में ऐसे एंजल्स होते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बातों के साथ बढ़िया बढ़िया गाने भी आपको सुनाएंगे, और इस गीत के साथ आगे बढ़ते हैं बचपन ऐसा कार्यक्रम में।

बचपन ऐसा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ की मुश्किलों में हमारी मम्मी कई बार हमारे लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। सबसे लड़ती हैं क्योंकि वे चाहती हैं कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमारी रक्षा करती हैं, दुनिया से लड़ जाती है बस हमें अपने सपनों की ओर पहुंचाने के लिए। अगर आपकी मम्मी भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार से सपोर्ट करती हैं तो उसे एक प्यार वाली पप्पी और प्यार वाली झप्पी ज़रूर दीजिएगा।

दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एंजल्स के बारे में और हमारे लाइफ के सबसे बड़े सुपर हीरो होते हैं हमारे पापा। चाहे जितनी मुश्किलें आए आपको किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने देते। उनके जेब में हमेशा पैसे निकलते हैं, चाहे वो वही पुराने कपड़े क्यों ना पहनते हो, वही पुराने जूते में साल भर निकाल दे, पर आपको कभी आउटडेटेड नहीं पहनाते। आपको हमेशा लेटेस्ट और अपडेटेड चीज़ें ही देते हैं और हम क्या करते हैं, पापा को थैंक यू बोलना भूल जाते हैं, है ना। हम तो ये समझते हैं कि भाई ये तो पापा की ड्यूटी है, पर पापा अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभा रहे हैं। क्या हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभा रहे हैं? बस आप अपने पापा को भी कभी कभी दिल से थैंक यू बोल दिया कीजिए, क्योंकि वे हैं आपके सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग वाले सुपर हीरो।

दोस्तों बचपन ऐसा कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दे रही हूँ बिल्कुल 6 बजे तक। हमारे लाइफ के सुपर हीरोज और एंजल्स, जैसे हमने शुरुआत में बताया, हो सकता है कि आपकी कोई फेवरेट टीचर या आपका कोई सबसे अच्छा प्रोफेसर आपका एंजल रहा हो, जो हमें इस जिंदगी की लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। हो सकता है कि कुछ सख्ती उनकी ओर से हमें झेलनी पड़ती है, डिसिप्लिन चाहते हैं वे, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे जिंदगी की आने वाली लड़ाई के लिए हमें तैयार करते हैं। सुपर हीरोज सिर्फ कहानी में नहीं होते, परियां सिर्फ कहानी में नहीं होती, हमारे रियल लाइफ के जो हीरोज हैं उनको भी हम बहुत प्यार से थैंक यू कहते चले। और आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आशा करते हैं बचपन ऐसा कार्यक्रम आज आपको पसंद आया होगा, और फिर अगले सप्ताह एक और नए प्रोग्राम के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे रेडियो मॉरिशस की लहरों पर ठीक 5:30 बजे हर सोमवार को आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे हमारे साथ। तो इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

तदुम तो तत्

बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। MBC रेडियो आपके साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिलाते, चलिए शाम के ठीक 6 बजे हैं।
0: 819 किलोहर्ट्ज
1: तेरह जुलाई सोमवार का दिन, इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ओमनिकिन में 2026 की गन्ना कटाई अभियान की शुरुआत, अंतर धार्मिक प्रार्थनाओं से की गई। इस वर्ष ग्रुप अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है और बदलती चीनी उद्योग की चुनौतियों का सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है। रिविया जोगोम्पा बाजार परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में। राज्यसभा में इस मामले पर जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि वर्ष 2003 में दिए गए करीब 51 मिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के बदले 20 साल बाद 580 मिलियन रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ा। प्लेटफॉर्म को मैसेजिकल फाइनेंस बिल पेश होने का इंतजार कर रहा है। संगठन का कहना है कि इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही 8 वर्ष की आयु से 15,555 रुपए की पेंशन की मांग एक बार फिर दोहराई गई। अमेरिका ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। उधर वियतनाम के एक द्वीप के पास एक पर्यटक स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। ओमनिकेन में आज से 2026 की गन्ना कटाई अभियान की शुरुआत हो गई। एक अंतरधार्मिक प्रार्थना के साथ शुरू हुए इस अभियान का इस वर्ष विशेष महत्व है, क्योंकि ओमनिकेन ग्रुप अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। बीते सफर को याद करते हुए ग्रुप ने बदलते चीनी उद्योग की चुनौतियों का सामना करने और भविष्य की ओर आगे बढ़ने का संकल्प भी दोहराया। साओनो की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
2: प्रार्थना कर जुटना और आशीष प्राप्त करना, एक अंतर धार्मिक समारोह के जरिए ओमनिकेन ने औपचारिक रूप से 2026 की कटनी की शुरुआत की। ये एक प्रतीकात्मक समारोह रहा, साथ में इसलिए भी क्योंकि 1926 में स्थापित ग्रुप इस साल अपने अस्तित्व के 100 साल पूरे कर रहा है। एक सदी बीती जिसके दौरान ओमनिकेन मॉरिशन गन्ना उद्योग के बगल में विकसित होता गया। धीरे धीरे इसने अपनी गतिविधियाँ डाइवर्सिफाई की और साथ में ईख के गन्ने को अपने विकास के केंद्र में रखा। घोषित परियोजनाओं में लिक्विड शक्कर उत्पादन की एक इकाई कायम करने की बात भी शामिल है। ओमनिकेन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाक जुनियाविल ने कहा,
3: Sommes en train d'installer dans la raffinerie maintenant une unité qui pourra produire du sucre liquide.
2: अभी रिफाइनरी में एक इकाई कायम कर रही है जो लिक्विड शक्कर पैदावार कर सकेगी, और इससे ये लाभ होगा कि इससे रिफाइनरी की क्षमता प्रभावित नहीं होगी, उल्टा इसकी बदौलत अभी की तुलना में ज़्यादा निर्यात कर सकेंगे। 100 वर्ष बहुत सुंदर सफर है, टिके रहने का प्रतीक है और एक ऐसी कंपनी है जो नवाचार लाती रही है, ऐसा करना जानती भी है, समय के साथ अपने आप को ढालती रही है। अब हमारी जिम्मेदारी है बेहतर बुनियाद हो अगले 100 वर्षों के लिए। सरकार के लिए एक मजबूत गन्ना उद्योग का बना रहना एक अहम चुनौती बनी हुई है, चाहे अर्थव्यवस्था के लिए हो कि नौकरी, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को लेकर हो। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुले ने कहा,

0: nous besoin dans le maillon, besoin à ce travailleur, artisan, laboureur, les planteurs, okay, celui qui gère l'entreprise, les administrateurs. Donc c'est un maillon très fort. Et aujourd'hui, le planteur, premier 60 tonnes de sucre, 35 000 roupies la tonne. Okay? Et nous payons beaucoup de sucre.
1: इस कटनी की शुरुआत से ओमनिकेन के इतिहास में एक नया अध्याय खुला है जो अपने अस्तित्व की दूसरी सदी आरंभ कर रही है। वो बदलाव का संकल्प जारी रख रहा है और साथ में देश के विकास में अपना योगदान भी बढ़ा रहा है।
2: प्लेटफॉर्म कोमेस सेंजिकाल के प्रतिनिधियों ने आम हड़ताल के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि उनका कहना है कि वे पहले फाइनेंस बिल पेश होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति पर अपनी अंतिम फैसला लेंगे। आज आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में संगठन के प्रतिनिधियों ने पेंशन सुधार के विरोध में पोर्ट लुइस में निकाले गए शांतिपूर्ण मार्च को सफल बताया। उन्होंने 60 वर्ष की आयु से 15,555 रुपए पेंशन की मांग दोहराई, साथ ही 1,00,000 रुपए से अधिक आय वालों पर टैक्स लगाने का सुझाव भी दिया ताकि पेंशन और अन्य सब्सिडी को बनाए रखा जा सके। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर यश्रा मिश्रा का विवरण।
1: प्लेटफॉर्म कोमेस सेंजिकाल के प्रमुख वक्ताओं ने राजधानी की सड़कों पर आयोजित मार्च के बाद अपने भावी कदमों का उल्लेख किया। नरेंद्र नाथ गोपी ने कहा, सरकार द्वारा प्रस्तुत फाइनेंस बिल में बजट भाषण में घोषित कदमों को अमल में लाए जाने का प्रावधान है। फाइनेंस बिल के प्रस्तुतीकरण का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने काम हड़ताल के लिए वोट डाला। उन्होंने फाइनेंस बिल के पारित किए जाने के दौरान नेशनल प्रोविडेंट पेंशन फंड के उन्मूलन का प्रस्ताव रखा। राधा कृष्णा साध्या ने कहा,
3: Donc, on se réforme dans sa globalité. Et ça même gouvernement qui dit que la démocratie, dit qu'on ne peut pas respirer. Mais quand un mouvement syndical, quand un partenaire social, le dimanche peut être convoqué dans une réunion, et quand nous causons freedom of information, nous avons accès, et que dans l'information, nous décidons ensemble.
1: Abadi Batlav. और नौजवानों तथा भावी पीढ़ियों पर बोझ से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये कहा गया। रियाज चतू ने 1,00,000 रुपए से अधिक की आय प्राप्त करने वालों के लिए एक नए प्रकार के टैक्स का प्रस्ताव रखा है।
4: Low zot income tax, ça aujourd'hui comme une separate ban qui je pour retourne ban government subsidy. Moi avec aux dispensions voyez moi. Je gagne l'eau d'iril, la farine, l'eau gaz. Je retourne lui parce qu'il moralement je pas mérité.
1: मंच के अनुसार पेंशन की फाइनेंसिंग वृद्धि का पक्ष लेते हुए 22.5% को कॉर्पोरेट टैक्स को लागू करने से गुजरती है। साथ में विदेशी कामगारों के वित्तीय मुनाफे से फायदा उठाना चाहिए और ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे नौजवानों को देश में ही रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
2: रिविया जौनपुर बाजार का मामला एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रीय सभा की पिछली बैठक में मंत्री रंजीव उचित ने इस मामले पर जानकारी दी। वर्ष 2003 में करीब 51 मिलियन रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन 20 साल बाद उसी मामले में 580 मिलियन रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ा। इस विषय पर सवाल उठाने वाले चुनाव क्षेत्र के सांसद संदीप प्रया का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह शुरुआत में तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट था। एमर्शस से जुड़े एक मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई हुई। एफसीसी ने एमर्शस के पूर्व जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर सतो हाजी अब्दुल्ला पर वर्ष 2020 में कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए 3.6 मिलियन रुपए लेने का आरोप लगाया। आयोग का कहना है कि ये कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान नहीं की गई थी। आज दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। अदालत इस मामले में 27 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। मॉरिशस के लिए अफ्रीका दुनिया की ओर एक नया द्वार खुल गया है। इथियोपियन एयरलाइंस की पहली

0: उड़ान सर शिव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंची। इसके साथ ही मॉरिशस की एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क व्यवस्था और मजबूत हुई है, जिससे पर्यटन, व्यापार और व्यापारिक आदान प्रदान के नए अवसर खुलेंगे। इस पर प्रस्तुत है अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: अफ्रीकी महाद्वीप पर एक नया द्वार खुला। इथियोपियन एयरलाइंस ने कल अपनी पहली उड़ान के अंतर्गत अडिस अबेबा और मॉरिशस के बीच का सीधा फासला तय किया। दिन के 3:15 बजे सर शिव सागर रामगुलाम हवाई अड्डे पर वाटर सल्यूट के साथ इसका स्वागत किया गया। पहली उड़ान के तहत 148 यात्री करीब 5.5 घंटे का फासला तय करते हुए मॉरिशस पहुंचे। उच्च स्तर पर ये परियोजना साकार हुई। असल में 2025 के फरवरी महीने में इथियोपिया में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने इथियोपियन एयरलाइंस के ग्रुप सीईओ मेस्विन तैशो के साथ इस विमानन संपर्क का उल्लेख किया था। महाद्वीप के लिए सबसे अहम खेप यानी को 170 विमानों का इस्तेमाल और 30 से अधिक के ऑर्डर दिए गए। इथियोपियन एयरलाइंस अपने एडिस अबेबा के हब यानी बोले आधुनिकतम हवाई अड्डे के जरिए 165 गंतव्यों के लिए उड़ान निर्धारित करता है। इस नए हवाई मार्ग से मॉरिशस को अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। पर्यटन मंत्री रिशा जीवाल ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि इथियोपियन एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनी, वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस है, मॉरिशस के लिए उड़ान भर रही है। हमारे विचार से पूर्वी अफ्रीका और अन्य इलाकों के लिए अहम है। अमेरिका के लिए इसके साथ समझौता बातचीत की जाएगी ताकि अमेरिकी पर्यटक भी मिले। पहले तो कंपनी मॉरिशस की ओर 3 साप्ताहिक उड़ान भरेगी, बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन। इथियोपिया के विदेशी मामलों के मंत्री हदेरा अदमासू ने कहा, एक दशक से अधिक समय से इसकी कोशिश की जा रही थी। करीब 10 वर्षों की समझौता बातचीत, आखिरकार ये साकार हुआ। मॉरिशस अहम पर्यटन गंतव्यों में से एक है।
2: मॉरिशस is one of the, you know, the great destinations of tourism.
1: Ethiopian Airlines ke group chief commercial officer Lema Yadecha ne kaha, इथियोपियन एयरलाइंस की कड़ी में केवल मॉरिशस की ही कमी थी। अब मिशन पूरा हुआ, मॉरिशस को इथियोपियन एयरलाइंस के नक्शे पर रखा गया है। सभी गंतव्यों के लिए जिस तरह करते हैं निवेश करेंगे ताकि लोगों के बीच संपर्क हो सके, ताकि मॉरिशस और अन्यत्र से लोग इथियोपिया में आकर निवेश कर सकें और पर्यटकों को अफ्रीका तथा अन्यत्र से यहां ला सकें।
3: इन्वेस्ट इन इथियोपिया एंड बियॉन्ड एंड आल्सो वुड लाइक टू ब्रिंग टूरिस्ट्स फ्रॉम अफ्रीका एंड बियॉन्ड टू मॉरिशस।
1: इस नए हवाई संपर्क के साथ इथियोपियन एयरलाइंस और आगे जाने का इरादा रखते हैं। वो अब से मॉरिशस के लिए दैनिक उड़ान भरने की इच्छा रखती है और आने वाले दिनों में इस सिलसिले में मॉरिशन अधिकारियों के एक मांग भेजने वाली है। इस संभावना के अंतर्गत मॉरिशस अफ्रीका और दुनिया के बाकी देशों के साथ पर्यटन और व्यावसायिक आदान प्रदान मजबूत करने तथा निवेश बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।
0: मॉरिशस और अंगोला के संबंधों को आज नई मजबूती मिली है। अंगोला के नए राजदूत ने आज स्टेट हाउस में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच विशेष रूप से व्यापार और खेल के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। रिया रामभोजन, यात्रा मिश्रा।
4: मॉरिशस और अंगोला गणराज्य के बीच कई साझेदारियां हैं, सांस्कृतिक विरासत से लेकर वित्तीय क्षेत्र में सहयोग तक। मॉरिशस में नियुक्त अंगोला के नए राजदूत का एक प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल शुरू करना है। हमारे दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही हम अंगोला में व्यापारिक मिशन आयोजित करने की संभावना पर भी काम करेंगे। मेरा मानना है कि ये दोनों देशों के लिए कई बड़े अवसर लेकर आएगा। मॉरिशस और अंगोला के बीच द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास लगभग 4 दशक पुराना है और अब इस साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
0: सौर ऊर्जा अब समाज सेवा के एक और मिशन से जुड़ गई है। पिछले 40 वर्षों से विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों और युवाओं की सहायता कर रही जॉर्ज शॉल फाउंडेशन में अब सौर ऊर्जा की व्यवस्था की गई है। एमसीबी के सहयोग से संस्थान में फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाए गए हैं।

0: मॉरिशस में किसी गैर सरकारी संगठन के लिए अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है। जॉर्ज शॉल फाउंडेशन ने एमसीबी के लगभग 20 लाख रुपए के वित्तीय सहयोग से और ऊर्जा को अपनाते हुए फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल स्थापित किए हैं। इस बदलाव से बिजली का खर्च कम होगा और बचने वाले संसाधनों का उपयोग फाउंडेशन में रह रहे बच्चों के कल्याण पर किया जा सकेगा।
1: C'était extrêmement important pour nous de financer ces fameux panneaux photovoltaïques pour la Fondation Georges Charles, dans la mesure où ils avaient besoin d'être autonomes en production d'énergie.
0: अनुमानित बचत से आगे बढ़कर ये परियोजना एक दीर्घकालिक सोच को दर्शाती है। इसका उद्देश्य फाउंडेशन को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही उसके दैनिक कार्यों के केंद्र में सतत विकास को स्थापित करना भी है।
2: Ce projet là est d'un grand soulagement et surtout que tout bon étudiant capable profite de ce financement là qu'on est capable d'investir dans l'autre projet.
0: इस पहल के कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने सराहना की। अधिकारियों का कहना है कि ये उपलब्धि साबित करती है कि ऊर्जा परिवर्तन केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संस्थानों और समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों के लिए भी एक प्रभावी साधन बन सकता है।
3: गवर्नमेंट पे बेकुल एम्फेसिस लो बन प्रोजे alternative en ce qui concerne l'électricité parce qu'il y a un problème électricité ça nous bien reconnaît et moi espérer que sa initiative là va être suivie par d'autres ONG.
0: खर्च में कमी लाना भविष्य की तैयारी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाउंडेशन को अब उम्मीद है कि उसके भावी विकास कार्यों के लिए नए सहयोगी और साझेदार आगे आएंगे।
4: Tous les mois, on a une facture de 26 000 roupies, hein? Et donc qui est assez énorme. Pour une petite ONG comme la Fondation Georges Charles, et là maintenant, on ne va presque plus payer, je dis presque plus payer.
0: सौर पैनलों की स्थापना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन के बच्चों के भविष्य में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश भी है। आज परिवार और फाउंडेशन की पूरी टीम इसी उपलब्धि का जश्न मना रही है।
5: Bon, ça fait assez loin, parce que, comme on va dire, moi, qui, c'est la première fondation dans mon risque qui fait ça, mais on reste un vrai honneur.
6: Je suis content, hein? Amène vos enfants dans une bonne maille, une bonne habitude pareille.
0: अब यहाँ सूरज की हर किरण सिर्फ बिजली ही नहीं पैदा करेगी, बल्कि फाउंडेशन के बच्चों के लिए नई उम्मीदें और बेहतर संभावनाएं भी लेकर आएगी।
7: विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई दुखद घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 4,500 हो गई। वहीं बैंकॉक में भीषण आग, वियतनाम में नाव हादसा और इंग्लैंड में हीट वेव से बड़ी संख्या में मौतों की खबर है। और साथ ही बात कर रहे थे सुर्खियों में, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है।
8: अमेरिका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार इन हमलों में वायु रक्षा प्रणाली, तटीय रेडार, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ साथ छोटी सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया। इन अभियानों में लड़ाकू विमान, युद्धपोत और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और इस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं हो सकता। उधर ईरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में जोर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। साथ ही ओमान में कुछ रेडार प्रणालियों को भी निशाना बनाने की बात कही है। दोनों देशों के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम अब समाप्त हो गया है। इसके बाद दोनों ओर से हमले तेज हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर साफ दिखाई दे रहा है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। जहाजों की निगरानी करने वाली संस्थाओं के अनुसार इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाली व्यापारिक जहाजों की संख्या घट गई है। कई जहाज सुरक्षा कारणों से अपनी स्थिति बताए बिना इस रास्ते से गुजरे। हालांकि तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल दोनों पक्ष पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं।

0: लेकिन जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहने से पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है।
1: इसके साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर याचना मिश्रा के साथ।
2: से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह

हवा उत्तर पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवालेखा के परे दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 और अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 7:45 बजे, शाम को सूर्यास्त 6:45 बजे होगा।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ देने के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, हम बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। एम्पास उजिया बुआशेरी में, एम्पास उजिया बुआशेरी में 73 साल की, 73 years old की फरीदा उजिया पैदाश नाम गुलाम हुसैन और जिन्हें फरीदा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात 10 बजे इनके शौहर फिरोज़ उजिया के मकान बुआशेरी से उठाकर दफनाने के लिए गाँव वाक कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 10 PM। पुचिकॉन्ग ग्रांगुब में 55 साल की, 55 years old की श्रीमती सीता चतुरी जिन्हें सीता के नाम से ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के घर गांगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। सीते उदेसे नंबर 22 पीतों में 58 साल के, 58 years old के श्री सनासी रासी जिन्हें रामायण के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनकी बेटी पल्लवी एस्मियत के घर पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरांस पीतों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। बुबासे में नंबर 14 नैन बिल्डिंग बुबासे में 80 साल की, 80 years old की श्रीमती कमला देवी चरितर पैदाशाम रामजीन और जिन्हें सकुन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे लाशा पे लौदौते लियन सन बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। इसकी रोड पाए में 72 साल की, 72 years old की श्रीमती देवंती अकू पैदाश नाम लोफा और जिन्हें मैडम गौजा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे महादेव अकू के घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्लू एक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। मकाओलेन त्वाबुचिक यूनियनवेल में 81 साल की, 81 years old की श्रीमती सुबामा मुतुसामी पैदाश नाम सावरी और जिन्हें सिंधा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके घर त्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाबुचिक की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबी इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन गर्व के साथ सूचित करती है कि मॉरिशस को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC में 111वां सदस्य मनोनीत किया गया है।

0: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 15 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मोंट ब्लांक, शामुनी और आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ यह है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: My, this is Radio Mauritius.
2: New Hall. Assalamualaikum.

0: நமஸ்கார்
1: ஸ்ரோதரந்திரிக்கு ஹிருதயபூர்வக நமஸ்காரம்
2: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்
3: ரேடியோ மொரிஷஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹே ஆப் சபீ கா
4: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर
5: जिसके मन में प्रभु का नाम की ज्योत जलती है उसके जीवन में आशा शांति और आनंद का प्रकाश कभी कम नहीं होता। तो चलिए श्रोताओं इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। आप सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है बजले प्रभु का नाम। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान है, भगवान गणेश जी का नाम हम लेंगे।

भजले प्रभु का नाम से हम आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओं, दुनिया का अंधकार हमें कुछ समय के लिए विचलित कर सकता है, लेकिन भीतर की जागृत ज्योत हमें फिर से सत्य, धैर्य और

श्रोताओं, मन की ज्योत वह पवित्र प्रकाश है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। जब यह ज्योत प्रभु के नाम, विश्वास और समर्पण से प्रज्वलित होती है, तब जीवन का हर कदम अर्थपूर्ण बन जाता है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि हर कर्म में विश्वास की उपस्थिति का अनुभव करना है। जब मन की ज्योत जागृत होती है तब हर दिन एक साधना बन जाता है और हर पल प्रभु की कृपा का अनुभव होने लगता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। वैसे कहते हैं ना, मन की ज्योत को भक्ति से प्रज्वलित रखें, क्योंकि जहां भीतर प्रकाश होता है वहां ईश्वर का मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो चलिए, कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं और हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। आप सभी को

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश

शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है, गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है और दुनिया

इसमें है लोग लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं और उनकी हालत ये है कि उनका खाना यानी ग़िज़ा और उनका लिबास हराम है, यानी हराम माल से लिया और तैयार किया हुआ है, लिहाजा वो भी हराम है। फिर ऐसे लोगों की दुआएं क्यों कर कबूल हो सकती हैं। बहावाला सही मुस्लिम शरीफ।

मौज़े सामीन, हदीस शरीफ में है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों दोज़ख की आँख में झोंके जाएंगे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें हमेशा तमाम गुनाहों से महफूज रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह।

संगत्यारो घरी मिलालाय बखत रात के ठीक 9 बजल बाद तू सुनतो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन 7 days a week 24 hours a day.

0: day. My, this is Radio Marxist.
1: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो पर गमच धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो पर
4: सब संगतियों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तुल के मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रात के 9:02 और अभी से लेकर रात के 11 बजे रे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम नाच अब सा गाव अब सा झूम अब सा कमरवा डुराव अब सा और ये प्रोग्राम से रहता रेडियो मॉरिशस से जी मनोरंजन पर और साथ में रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी यानी कि इनकी सकबर देखे और सुने भी हे और मन करता कोनो गीत मांगे के तो हमने के टिकटॉक पेज पर मंगिए SMS करिए या फिर हमने के टेलीफोनी करिए काट जगो देवी जगो विद सैंक पर। आज है लिंडी के रात 13 जुलाई 2026 और बेशक हम हैं प्रताप सिंह आ रहे गमत करे तेरों के संगे संगे ये भैर का कहना राजकुमार चिंतामणि गैले वन हेलो है गीत चली इस सब संगति आलू के नाम जो हमने के साथ जुड़ा रहा वंजा आप हवंजा उमा आरुष दीपशिखा आरती राम सहाय वंशिका दानु फिर बीना सीचन रिकॉर्डो लुई फिर हवन कमला बाय देवजी बबीता ननकु स्वीती इंदिरा सायरा दाहू गीत मंगले हवन अब्दुल और सायरा बानु खातिर और भाई आबू है गीत तोहर खातिर खासम खास और तोहर पत्नी तो सब परिवार के नाम शोभा योनन के साथ इंदिरा जी गीत राजेश उगर और सब उगर परिवार के लिए और इंदिरा जी के नाम देवन नदी वाला है गीत और खातिर दीपशिखा है गीत और नाम और है गीत चलावजा जिया हुसैन मोहम्मद भाई गुप्ता खातिर भी गुप्ता जी खातिर राकेश खातिर और सरिता सिबारत खातिर चल एक साथ सुने हेलो

0: हाँ तो लिंदी के रात बात है गमत के रात नाचब सा गावब सा झुमब सा तो लोग के संगे संगे आज उतना ठंडा नहीं कर रहा है ना दिन के ना सांस के आज मौसम खूब खूब घमाका लगा आज और उतना ठंडा भी नहीं चला अच्छा अच्छा भाई से मौसम रही थे वरना देर ठंडा का तो कंप्लेन कर सकती ठंडा का तो आज उतना मौसम मौसम बड़ी जरूरी रहा है तो दिन अच्छी तरह से बीतल हो और आशा करते अभी रात भी अच्छी तरह से बीती एगो संगत या वाला इंपेकर से मिलब जा हेलो हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते भाई संजय रोजबेल्ट से कैसे समाचार अच्छा हुआ ना
1: अच्छा हुआ ना
0: अरे अगला गीत था मंगा द सुम्बावती दुमन दाल पकेरी भात पकेरी कोकम के साथ अरे खोजब सा क्या कर खाते
1: बिना बिना बिना
0: बिना खाते हाँ
1: स्वीट स्वीट स्वीट आ हमारा हमारा हमारा हमारा शुक्रिन
0: तो हर माँ खाते हाँ
1: हमारा बहन दीपिका
0: और
1: दीपिका दीपिका
0: हाँ और क्या कर खाते
1: मैं भोजन राधा राधा
0: राधा खाते
1: हाँ आपके लिए अनिश्चित बीमार
0: ओके और खासम खास संजय तो और खाते ओके बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमने के लिए फोन
1: निकाला मौसम मौसम कैसा
0: मौसम यहाँ मौसम अच्छा बा उतना गर्म नहीं कर लग बा जिस उतना ठंडा उतना ठंडा नहीं कर लग बा गर्म कर लग बा अच्छा बा गर्म कर लग बा अरे बहुत धन्यवाद बा भाई अच्छा भाई संजय रोजबेल्ट से हाँ तो बोले थे आज उतना ठंडा नहीं कर लग बा अच्छा बा ठंडा नहीं कर लग बा तो ऐसे सकबा अभी ठंडा नहीं करी तो सकबा हम किसी फिर कहे कि ठंडा करता सब कोई लोहे होर के सुजरा बुने रही मंगा द नौ लाख के हरवा संजना परगा से गीत और खातिर फिर शोभा गीत और नाम हई गाना हम नहीं चला ऐसा मीनाक्षी खातिर और है गीत चली अरबीना बानु सुखिया गीत और खातिर फारूक मिर्जा और एक गीत चलाता मामा इंद्रानी बिहारी जो नई रंग कौची मिनी चे और है गीत मसूद खान के नाम स्वीटी है गीत तोहर खातिर और तोहर पति और तोहर दुगो बेटा जो नहर पति तकिए और है गीत चलावती से सुशील शेष खातिर है गीत चली जयराज रानी अंतिश अंकुश नेहा और सब दुरार परिवार के नाम जो नहरा नारमाची रितेश के साथ हाय रितेश शासन पोष है गीत तोहरों नाम और शोभा जी हवन उस्मान अजीज फिर एम डी अजहर

और कविता भी उनकी शादी हुआ था। है कि चलिए रीता की ओर से कर दुगो बहन अमृता और रेणुका खातिर और भाई राजीव भी उनकी शादी हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना कोई भी हमने की सुनाता है रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और हमने की देखा था टिकटॉक पेज और रेडियो मॉरिशस पर तह गीतों के नाम मंगा द नौला के।

ऐसे त सबै सकेला माँ बाप बने और सबै सकेला माँ बाप बने, पर माँ बाप के फर्ज भी चहला निभाए के जब एगो लड़का के धरती पर अन्य हुआ त चेहरा लड़का के परवरिश करे के, लड़का के देखभाल करे के, लड़का के पढ़ाई लिखाई के, लड़का के अच्छा शिक्षा दे के, लड़का के अच्छा संस्कार दे के, हमनी में से कितना कोई लड़का के सच्चे में परवरिश करेला सर। लड़का करे के तो सबको लड़का करेला, बायोलॉजिकल बात है, पर जब वो लड़का के अनले हवा तो लड़का के चेहला ओकर उत्तरदायित्व तो भी निभाए के, लड़का के छोटा से बड़ा ले थोड़ा छहना ओकर देखभाल करे के। तो सब माँ बाप से प्रार्थना करब, हम जानी ना सकते अपन लड़का के देखे रह सर, पर देखे रह सर।

0: धेरै पनि काकै बरिए नै गिजे गरिरहन्छ र अभी चिलागुसँग त्यहाँ मिलाप जा ललिता हवन थियोले चाची चाची ललिता नमस्ते
1: नमस्ते बेटा नमस्ते
0: कैसे चाची अच्छा हो ना
1: अच्छा है बेटा अच्छा कुशल मंगल
0: हाँ आज उतना ठंडा नहीं क्या लगवा हाँ कि नहीं
1: नहीं नहीं तनी जिमिनी हो बा
0: हाँ के हम बोले थे कामगार के आमान के दे लग हम बोले थे पिगाई मांग ऐसे बोले वह दो दो घंटे पिगाई बुकु मांग एक साथ मांग दे
1: हाँ हाँ फरल बा आम फरल
0: न हम खाती नहीं रख लेगे चाची अकेले अकेले खा ले रहे और चाची बोला अगला गीत अभी दाल पकाई रही चला था दाल पकाई रही
1: अति विनोद सिवदत के गीत
0: अरे कौन गीत सुन बा बोला बोला चाची बोला
1: दगा दे ले रे सुनर
0: वाकई में खाती
1: है बहिंसु देवी ज्ञानी छोटी दीदी दादी प्रभावती हरीश भैया आत्माराम भैया सुखलाल मौसी
0: चाचा आत्माराम कैसे गया अच्छा हो न
1: तनी बीमार हवन बोला
0: था नहीं गेला देखे
1: नहीं बेटा कहाँ उतना दूर जाइबो
0: ए चाचा के देख लिया के चाचा
1: बेलिया बगल रहेलन न
0: और कहाँ रहेलन
1: बेलिया बगल
0: हाँ बेलिया बगल आले चाची तो हगी चार दिन अब से थोड़ी घर में
1: बेटा आले शुभ रात्रि
0: आले बहुत बहुत धन्यवाद हमने की तेरे फोन कर ला आले बहुत बहुत धन्यवाद इधर चाची ललिता और है कि जानू चाहते इस रोबे दिनु खातिर निर्मला हीरा है कि तोरो नाम और गीत चली मार भी दुमार के उसे है गीत चली सियान केयान मेबिन आकिर प्रियंका डुमर और सब डुमर परिवार के नाम ओके यो है गीत तोर खातिर कैसे भाई यो यो यो है गीत तोहर प्यारी अनिशा खातिर और जन्मदिन बा अनिशा जी जन्मदिन बहुत बहुत अभिनंदन ढेर माना प्यार ढेर माना आशीर्वाद हाय आतिश कैसे बा आतिश आतिश है गाना खासम खास तोहर खातिर तो चला अभी एक साथ सुने गीत कीर्ति गोपी भी हमने के साथ देवतावन मिधा रामचरण भी हमने के साथ जुड़ल हवन जा और है गीत चलावत है जा सेंटोबे एसएसएस कॉलेज के सब अध्यापक लोग के नाम और वहाँ के रेक्टर मिस्टर रूबेन मुनसामी के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ चला गीत सुने दाल पकाई दी।

आपने बात तो हमारे बेटी के अपन मानने में अन्य तो हमेशा याद रखा कि बेटी जो है एक दिनों के चाहे हिला माँ बाप के घर छोड़ के जाए कि अपन ससुराल तो अपन लड़का में हमेशा निमन संस्कार दे लिया अच्छा बात बोलिए लड़का लोग के ताकि तोहर बेटी जब दूसर के घर में जाए तो काल के थोड़ा को ओढ़न नहीं मिली और जितना माँ बाप लोग बात जकर बेटी लेकर खासकर ऐसा संदेश है तो लोग के कि अपन बेटी के जहाँ ले सकब पढ़ै लिखै बड़ा आदमी बनैए ताकि जब अपन ससुराल में जाए तो ओकरो मान सम्मान रही अब लड़का लोग को नहीं पढ़ेब लड़का खाली घर में रही हम नहीं बोलते हैं कि जो छोकरी घर में रहकर पाले नहीं बा पाले बाप और आज की दुनिया में अगर लड़का लोग के छोकरी के पढ़ेब छोकरी शादी करके अपन लायक लगे जाए तो ओकरो मान सम्मान रही हाँ कि नहीं तो हमेशा याद रखिए सबसे बड़ा दान है कन्यादान और हाँ आतिश हम से सहमत बा बहुत बहुत धन्यवाद आतिश और विमला हमने के साथ देवत हवन और अभी ढेर कोई हमने के सुनत हवन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अच्छी बात बा और अगला गीत है दगा देले रे सुनरवा हरीश नारायण अभी हमने के टेलीफोनी कर लन और बोलन गीत मांगत हवन सब चुनन परिवार के नाम आप हवन ऋषन योहान लर्वेश याश और साइलेश हरीश नारायण हमने के बेस्ट फ्रेंड हवन जा ओकरा मन करता है गीत सुने के चलो सब चुनन परिवार के नाम ऋषान योहान लर्वेश याश और साइलेश दगा दिलेरी सुनरवा है गीत खासम खास तोहर खातिर और रामलगन हम के साधे ओथन अंजल प्रमीला ओम प्रकाश कृष्ण दुमाले है गीत राम किरो माया है यो गीत हर खातिर खासम खास रावते जा और जितना कोई अभी हम के रात के सुनता हम की आवाज़ जहाँ ले पहुँचता देश विदेश में भी था गीत लोग के नाम दगा दिले रे सुनरवा तो रजा दिलावते जा कि हमने लाइव है इस टिकटॉक पेज पर हमने की सक बजाय देखे हमने से बात करे एसएमएस करे टाइप करिए टिकटॉक फिर तलिया रेडियो मॉरिशस

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius. Radio Mauritius. RM3 Radio.

रात के वक्त जब ऐसे ठंडा ठंडा करेला और पानी बरसेला तो मन करेला गर्मा गर्म चाय पिए के या गर्मा गर्म भजिया खाए के या तो मन करे लोय होड़ के सूते के काम करे के नहीं मन करेला कोई के बोला भी जाके बर्तन धोई के बाप रे बाप महाभारत हो जाए। अब मैडम बोली भी ऊ बकारलाऊ अब मिशे बोली पामो थावा सा अरे भाई बर्तन मांझे के कोई के थावाई है जब देखो पत्नी थक गलबा बिचारी तब तू धो दिया जब देखो पति थक गलबा तब पत्नी धो दे अब पति पत्नी दोनों थकल बा तो के धोई तब छा लैका लो के धोई के पर अभी बर्तन मांझे के बाप है पनिया से गिलासे बा ओ हो फासिल नहीं बा बर्तन धोई के अगला गीत केने केने खोजब को तेरी सुरतिया और है गीतवा बेचू फिर जानन गए लेवन बहुत बहुत प्यार से और है गीत के मांग कर ले हवन आतिश बोला।

सच्चे के अभी बर्तन हम को नहीं सके धोई है बिजली से पानी ग्लासी बा तो आतिश हम सोचते तो हर लगे मुकर तू ही बर्तन में धोई ले हो आज हाँ कि नहीं सन हीरा लाल है गीत हर खातिर रिपन रतन खाट का गीत हर नाम जी हाथ को देवरी अंजल प्रेमिला है गीत हर नाम उर्वशी सुखी उमा दर्शन है गीत हर खातिर सब दर्शन परिवार के नाम जोनल काठबोन काठबोन बासे रोड और राम दुनिया परिवार के नाम और अभी ये कब से हाँ याश हवन दीवा पुल इंग्लैंड से कैसे बा याश भाई गीत हरो नाम एंजो लेनो गीत हरो नाम और जितना कोई बर्तन नहीं खुज रहा धोई के गीत लोगों खातिर किने किने खुजब को तोरी सुरतिया हम किने किने खुजब को तोरी सुरतिया

केने केने खोजब कोको तोरी सुरतिया। और अब हम तेरे को कहानी सुना, मुर्गा और कुत्ता की कहानी। तो बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में एगो मुर्गी और एगो कुत्ता रहा था। दोनों अच्छा संगतिया रहन सा। मुर्गी रोज फजीत के अंडा देवता है, दाना चुगता है, और जब कुत्ता वो सब रखवाली करे। एक दिन मुर्गी दाना चुगते चुगते खेत से बाहर दूर जंगल में निकल गल। वहाँ पर एगो चालाक लोमड़ी ओके पकड़े की कोशिश कर लग और खोजता मुर्गी के खाए के। तब मुर्गी डर के मारे जोर जोर से कुकुरुकु कुकुरुकु करे लगल। मुर्गी की आवाज़ सुन के कुत्ता दौड़ा लाल और वहाँ पर जोर से भौंके लगल। कुत्ता के भौंक सुन के लोमड़ी भाग गल। तब मुर्गी राहत के सांस से लग और कुत्ता के धन्यवाद दिलक। बोलक, सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करे रहन सा, और आज तू साबित करे थे कि तू हमार सच्चा दोस्त हवे। उस दिन के बाद से कुत्ता और मुर्गी की दोस्ती और गहरा हो गल और लोग हमेशा साथ साथ रहे लगल। तो ये कहानी की सीख कौन सी है संगतिया लोग, कि सच्चा मित्र उ रहेला जौन संकट के समय में तोहर काम आवेला। जब कोनो मोमा झिसिल में रह एगो व्यक्ति तोहर सहायता करी तो उ तोहर सच्चा दोस्त कहलाई। वाह क्या बात है, मुर्गा और कुत्ता की कहानी, मुर्गी और कुत्ते की कहानी, मुर्गी और कुत्ता की कहानी, ठीक बा। अगला गीत, मरैया में आग लगल बा। हगीतवा खासम खास मुकेश कुमार खातिर, अतीशा राम डेजी है गीत और खातिर, रजनी है गीत और खातिर, फिर सब सीव बुदत परिवार के नाम और मेरे होस्ट के सब परिवार खातिर, रामशरण नंदलाल और रेणुका दुबरी है गीत और खातिर, और हे गीत हमेशा तो संजय यादव खातिर, अंजू है गीत और नाम, आशना नुशा रक्तोवा है गीत और खातिर, और छोटे भाई पदम है गीत और नाम, बहुत बहुत प्यार के साथ। और है ये गीतवा चलावप सा हुमान खातिर, मरैया में आग लगा। संजय हरिचंद है गीत और खातिर, तो और पत्नी संध्या, तो और बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम। का जगोदेव जगोविंद सकब सकब जाते फिर नहीं करे या हमने के टिकटॉक पेज पर सकब SMS करे। चला गीतवा सुनम, जय मरैया में आग लगल बा।

भूख के मारे पेटवा में आग लगा। जब भूख लगेरा तो चूहा दौड़ेरा, तो भूख जोन है वो इंसान के तरपा के रख देवेरा। ये खातिर हम हमेशा बोईला कि फजीर के अगर बुनरे उजेब तो सकब साँझ खातिर कौन चीज पका दे, कहे कि फिर कोई फाची को क्या बोला तो खुशी रह साँझ के जोन है खाए के तो बेशक पका के रख दिया थोड़ा सुनजस्ती जमी साँझ के लैका लोगा या तो घरोला या तू ही एक मोटी खाए की मिली कहे कि कबो कबो भाड़ा के खाए की ढेर कोई नहीं सकेला खाई हमने जानी जा सब। पर अगर घर में बस साँझ के कढ़ाही खोल बस देखची खोल खाए के कोई दाना नहीं रही तब बड़ी खींच लगेरा। और हम सुन रहे हैं आजकल ढेर कोई ठंडा के कारण नहीं नहाता वन सा, तो ये बहुत बुरी बात है। काहे से नहीं छा नहा के चेहरा नहा के ऐसे नहीं करिए, अच्छा स्वास्थ्य में रहे खातिर छना फजीर साँझ के नहा के तोहर शरीर स्वस्थ रही त तोहर मन भी स्वस्थ रही। और ये खातिर चेहला नहा के अरे भाई आजकल तो गर्म पानी भी बा काहे बोले सर कि नहीं नहावत हो सर, नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं करे के तो कोई बोली हम नहीं नहाते ठंडे ठंडा करता, नहीं ऐसा बात नहीं बा है। फजीर के साँझ के चेहरा नहाए के अरे ठंडा पानी में नहीं सब बनाए तो गर्म पानी में नहा लिया, इसी तरह स्वास्थ्य ठीक रही। पारिश नहीं करिए कोरिया राजा नहीं बनिया। अगला गीत मरमीत में गरम पानी चढ़ल बाहर गीत अनिता लाल जी खातिर। हेलो लाल अनिता लाल जी है गीत तोहर सब परिवार खातिर चलावत है सर अनिता लाल जी। फिर अनिता हमंत्री कॉम्प्लेक्स से लव ना है गीत तोहर खातिर तोहर पति विकास तोहर माँ आशा और सब फकीर परिवार जुन रहन पिछड़ा फे। और है गीत से महा महादाव परिवार जुन रहन सैंपिये। और मुकेश कुमार भी हमने के साथ देवतवन बहुत बहुत धन्यवाद। जया देवी शोभा गीत और नाम और जियो नान बॉस है गीत और खातिर साइद हजरत है गीत और खातिर क्लाहर भी हमने के साथ देवतवन यादव चांदनी नावीन भी हमने के साथ देवतवन और प्रवीण बुधन हवन तायाक से कर्मा कर पापा और सब बुधन परिवार के नाम। हाय प्रवीण बुधन है गीत तोहर नाम खास हम खास

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
3: संगतियों घड़ी मिला लाई बखत रात के ठीक 10 बजल बा और तू सुनते हुआ रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और हमें के टिकटॉक पेज पर दिखाते हुआ रेडियो मॉरिशस के सब संगतियों के सब भाई बहनों के हम स्वागत करते हैं जा और भोजपुरी का प्रोग्राम से रात के 11 बजे ले तो हर पसंदीदा भोजपुरी गीत का जगह देवी जगह विद सैंक पर सब टेलीफोन करे या हम के टिकटॉक पेज पर मैसेज भी जा करिए। अगला गीत मार ताली मार हमर संगे बहुत ही प्यारा सन गाना कुणाल ही लाल गैले हो ना और गीत चलावत ही अनिता प्रताप खातिर रवि को संगत लाइन पेकर से मिला जा शोभा हवन काटोबोन से। हाय शोभा।
4: हेलो नमस्ते।
3: नमस्ते शोभा, कैसे समाचार?
4: कैसे है? ठीक है।
3: हम ठीक हैं, तू कैसे हुआ?
4: ठीक हूँ।
3: गमत हुआ था कि नहीं?
4: गमत हुआ था।
3: आज के लिए तो अच्छा रहा है।
4: हाँ, जरूरी रहा, अच्छा रहा।
3: गरम कर ही रहा ना?
4: ठंडा नहीं बापना।
3: नहीं, आज उतना ठंडा नहीं कल हुआ। अच्छा
4: हाँ, बना नहीं, नहीं उतना ठंडा नहीं हुआ।
3: अगे माँ एक दूसरे में से पानी बरसा लुगा नहीं सुखाता। अच्छा
4: बात, पानी नहीं बरसाता, कहाँ पानी बरसा?
3: नहीं हमनी बगल खूब पानी रहा, लुगा नहीं सुखाता है, पर आज सब लुगा लाकोर मिले, सब लुगा सुखा गल।
4: तो लोग बगल
3: उतना पानी नहीं बरसे रहा।
4: हाँ।
3: उतना नहीं,
4: पर हमने
3: हमने यहाँ पानी बरसा लुगा सब ऐसे
4: पानी नहीं
3: बरसा था। हमने बरसा था, बरसा था थोड़ा बहुत। अरे बोले तो आज के दिन कैसे बीतल?
4: पानी मिटा के गीत डाल दी।
3: कौन गीत है?

0: हाय गीतवा आयो भूल गई नहीं
1: वो देख भूल आ गई
0: हाय जोड़ी जोड़ी फुलवा फुलेला मरंगना
1: कौन फुलवा फुलेला
0: कौन फुलवा फुलेला
1: सुना न यान
0: भूल गई नहीं
1: ना की
0: हाँ
1: तो गीता रोज किसे इलाके में भुला जाए ऐसा कौन फुलवा ना
0: हाँ तो लोग के याद रहेला ना
1: हाँ तो मैं रोज किसे रहा ऐसा गीता ना जानी ऐसा हाँ गीता क्या कर खातीर
0: सब कोई खातीर जितना कोई रात के काम करता जितना कोई सुना था से एमपीसी के टीम के लिए सभी जितना लोग सुना था सब पूरी के दोस्त के लिए
1: सब कोई खातीर सब भोजपुरी प्रेमी खातीर बहुत बहुत धन्यवाद हमके सुनने कर ला शोभा शुभ रात्रि बाय बाय
0: शुभ रात्रि धन्यवाद
1: धन्यवाद और है गीत निकलागल खातिर लकी वुमन है गीत हरो नाम अनिता पेटोब और है गीत चला चला वब जा सब संगत यालो के नाम और है गीत चली है गीत चला होते इस खासम खास प्रिट्स खातिर हेलो प्रिट्स जी भी हेलो हरे कृष्णा जी भी और अंजवी सरस बोधलू हमने के साथ देवतवन और है कि चली जिमी दुखिया की ओर से है कि जिमी दुखिया सावन दुखिया सब दुखिया परिवार सुदेश जसवा हमने के साथ देवतवन हेलो है कि जुकर माँ राजकुमारी चिबुग लोंग राजा स्टीव नानो है कि तो लोग के नाम भी और जितना कोई राजमन्ना भी उनके साथ हुआ था हेलो राजमन्ना है गीत और खातिर खासम खास और है गीत यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज की बी ए फ्रेंच एम ए फ्रेंड और पी एच डी फ्रेंच के सब लेक्चरर स्टूडेंट्स के नाम और श्रीमती तरुण चपदारा जो लेक्चर हुआ एम जी आई में है गीत और खातिर सब परिवार के नाम सलोनी बंगारू है गीत तोहरो नाम तारी मार मार तारी मार

गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो

अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

0: संगतियारों का भी जहां दुनिया से रहा बात नए सब कोनो चीज की भी गैस प्याज करे जी हाँ गैस प्याज बीते करिया जैसे लालमिया नहीं सेवी करता था ताकि वह टैंक कर दिया और जब गोभी ने नहीं सेवी करता तो गोभी ने वह बंद कर दिया और बेशक खा के जब पकई बहुत अजीज खा के पकैया ढेर नहीं पकैया कि परी खा के सब बिक गए कब खा के गाते हो जरा तो घर में चार जना बात अगर सांस के वक्त भात पकई रहे तकारी पकई रहा तो कोई हिसाब से पकड़ा तमीन गैस प्याज नहीं हुई और लड़का लोग से मांग कर अब सक जब खाते वक्त तो राशिद में माता जी या पिताजी खाए के दिन बस सब खेवा के खा लिया थे लेकर लोग का करे रहा खेवा के लेके गिंजे रहन सा और आधा खा रहन सा आधा खेवा के बिक दे रहन सा कोनो कोनो देश में देखिए आदमी लोग के खाए के नहीं बा गरीब गरीब देश में आदमी पुबेल में से खाए के निकाल के खाता बहुत ही दयनीय स्थिति में पर मॉरिशस में हमने की भरपूर खाना मिलेगा हम लिकुलों में दिख रहे हैं लेका लोग रोटी खा के जो है डिस्कारी में बिक देवेलन से या पुबेल में देख ब कबू आधा रोटी में बग बा या कोनो चीज तो घास प्याज ढेर होला घास प्याज नहीं करिए भैया घास प्याज कर ब और प्लेया हो महंगाई के ज़माना बा महंगाई के ज़माना दुनिया भर में महंगाई के ज़माना बा खाली मॉरिशस में नहीं है दुनिया भर में आई जब लागे होल वहाँ पर ट्रंप झगड़ा के मौसम कर लगता है तब से महंगाई महंगाई चारों ओर बाय नहीं देखो सोचे रहा खाली मॉरिशस में महंगा बा न दुनिया भर में फ्लाशों के कारण महंगाई बढ़ रहा था तो एक तरफ तो लोग घास प्याज करे रहे और बोले से महंगाई बा तो कैसे बनी बोला था तो सब चीज़ हिसाब से एगो एगो मुरे घासों से इस्तेमाल करिया और अभी एगो संगत जब लाइन पर से मिल जाए सुनीता हुन में बैग से हाय सुनीता नमस्ते
1: हेलो जी नमस्ते
0: कैसे समाचार
1: कैसे हवा
0: हम ठीक हैं तू कैसे हवा

0: तू गैस्पियाज, तू गैस्पियाज नहीं कर, तू गैस्पियाज नहीं करे ना सुनीता, गैस्पियाज नहीं करे के माँ देखे ला सब चीज महंगा बा ना। तो अभी के लड़का लोग तो आधा रोटी खा के बिक देना
1: सब ठंडा ठंडा
0: ठंडा ठंडा होता तो हर लगे तभी चाप
1: सा
0: ए पानी बरस मायबू में पानी बरसता तभी चाप सा गीत ठंडा ठंडा पानी न न न मेरी जान शशि सुहादी
1: बोले ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए।
0: हम सच्चे बोले हम रोज
1: कुमार
0: हम रोज के गर्म पानी से नहाए ला भजीर कर सांस के हाँ बट ठंडा पानी में बाप हम तो ग्लासों में भोजा बन जाए
1: वे बाप हाय
0: देर कोई कुछ ठंडा में देर कोई कुछ ठंडा में नहाए की ना
1: जी और मुकाम में बहुत ठंडा ही
0: नहीं आज आज मुकाम में मौसम बड़ा प्यारा बा ठंडा नहीं कर लग बहुत ना जिस
1: जी मैं एक गाना की
0: मांग कर रही हाँ बोला कौन गीत सुन बा
1: भोजपुरी के गीत बहुत सुहावन लगेला
0: के गई लग बा
1: नहीं जाना थे
0: अतान भोजपुरी के गीत सुहावन भोजपुरी के गीत आली केकर खातिर गीत मांग लिया हुआ
1: मेरे लिए
0: हाँ
1: मेरी हरदम गायत्री मेरी भगिनी है
0: अच्छा और भगिनी है गायत्री कहाँ रहे राहु
1: वो नुवेलगा फ्रांस रहती है
0: क्या काम करती है वो
1: काम नहीं करती है
0: घर में
1: वो मुझसे बड़ा है
0: बड़ी है ओके ओके
1: दुबारी से बड़ी है
0: अवेला घूमे तो
1: नाता नाता के मेरे पति के
0: हाँ तो अवेला घूमे तो और लगे
1: हाँ अवेला ओकर बेटे अजय के लिए जो नुवेल फ्रांस रहती है आपको भी अभी सभी सुनने वालों को भी हाँ। और मेरे देश को मेरे दोस्त को नहीं भूलना चाहिए
0: कोई हाँ तो और दोस्त हो
1: मैं नहीं जानती उसका नाम
0: वो खास दोस्त हाँ हाँ हाँ क्या बात है
1: एक खास दोस्त है एमबीसी में
0: खास दोस्त एमबीसी में ओके
1: आप जानते हो
0: नहीं हम नहीं जानते हैं ठेकर खतीर
1: मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ
0: उसका नाम नहीं जाने
1: वो इंडिया में रहते थे
0: ओके
1: वो इंडिया में रहते थे मैं उस हरदम उसका नाम मैं डालती थी ओके उसके नाम रहा रमेश कश्यप
0: ओके ओके ओके तक खासम खास
1: ओके ओके हरदम मैं बोलती थी
0: हाँ ओके
1: उसके लिए को भी हाँ, और आपको भी और सभी सुनने वालों को
0: सो स्वीट बहुत बहुत धन्यवाद
1: अच्छा जी okay. नमस्ते
0: नमस्ते शुभ रात्रि हाँ तब अभी चला सुनब जा ठंडा ठंडा पानी हरगीत चलावत ऐसा बबीता चुलन के नाम हेलो बबीता जी कैसे बस समाचार खुशी उदुम और यश अलोल लरबीच चुलन साइलेश सुकन और ये सब संगतिया लोग बड़े प्यार से इनकी सुनतवन चला गीत चला जा और ये लोग भोजपुरी गीत बढ़िए प्यार से सुने न रोज रात के लेंदी से लेके दिमासली तब बबीता चुलाए और तो और सब परिवार खातिर गीत ठंडा ठंडा पानी न न न न न न अरे चले गीत संग संग गाप सा ओके प्रताप की ओर से ओकर बेस्ट फ्रेंड हिरीश के नाम भी गीत हिरीश भोजन करता मच्छी की तकारी और भात बना पे
2: मेरी जान
0: आपकी
2: प्यास
0: बुझा दे मेरी जान ठंडा ठंडा पानी

सब चुलन परिवार हम संगे नाचता गावता बबीता चुलन नाच मोरी जान जाले मर जान ठंडा ठंडा पानी हे हे बबीता चुलन जी नाच खुशी उदुम या शर्लो लर्विस चुलन साइलेश सुकन सब कोई कमरवा डुलावता ए हे

0: जितना कोई भोजन करता बोन आप शुभ आहार सुरुचि
1: आखिर कस बुझा दे मेरी जान
0: ठंडा पानी ठंडा ठंडा पानी तू गरम गरम पानी पिया ठंडा ठंडा पानी।

हमने के देश में सब कोई काम करेरा, सब कोई काम करवाई सर, कोई दिन के काम करेरा, कोई रात के काम करेरा, कोई शिफ्ट में काम करेरा, और हर प्रकार के काम करवा लोग बा, डॉक्टर, अध्यापक, क्लीनर, हमने के सोफेयर टैक्सी लोग भी काम करेरन सर, हमने के कंडक्टर, सोफेयर कंट्रोलर, तो सब कोई हमने के देश में बहुत मेहनत से लगन से काम करेरन सर, कामासुत हवन सर, बहुत मेहनती हवन सर, और सोफेयर लोग तो फजीर के बोने रे कबू डिजाइजी मारते हैं, थोड़ा जहजी मारते कबू रात भर काम करेरन सर, और अभी जितना सोफेयर टैक्सी लोग सुनाता तो अगी तेतो लोग के नाम चली, जितना कोई वान में काम करे, जितना कोई सोफेयर हवन सर है हमने के सुनाता हवन सर, तगला गीत लोग के नाम जोली छोकरी से प्यार करीला, जेकर खातिर हम रोज जीला, सब काम करवा लो खातिर, जितना कोई काम करे रहा हमने के देश में सब काम करवा के सलाम। देखा कोनो काम अपन आप में छोटा है बड़ा नहीं बा, वो काम करते हुआ अपन परिवार खातिर पैसा आनते हुआ खाए पिए के आनते हुआ यही काफ़ी है, ऐ शर्म की बात नहीं है ऐ कि हाउ जून काम करवा टॉयलेट धोवेला और हाउ जून काम करवा बीरो में काम करेला, सबके समान रूप से हमने छा आदर सत्कार करी थी। जरा सोचा हो प्लौते हवा लेकिन नहीं प्लौती तो हमने कौन सी मिली खाई की, और सुफे टैक्सी वाला काम नहीं करी तो कैसे सकब से एगो प्लास से दूसरे प्लास जाए, हाँ कि नहीं, तो हर काम के अपन महत्व, चाहे बुलौजे हो, टॉयलेट क्लीनर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, अध्यापक हो, हमने के देश में जितना कोई जितना काम बा सब काम के हमने पूरा जो है मान सम्मान दे रहा सर। देखा काम में शर्म नहीं बाएँ, काम करब तो पैसा मिली भैया, काम नहीं करब तो का करब चोरी करब नहीं ना, तो काम जो है ओके अंग्रेजी में बोलते वर्क इज वर्शिप, तो जितना काम करो लोग सुनता है गीत लोग ना जोली छोकरी से प्यार करीला, अरे गीत वहाँ खासम खास हमने चाहते इस वीना कपूर स्वामी के नाम आप रहन में बग और सब परिवार खातिर सुलमा दुखे ते गीतोरों नाम, फिर हवन लाहौजा के संगीता अमीरन है गीत और कहते तोहर मामा, तोहर भाईदान आजी, तोहर बहन शांति और हेमा, वंशिका, रक्षिता और सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम है गीत, और है गीत हरीश की ओर से संगीता के नाम भी, हरीश अपन संगत्या के नहीं भूलैया। और अभी एगो संगत्या लाइन पे राधा वन विल फोन से मिल जा, हेलो राधा जी।

0: नमस्ते
1: राधे,
0: नहीं तो देखा अभी टिकटॉक चलाता और निमेरो भी चलाता था जैसा हो में टिकटॉक में
1: नहीं हमको जाता है हम नहीं जाने ना देखे
0: और नहीं जाने आली पाफे ना आली बोला बोला
1: प्रणाम भैया
0: प्रणाम कैसे अच्छा हुआ ना
1: हाँ
0: दिन के बाद
1: नाचे के गा के गिधवा मांगे के
0: हाँ सच्चे के बोला
1: मुबारक हो यार बहुत बढ़िया जानो
0: बहुत बहुत धन्यवाद बोला अगला गीत
1: क्या कहते भाभी कैसे बामर भाभी
0: भौजी अच्छा बा भौजी भी रात के भी
1: हैं चर्चा का भौजी नहीं सुन के
0: अभी छोटा हूँ सो काहे अभी शादी की जा रहा तो
1: हमके बोल बने शादी में बोल बना
0: नहीं तो अभी जे करब आइए पूरी खाई
1: अब हम नहीं सो के देखे काजो लेके
0: हां हां काहे नहीं काहे नहीं
1: भाभी के इनमें
0: देखा आज आज है ना सुनो ना अब लामुद बा काजो नहीं बोले लंचा नो गिफ्ट बॉक्स प्लीज एनवेलप में आनिया काजो आगे सब नहीं रहा अब लामुद बा देख मौजाज में हाँ ननद हवा सारू रही अन्य और अगला गीत
1: क्या खाती
0: बोला
1: राधा कृष्णा के गीत
0: गीता में क्या बोले ला गीता में क्या बोले ला
1: बोले ला
0: राधा के सोभेरा
1: हाँ हमर मामी गायत्री बेटा अजय हमर सब कमालो खातिर
0: हाँ एगो बेस्ट फ्रेंड के नाम बोले गो संगतिया जोन जोन बहुत खास बा गो
1: राधा कृष्णा के गीत हम मां बोली अभी सब कोई सुना था
0: हां
1: जब मैं हमके नाम बोली तो हम सुनब
0: हां
1: हमर बहिनो सब सुना था तो निकल के बोल दे
0: दो तो सब बहिनो सुना था अभी
1: हां सब कोई राधा कृष्णा के गीत
0: हां राधा के सो भेला बहुत बहुत धन्यवाद भूले नहीं सज्जे में आइए पूरी खाई भूले ये नहीं जोड़ी लहंगा लहंगा से आ दिया नाचे के गावे के संगे संगे ऐसा जोड़ी जोड़ी ना बेचारा हो दिखा
1: अब तो
0: सुना बहिन अब तो सब रेडीमेड बेचारा बाप रे बाप बहुत धन्यवाद राधा नेवेलफोंस रलंजा और प्रभावती लोल चाची प्रभावती नेवेलफोंस से वंजा हाँ तो हंसते हंसते हमारे पेट दुखाई लगल जोड़ी छोकरी से प्यार करी रहा हरीश नारायण भी बोला था जोड़ी छोकरी से प्यार अरे जो गीत संग संग आपसे है 1, 2, 3, चला चला चला जगह उपसा

Finish the run on the mix. Chala nache. जोली छोकरी से प्यार करीला खातिर हम रोज जीला लाभ ओके कैसे समझा ओके बताई दे हमको से प्यार करीला हम रोज जीला कैसे बदला बोगे के कोई ना कोई समझाए हमको फोन लगावा एसएमएस करा कोई बतावा कैसे फोन लगावा एसएमएस करा कोई बतावा।

0: और आप बिल्कुल संगत है लाइन पर कुछ नब्जा। हेलो
1: हाँ
0: आफिज जी, सलाम वालेकुम, तो स्वागत बा रेडियो मोशन से जी मनोरंजन पर। आपके आंखों में नींद क्यों नहीं है? ऐसे नहीं बोलते हैं, ये रेडियो मॉरिशस से जो मनोरंजन है।
1: गीत सुने खातिर
0: आ रही। कौन गीत सुन बोले थे? हाँ कौन सौते सुन बोले? गमत कोको लाली लाल। कौन गीत है वो? गमत लाल बा। गमत लाल बा गीतवा के कर खातिर जर कोई नहीं बकर भगवान बा खुदा बा और हमने यहीं से रेडियो मॉरिशस पर हाँ कि नहीं
1: प्रताप हो ना।
0: हम प्रताप सिंह हैं और अभी रेडियो में हुआ।
1: हम तो बुला गएंगे
0: हाँ कि नहीं अभी चलाई तो हर गीत चलिए भी। ओके बहुत धन्यवाद। हाँ तो रेडियो है सोचिए सर कैसे बचाए कि चहला धर धर के बात नहीं करे के। और तो बोला था ओंक में नींद नहीं आवा था गमत लाल बा। चला भी सुन अब सर आली गीत खोजब सा भी है गमत कुकु। ओके और अभी अभी एक से आगे चाहिए राधा के सोभेला बहुत ही प्यारा सन गाना भी श्रोता मंगले रलन था चला अब सर गीत। और एक गीत खास हम खास चली पूर्वी खातिर तौर सब परिवार के नाम कौन तो गैर में जितना कोई बार हमने की सुना था गीत तो लोग के नाम भी और है गीत रूबेन की ओर से आशा और देवीना खातिर। तो चलो जितना कोई भी रात के तो लोग नींद नहीं लगता तो लोग आँख में भी नींद नहीं आलबा तो गीत तो लोग के नाम चली राधा के सोभेरा।

और अब हमनी तोरा बताब जा कि जो सब्जी आलू है ओकर कौन महत्व है। हाँ तो आलू जो है कि हमनी के रसोई घर में रोज के सेवी होला। आलू में कार्बोहाइड्रेट बा, विटामिन सी बा, विटामिन बी सिक्स बा, पोटाशियम बा, फाइबर बा और आलू जो है शरीर के ऊर्जा प्रदान करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकर में मस्तिष्क के लिए अच्छा है। लड़का लोग सेव डेवलप करेगा, एथेरिजम बनावेला और ये पोटाशियम जो हम के रक्तचाप नियंत्रण में रखेला, उनके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में रखेला और ये जो फाइबर रहेला आलू में तो एक से पाचन में सहायता ला, डिजेशन अच्छा होला। और ये जो आलू है, आलू खाइब तो आलू के ढेर प्रकार से सकब बनाए, आलू के चटनी, आलू भुंजल, आलू तारल, आलू के सलाद, आलू बेतरा डाल के सकब भूल करके सलाद बनाए। और पर बोली लंस कि देख जगह जाबित बा, डायबिटीज़ बा, मधुमेह बा, वो लोग के आलू उतना नहीं खाएगी, सब बार थोड़ा सुन खाए, ढेर नहीं। और हे आलू जो है एक ढेर तेल में नहीं तरिया, एक सब अलावा पे पकाए है तेल में ढेर तार दे बताकर सब जो न्यूट्रिएंट्स बा वो सब कर चल जाला।

आलू सब्जी जो है बहुत आसान है, ओके छीले के काटे के धो के पकाए के ये कुछ सब्जी है जो 365 जू मिल रहा है हमने के बाजार में। और आलू महंगा नहीं है, वैसा खुबी आलू है। और जब बाजार जाइब तो जो बोले जो आलू जो जगह में लापूशे रहे ला, इसे लापू जैसे अच्छा रहे खाए के कह के ओर से चिप्स बनेला और ओकर से ढेर प्रकार की व्यंजन बनेला। और आलू के पराठा जैसा खेले हुआ भारत में जेब आलू के पराठा जो है ढेर कोई खाला जिससे ठंडा ठंडा करा था आलू के पराठा बना दिला कोतमेली के चटनी और एक कप चाय सुपर। हमारे तुम मुँह में पानी भरा हम जाए कौन चीज़ खा के आए ला कौन चीज़ एमबीसी के ला कौन चीज़ में तब ले तू सुना गीत जलसा लालबा आफिस बुलाता को नींद में अगर आँख में नींद नहीं आवा था का आफिस ऐसी बुलाते हुआ तब तुम्हारे आँख में नींद चला है गीत सुन के जलसा लालबा।

0: जब कोई के मृत्यु हो जाला, कोई लगे मरनी हो जाला, तब नि रोइलास, दुखी होइलास, उदास हो जाइलास। पर देख जायुला तो चला जाला, अब उदास अब रोब एक दिन दो दिन एक महीना एक साल, पर रोला से व्यक्ति वापस तो नहीं आई, हाँ कि नहीं। और जेकर जन्म हो यहाँ पर ही ओकर मृत्यु निश्चित है। हमने साग मिला सर कहे कि हमने के और व्यक्ति से वातासमा हो जा रहा, एक बंधन हो जा रहा कि फलाना व्यक्ति हमने के परिवार रहल, कि हमने के चचा रहल, मामू रहल, कि दादी रहल। पर देख बता हमें सब कोई आत्मा है सर, है जो आत्मा है इस शरीर के चहला उबलीसे है शरीर के छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी। जैसे हमने एगो सीमीज निकाल के पुराना लुगा निकाल के नवा लुगा पहनी रहा था, उसने ही आत्मा भी शरीर एगो शरीर के छोड़ के दूसरे शरीर में जाला। हमें कि धर्म ग्रंथ में लिखल बा, वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत भगवद गीता में, कि आत्मा अमर है अजन्मा है। काहे रोइला सर, काहे कि हमने के हो व्यक्ति से एगो आत्मा बा, कि हमने के संगतिया रहल, कि हमने के फामी रहल, कि फलाना हमने के पड़ोसी रह। पर उ जन व्यक्ति जन मर जाला और जन आत्मा उ तक खुश होके भगवान लगे जाला, काहे कि ओकर मकसद है इस शरीर से निकल के भगवान लगे जाएगी। तो विधि के विधान है, जकर जन्म बा तो कर मरनी भी बा। और कितना दिन से अवसर हो, एक दिन एक महीना दो महीना, पर परेला जिए कि अब जन को व्यक्ति मर गल तक संग नहीं सकब सा जिंदगी भर विलाप करे, काहे कि जहाँ देखे कि तुम्हारे परिवार में और कोई बात और इंतजार करता था, तो लोग खातिर परेला जिए की। बी स्ट्रॉन्ग बी ब्रेव, चहना को आवाज ले के, ये सब आसान बात नहीं है। जब एगो परिवार में एगो इंसान हमेशा के लिए भगवान अगर चल जाला तो एगो मौकमो रहेला, पर क्या कर परेला जिए कि भैया नहीं सकब सब कुछ करे, जीवन और मरण हमी के हाथ में तो नहीं बा। चूल्हा के ठिकाने बही खाती बड़े से चलन नाचे गावे झूमे कमरवा डुल्लावे, और बबीता चुलन बड़ा जोर हमी के संगे नाचा था। हिरीश भाई बोला था प्रताप जी वो गीतवा चला देता एगो जोरी गीत हम शहर में रहना को जी गीतवा नहीं मिला था, एगो सर गीत चलाते था इंद्रासन से ढोलक मंगली, और बबीता चुलन बड़ा जोर नाचा था। ऐसे नचते रहिए हमने के साथ गाते रहिए। अभी 11 बजे रही प्रोग्राम चली भोजपुरी तड़का और जय प्रताप सिंह के साथ रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर रात के 11 बजे ले।
1: इंद्रासन से ढोलक मंगाईला, इंद्रासन से ढोलक
0: मंगाईला, बबीता चुलन जी है गीत खास कर तोहर खातिर। इंद्रासन से ढोलक मंगेरी बबीता जी तोहर खातिर नाचा।

कहाँ छुपी रानी मोरी। किशोर कुमार अमेसर के ही गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ दिला जा तो लोग की फोन कॉल्स SMS का जी धन्यवाद। हमने के टिकटॉक पर देख ला, टिकटॉक पेज पर रेडियो पर सुन ला, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाए, सुन बजे अगला प्रोग्राम सुनहरी पर और रात के 12 बजे से कल फजीत के 5 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तेरों की मुलाकात हुई कल मंगल के रात के 9 बजे से 11 बजे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में। तब तक हमने की इजाजत अजय प्रताप सिंह के ओर से सबको एक प्यार भरा नमस्ते, सलाम, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: ஷோதரந்தரிக்கு ஹிருதயபூர்வக நமஸ்காரம்.
6: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
7: Radio Mauritius पर दिल से स्वागत है आप सभी का.
8: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ.
9: रेडियो मॉरिशस पर शुरू हो चुका है यादों का सिलसिला. जी हाँ दोस्तों, हर गीत के साथ एक नई कहानी और एक नया एहसास. ये है सुनहरे पल, पुराने बॉलीवुड गीतों की महक और यादों की खुशबू लेकर हम गिनिशा आ गए हैं आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस. तो बस तैयार हो जाइए एक सुहाने संगीतमय सफर के लिए.

दिल को सुकून देने वाले गीत, जी हाँ दोस्तों, और यादों से भरे लम्हे, बस इसी का नाम है सुनहरे पल। साथ रहिए रेडियो मॉरिशस के साथ। आज फिर बजेंगे वो गीत जो कभी हर घर की पहचान हुआ करते थे। बिल्कुल दोस्तों, हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुराने बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर हाजिर है ऑन रेडियो मॉरिशस, आपके सुनहरे पल में।

वैसे आज की रात को यादगार बनाइए और उन गीतों के साथ जो आज भी दिलों पर राज करता है। ये है सुनहरे पल, यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं मेरी जान। जी हाँ, हम बस चाहते हैं कि आप खुश रहें, हमेशा आप मुस्कुराते रहें। और ये अगला गाना आपकी होंठों की मुस्कुराहट के लिए, हमारी तरफ से आपके नाम।

संगीत का वो दौर जहां दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, तो चलिए उसी दौर में चलते हैं सुनहरे पल के साथ। दोस्तों, हर गीत एक रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा भी रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं रेडियो मॉरिशस पर आपके सुनहरे पल में।

अगर आपको पुराने गीतों से मोहब्बत है मेरी जान, तो ये महफिल, बिल्कुल ये महफिल आप ही के लिए है। साथ रहिए और गीतों का मजा ले लीजिए। पुराने बॉलीवुड संगीत का जादू आज फिर बिखरने वाला है, सो दिल खोलकर सुनिए और यादों में खो जाइए, क्योंकि ये आपका सुनहरे पल हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम आपके दिल को बहलाए और पुरानी यादों में फिर से खो जाने के लिए मजबूर कर देते हैं आपको।

जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे साथ देने के लिए। तो बस यूं ही गिनिशा का साथ देते रहे। मुझे नहीं पता आप हमें कहां से सुन रहे हो, मॉरिशस में हो, मॉरिशस के बाहर हो, काम पे हो या घर पे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं से भी मेरी जान आप साथ दे रहे हो। तो ये अगला नगमा स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट आपके दिल तक। तो चलिए ये आपके नाम।

दोस्तों, वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। बिल्कुल, हम भी इस बात को मानते हैं क्योंकि वो गीत तो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते फिलहाल के लिए इस वक्त होगी निशात से गुड बाय। हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।

0: जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं।
1: रेस
2: वो नहीं आने वाली,
3: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं।

0: मैं कुछ भी कर लूं,
1: तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती।
0: और तुम
1: कुछ भी कर लो,
0: मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

Jana ke khana ke khan.